अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। कार्यक्रम विवरण के तहत अब आपको बता दे आज केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर में 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 7 सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। स्वास्थ्य वार्ता ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:20 पर। गीत संगीत का कार्यक्रम होगा 7:30 पर। 8 सुनेंगे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। मॉर्निंग मेलोडी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर। 9 से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 10 होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। 11 आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। पर सुनेंगे विज्ञापन और 12 सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 12:58 पर आप पुनः सुनेंगे विज्ञापन। 1 से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 1:10 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 1:20 से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 2:55 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 3 आप पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 4 सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 4:02 से पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 4:29 पर सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

संध्या 5:02 पर सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी खेती बाड़ी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:32 पर। 6:00 सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 6:02 पर सुनेंगे कार्यक्रम युव वाणी फिल्म संगीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। 7:00 सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार, ये आप सुनेंगे संध्या 7:15 से। ऑल टाइम हिट्स, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 से। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत, ये होगा रात्रि 8:00 से। 8:45 पर सुनेंगे समाचार संध्या। 9:00 News@9 और 9:15 पर स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनी गंधा। 10:30 पर सुनेंगे आज के फनकार। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। और प्रतिदिन की तरह 11:10 पर कार्यक्रम का समापन होगा।

ये थी आज केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने को है। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: ग्राम गत रात्रो रायपुरे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स इति दलं षट् स्तोभैः पराजितम्। अद्य सायं सार्धसप्तवादने धर्मशालायां पंजाब किंग्स मुंबई इंडियंस इत्येते दले पुनः क्रीडिष्यतः इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। अब सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

0: अभी आपने सुना शिवनंदन पांडे गरीब और साथियों की आवाज में ये खोरठा लोकगीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: अभी आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं लाल बिहारी साव की आवाज में ये खोरठा लोकगीत।

0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं भेंट वार्ता, बोन ट्यूमर कारण लक्षण एवं बचाव। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार और इनसे बातचीत कर रहे हैं मोहम्मद अली शब्बीर अंसारी। ये जानकारी पूर्व प्रसारित है।
1: श्रोताओं, आज के हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं हजारीबाग शहर के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, जिनसे हम बातचीत करेंगे बोन ट्यूमर के बारे में कि बोन ट्यूमर या बोन कैंसर ये क्या है, इसके होने के कारण क्या हैं, किस तरह के उम्र के लोग आमतौर से ज्यादातर ग्रसित होते हैं, इससे बचाव की क्या संभावनाएं हैं, ये सारी चीजें हम इनसे जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार साबिर जी, और श्रोतागण को भी नमस्कार।
1: सर, ये बोन कैंसर या बोन ट्यूमर ये क्या है?
2: बोन ट्यूमर बोन में जो ग्रोथ हो जाता है, अननेसेसरी ग्रोथ,
1: मतलब हड्डी बढ़ जाती है,
2: जिसको हम लोग बोन ट्यूमर कहते हैं। बोन ट्यूमर दो प्रकार का होता है, बेनाइन और दूसरा मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट जिसको कैंसर बोलते हैं।
1: अच्छा जी।
2: तो हड्डियां जो एबनॉर्मल रूप से बढ़ जाती है
1: जी,
2: वो दो प्रकार का होता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन जो कैंसर का रूप नहीं है, लेकिन कैंसर का पहले का रूप हो सकता है।
1: अच्छा जी।
2: और मैलिग्नेंट है वो कैंसर कैंसरस है, यानी ये आपको रियल कैंसर हो गया बोन का।
1: सर, तो जैसे आपने कहा कि हड्डियां बढ़ जाती हैं, तो इसका कोई कारण है क्या?
2: बोन ट्यूमर जो भी है, बेनाइन टाइप का या मैलिग्नेंट टाइप का, यानी कैंसरस वेराइटी जो है बोन ट्यूमर का, जिसका एटियोलॉजी यानी जो कारण है वो इसका पता नहीं चला है अभी तक। मतलब इडियोपैथिक बोला जाता है मेडिकल टर्म में,
1: जी जी,
2: जिसका एटियोलॉजी पता नहीं है, यानी कारण पता नहीं है। लेकिन यहाँ ये कुछ कुछ अगर रेडिएशन के होता है, मतलब कुछ कुछ आप धारणाएं हैं कि ज्यादा रेडिएशन अगर के क्षेत्र में आप रह रहे हैं तब कैंसरस होने की संभावना ज्यादा है
1: जी।
2: या ज्यादा कोई ट्रॉमा हो गया उसमें भी कैंसर डेवलप कर जाता है
1: जी।
2: लेकिन एटियोलॉजी अननोन है, यानी ज्ञात नहीं।
1: ये कह सकते हैं कि मैंने कुदरती तौर पर किसी को होना था तो उस तरह से वो हड्डी
2: बिल्कुल बिल्कुल बढ़ने लगी। ये जेनेटिकल होता है कि वंशागत रूप से जिस व्यक्ति को ये ट्यूमर हो रहा है अपने पूर्वजों से, उसमें जीन इनहेरिट हुआ है, वंशागत से आया और
1: किसी का वो फिर डेवलप कर। तो जैसे हड्डियों के बढ़ने का की जो शुरुआत होती है, तो इस तरह से मरीज जो आपके पास आते हैं तो किस तरह का कंप्लेन लेकर आते हैं?
2: बोन ट्यूमर में सबसे पहला कंप्लेन होता है कि वो एक स्वेलिंग लेकर के आता है, सूजा हुआ बोन के पास, बोनी स्वेलिंग, तो हार्ड स्वेलिंग, तो जैसा हड्डी होता है उतना ही कड़ा सूजन लेकर के
1: आता है।
2: हाँ, दर्द हो सकता है
1: जी।
2: बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, ज्वाइंट को इन्वॉल्व कर सकता है, वो सूजन जो है बड़ा हार्ड स्वेलिंग जो है ज्वाइंट को इन्वॉल्व कर सकता है, जिसकी वजह से ज्वाइंट का जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड बने अवरुद्ध हो जाएगा।
1: अब ये जानना चाहेंगे कि जो हड्डियों में सूजन होता है तो शरीर का कोई खास हिस्से का हड्डी में सूजन आता है या कहीं भी हो सकता है? ये
2: बोन ट्यूमर बेनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है, हर ट्यूमर का अलग अलग प्रकार है।
1: अच्छा जी।
2: अलग अलग ट्यूमर का अलग अलग जगह में होने की संभावना,
1: कई तरह के ट्यूमर है
2: और उनका स्थान अलग है। कोई ट्यूमर घुटना में होने का संभावना, कुछ ट्यूमर का संभावना है घुटना के नजदीक होता है
1: जी।
2: कोई ट्यूमर आपको खोपड़ी की हड्डी में हो

0: सकता है,
1: जी जी,
0: कोई ट्यूमर आपको जांग की हड्डी में हो सकता
1: जी,
0: है,
1: मतलब किसी भी
0: अलग अलग टाइप का कैंसर अलग अलग जगहों में उनका मतलब कॉमन जगह है।
1: और शुरुआती लक्षण सब मतलब सूजन ही दिखता है।
0: शुरुआती सूजन, हड्डिया में दर्द
1: जी,
0: हड्डिया में विकृतियां भी और फ्रैक्चर भी हो सकता है
1: जी,
0: और ज्वाइंट जो जोड़ होता है उसका गति में अवरुद्ध, जो मोशन जो होता है ज्वाइंट का, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड यानी गति अवरुद्ध हो जाता है,
1: उठना बैठना चलने फिरने में
0: दिक्कत हो जाती है, प्लस आपको वजन का लॉस हो जाता है, बच्चों में
1: हल्का लगने लगता है,
0: वजन लॉस होता है, वेट लॉस
1: होता है,
0: वेट लॉस होता है, वीकनेस फील होता है, प्लस कैंसर का दूसरे ऑर्गन में, दूसरे सिस्टम में जाने की संभावना होती है, जैसे दिमाग में चला गया, लिवर में चला गया, लंग में चला गया,
1: तो ये मतलब हड्डी से वो ट्रांसपोर्ट होकर के
0: जो कैंसरस बोन ट्यूमर है वो अपने जगह से जहाँ पर हड्डी में हुआ वहाँ से ब्लड के माध्यम से दूसरे जगह चला जाता है, जैसे दिमाग में, फेफड़ा में, लीवर में, और शरीर के अन्य भाग में,
1: दूसरे अंगों को ये
0: दूसरे अंग को भी प्रभावित करता है
1: जी। तो सर, मरीज जैसे इस तरह की कंप्लेन लेके आता है कि हड्डी में सूजन हो रहा है या दर्द हो रहा है, तो इसका जांच इसमें आप करवाते हैं, स्पेशलाइजेशन करवाते
0: जी जी, बोन ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक सिंपल सबसे पहले एक्सरे करवाते हैं
1: जी,
0: जिस जगह में बोनी स्वेलिंग है
1: जी,
0: उसके बाद दूसरा हम लोग सीटी स्कैन करवाते हैं
1: जी,
0: उसका बायोप्सी करवाया जाता है कंफर्मेशन के लिए कि किस प्रकार का कैंसर है, जिसका कंफर्मेशन के लिए हम लोग बायोप्सी करते हैं, यानी बायोप्सी मतलब थोड़ा सा ट्यूमर का पार्ट काट के निकाल करके
1: जी जी,
0: और लैब में जांच किया जाता है,
1: कंफर्म हो जाता है
0: कि किस प्रकार का ये बोन ट्यूमर है, कैंसरस है कि बेनाइन।
1: सर, तो बेनाइन आपने जो कहा कि बेनाइन जांच में पड़ताल कहा गया कि बेनाइन है, कैंसरस नहीं हुआ, तो इसका इलाज तो आसान है।
0: हाँ, बेनाइन ट्यूमर का इलाज कैंसरस की तुलना में आसान है। बेनाइन में होता है कि कभी कभी जितना साइज में वो डेवलप किया पूरा होल जीवन उतना ही साइज
1: रहेगा,
0: जिसके वजह से कोई दिक्कत नहीं होता है पेशेंट को उस स्वेलिंग की वजह से
1: जी जी।
0: तो बेनाइन, कुछ कुछ बेनाइन ट्यूमर को एज सच छोड़ दिया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है
1: जी जी।
0: लेकिन कुछ कुछ बेनाइन ट्यूमर का भी लक्षण है कि लेट स्टेज में आगे चल करके वो कैंसर फॉर्म में
1: बदल सकता है।
0: तो बेनाइन ट्यूमर का इलाज थोड़ा आसान है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जानलेवा होता है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह उसको फैलने का खतरा, दूसरे शरीर के दूसरे भाग में फैलने का खतरा होता है।
1: लेकिन शुरुआती में, शुरुआत के ही दौर में अगर लक्षण पता चल गया है तो फिर उसका इलाज तो
0: बोन ट्यूमर अगर इनिशियल स्टेज में, अगर कैंसरस फॉर्म का भी बोन ट्यूमर अगर आपको शुरुआती दिनों में आपको पता चल गया
1: जी,
0: तो अगर आप चिकित्सक, हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक से या कैंसर विशेषज्ञ चिकित्सक से आप मिलते हैं तो उसमें भी उसका इलाज है।
1: तो किस तरह का उसमें ऑपरेशन करना होता है, दवा
0: जी जी, उसमें इलाज में कुछ कुछ बोन ट्यूमर का सर्जरी यानी ऑपरेशन से है, कुछ कुछ में बिजली का सेक लगता है जिसको रेडिएशन बोलते हैं, रेडियोथेरेपी
1: जी जी,
0: बिजली की सेक लगाई जाती है, कुछ कुछ में कीमोथेरेपी है यानी दवा खिला करके ट्यूमर का साइज को कम किया जाता है या कंट्रोल में रखा जाता है बोन ट्यूमर।
1: ये सब इनिशियल स्टेज में अगर है तब, लेकिन
0: इनिशियल स्टेज में ही मेनली मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर का इलाज संभव है, अगर लेट स्टेज में आया है तो
1: फिर मुश्किल हो जाता है,
0: पेशेंट का सर्वाइवल यानी जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं सर्वाइव कर सकता है।
1: अब ये जानना चाहेंगे सर कि ये जो बोन ट्यूमर का जो मसला है, जो ये समस्या है, ये किस तरह के लोगों को, लोग इससे ग्रस्त होते हैं आमतौर से? ये अगर
0: बोन ट्यूमर रियली में अलग अलग प्रकार का बोन ट्यूमर अलग अलग एज ग्रुप में कॉमनली होता है
1: जी।
0: जैसे आपको सबसे पहले दो तीन का नाम लेना चाहूंगा चार, कि मोस्ट कॉमन जो होता है मैलिग्नेंट जो कैंसरस बोन ट्यूमर है
1: जी जी,
0: इसमें ओस्टियोसारकोमा और इविंग सारकोमा नाम है
1: जी,
0: ओस्टियोसारकोमा और इविंग सारकोमा जो सबसे खतरनाक ट्यूमर है, और एक जो कि जैसा ओस्टियोसारकोमा का कॉमन एज ग्रुप है 10 साल से 30 साल वाले उम्र वाले लोगों को कॉमनली होता है
1: जी,
0: और इविंग सारकोमा है वो भी आपको 5 से लेकर के 25 साल तक बच्चों को होने का संभावना रहता है, बच्चों और एडल्ट को
1: जी जी।
0: और एक कैंसरस फॉर्म है जिसका कैंसरस बोन ट्यूमर का कैंसरस फॉर्म है मल्टीपल माइलोमा
1: जी,
0: जो ओल्डर एज ग्रुप में होता है 40-45 साल के बाद वाले लोगों को होता है,
1: मतलब हर उम्र करीब करीब 10 साल की उम्र से लेकर के 40-45 साल की उम्र
0: जी, किसी भी उम्र अलग अलग टाइप का कैंसर अलग अलग एज ग्रुप में कॉमन है।
1: इसका कोई खास कारण ऐसा विशेष
0: अननोन है, कुछ कुछ अब धर रहे हैं कि रेडिएशन की वजह से होने

0: कि होने का खतरा बढ़ता है, ये सब कुछ
1: परमाणु तो की बीमारी से लोग ग्रसित ना हो इसके लिए बचाव के तौर पर वो खुद क्या
0: बचाव के तौर पर आप यही कर सकते हैं कि रेडिएशन से बचिए
1: जी।
0: अल्ट्रा बोलता है कि धूप में अल्ट्रा वायलेट रे है, अल्ट्रा वायलेट रे की वजह से ज्यादातर कैंसर होता है।
1: अच्छा, इसमें खाने पीने का भी कुछ ऐसा
0: खाने है पीने का है कुछ कुछ कैंसर को लेकर के, खासकर बोन ट्यूमर में ऐसा तो कुछ नहीं है लेकिन कुछ कुछ आंत का कैंसर है उसमें बताया जाता है कि कुछ खान पान पर डिपेंड करता है, लेकिन बोन कैंसर में खान पान का कोई मतलब नहीं,
1: कोई क्या खा रहे नहीं है, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, वो तो अपने कुदरती तौर पर कहा कि कुदरती तौर पर वो हो जाता है। और अगर किसी ने किसी को अगर हो गया खुदा न खास्ते तो फिर बेहतर यह है कि जितना जल्दी हो सके वो डॉक्टर के संपर्क में आए, चिकित्सक से मिले और उसका इलाज कराए, यही उसका बेहतर समाधान है।
0: बेनाइन ट्यूमर में जैसे मोस्ट कॉमनली एक जो खतरनाक बेनाइन ट्यूमर, खतरनाक ट्यूमर नहीं होता है
1: जी,
0: तो उसमें मोस्ट कॉमन एक इक्सोस्टोसिस है जिसको ऑस्टियोकोंड्रोमा बोलते हैं।
1: अच्छा जी,
0: वो आपको शरीर के किसी भी भाग में हो जाएगा, किसी भी भाग में हार्ड स्वेलिंग के रूप में रहता है
1: जी,
0: जिसका इलाज हम लोग एक्चुअली कॉस्मेटिकली पर्पज से करते हैं कि देखने में अगर खराब लग रहा है या फिर कोई जोड़ को अवरुद्ध कर रहा है, कोई ज्वाइंट को, बोन ज्वाइंट को अवरुद्ध कर रहा है, तब हम लोग उसका इलाज करते हैं और उस ट्यूमर को हटा देते हैं सिंपली। और ये खतरनाक नहीं होता है, इसमें यही है कि दोबारा होने का, रिकरेंस होने का चांसेस रहता है, दैट इज वो आपको इक्सोस्टोसिस हुआ।
1: अच्छा, आपने कहा सर कि जैसे ज्वाइंट में होता है कि कलाई हाथ का जो ज्वाइंट है, कलाई का जो ज्वाइंट है, ये कोहनी का जो ज्वाइंट है, अगर वहां वो दिख रहा है उस तरह का सिम्टम, तो उसमें इलाज के तौर पर जैसे ऑपरेशन वगैरह आपने कहा, तो हड्डी वगैरह काट के भी इसका ऑपरेशन कर सकते हैं?
0: जी जी, हड्डी काट करके ही इलाज होता है। कुछ कुछ जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसमें लिम्ब को, पैर को ही, पैर या हाथ को काटना पड़ता है,
1: लेकिन ये देखना होगा कि वो कहीं और दूर तक फैला
0: जी, जी, अगर दूर तक चला गया है तो फिर पैर और हाथ जहां पर ट्यूमर है उसके नीचे काटने के बाद उसके लिए कीमोथेरेपी यानी कुछ दवाइयां चलाई जाती है ताकि मरीज ज्यादा दिन तक जिंदा रह सके।
1: तो सर, बोन ट्यूमर या बोन कैंसर क्या है, इसके पहचान क्या है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है, इसका क्या इलाज है, इस बारे में जो आपने जानकारी हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, बोन ट्यूमर कारण लक्षण एवं बचाव। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मृत्युंजय कुमार और इनसे बातचीत कर रहे थे मोहम्मद अली शब्बीर अंसारी।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब सुनिए कार्यक्रम गीत संगीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में ये गीत।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हितों पर विचारों का आदान प्रदान के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घ कालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू प्याज सब्जियां फल खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुँचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति

0: शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपये बढ़ाकर 2,441 रुपये किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्य की सुर्खी है सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू प्याज फल सब्जियों अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। 2-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Syed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Sihasak Phuongkhetkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
4: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 80th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
3: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said, a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. He said the proposed legislation aims to address issues including the legal age of marriage, polygamy, inheritance and live-in relationships. He clarified that religious practices would remain outside the scope of the bill.
5: Assam cabinet so passed uniform civil code. We customized that to the requirement of Assam. We have completely exempted tribal population from the purview of uniform civil code. We have also kept all rituals, traditions, customs practiced by the people of Assam outside the scope of uniform civil code. The UCC bill will be laid before the assembly on 26th of May.
3: With this move, Assam is set to become the third state after Uttarakhand and Gujarat to table a uniform civil code bill. The government has prohibited the export of sugar, including raw sugar, white sugar and refined sugar, with immediate effect till September 2026 or further orders. According to a notification, Director General of Foreign Trade has amended the export policy from restricted to prohibited. This prohibition shall not apply to sugar being exported to EU and US under CXL and TRQ quota, the Advance Authorization Scheme, and government-to-government shipments to meet food security needs of other countries. Consignments already in the physical export pipeline are also exempted. The West Bengal government has lifted all restrictions on the interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, oil seeds, food grains and other essential products. The restrictions had been imposed by the erstwhile TMC government. On the other hand, in a significant development, the government of West Bengal decided to hand over the cases related to teachers' recruitment, municipal recruitment and cooperative services recruitment scams to the CBI. The West Bengal government has also terminated the services of all persons who were re-employed by the TMC government after their superannuation. More in this report.
6: In a major relief for farmers and traders, the government of West Bengal has lifted restrictions on the export of agricultural goods to other states. According to a notification issued by the Department of Agricultural Marketing, items such as potatoes, onions, vegetables, fruits, food grains and oil seeds can now move freely across state borders without any barriers. District administrations, police and transport authorities have been directed to ensure smooth implementation of this order. Chief Minister Shubhendu Odhikari, speaking at Nabarno yesterday, said the decision will benefit small and marginal farmers as well as traders. He emphasized that farmers will now receive fair prices for their produce. The Chief Minister also warned that strict action will be taken against officials if goods-laden vehicles are unnecessarily stopped or harassed at interstate borders. This move is expected to ease the way for agricultural exports and reduce the difficulties faced by farmers and traders in West Bengal. Shundipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
3: The government has given 1 year extension to Director of Central Bureau of Investigation, Praveen Sood. According to an official order issued by the Department of Personnel and Training, the Appointments Committee of the Cabinet gave its nod for the extension to Mr. Sood as Director of the Investigation Agency beyond the 24th of this month. Prime Minister Narendra Modi will visit Abu Dhabi tomorrow as the first stop of a five-nation tour that will take him through the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy between Friday and 20th of this month. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will meet UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest.
7: Prime Minister will begin his visit from the UAE on 15 May, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and exchange views on bilateral relations, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and people-to-people connect.
3: More from our correspondent.
8: India and the UAE share one of the most significant energy partnerships in the region. The UAE is currently the fourth largest source of crude oil for India, meeting nearly 11% of the country's total requirement. On liquefied natural gas, Indian companies have locked in long-term supply deals with Abu Dhabi's ADNOC Gas for a cumulative 4.5 million tons per year. Now let's hear from Asim Mahajan, Additional Secretary, Gulf.
9: We share a very vibrant partnership in the area of energy. The UAE is an important partner in our energy security. Last year, the UAE was the fourth largest source of crude oil, meeting nearly 11% of our requirement. In the area of LNG, Indian companies and the UAE Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC, gas have entered into long-term supply contracts for cumulative of 4.5 MMTPA LNG to India.
8: The linking of India's UPI payments platform with UAE's Earni system has already transformed cross-border transactions for businesses and Indian diaspora. The UAE remains India's third largest trading partner and the seventh largest cumulative source of foreign investment over the past 25 years. As West Asia navigates one of its most turbulent periods in recent memory, Friday's meeting in Abu Dhabi is being seen as an important anchor of stability and long-term strategic intent for both nations. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
3: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Morning News. In Uttar Pradesh, rain along with dust storm and lightning have claimed 60 lives in the last 24 hours. Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the incidents and asked the officials to provide every possible help to the affected people. More from our correspondent.
10: A sudden change in weather conditions has caused widespread devastation across the state, with storms, heavy rain and lightning strikes claiming many lives. 17 people died in Prayagraj, while 15 in Bhadohi district, 10 in Mirzapur, 9 in Fatehpur, 5 in Badayun, and 4 deaths are reported in Bareilly district. More than 100 people got injured also and have been admitted to different hospitals. Maximum deaths happened due to incidents of lightning, wall collapse and trees falling on people and vehicles due to dust storm and hailstorm. Incidents of falling of electric poles and trees have reported from different districts affecting the power supply and road traffic. Hailstorm accompanied with rain have damaged the crops badly. Chief Minister Yogi Adityanath held meeting with all the senior officials and asked them to provide compensation to the affected people in next 24 hours. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
3: Meanwhile, India Meteorological Department has forecast heat wave to severe heat wave conditions at isolated places in West Madhya Pradesh and West Rajasthan today. East Rajasthan, Gujarat and Maharashtra will also witness heat wave conditions at isolated places. Meanwhile, the weather agency has predicted heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya today. According to IMD, heavy rain is also predicted over Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 3 days. Places over Delhi, Punjab, Haryana, Bihar, Chhattisgarh, Chandigarh, Odisha, West Bengal and the northeastern states are expected to experience thunderstorms and lightning today. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu secretly visited the United Arab Emirates and met its president during the war with Iran. According to a statement from Netanyahu's office, the Israeli Prime Minister held talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The statement described the meeting as leading to a historic breakthrough in relations between Israel and the UAE. However, no details of the breakthrough were disclosed. In IPL cricket, Virat Kohli created history and broke several records during Royal Challengers Bengaluru's 6-wicket victory over Kolkata Knight Riders in Raipur last night. Kohli scored an unbeaten 105 runs off 60 balls, including 11 fours and 3 sixes. It was his 9th IPL century, the most by any player in the tournament's history. During his innings, Kohli also completed 14,000 T20 runs, becoming the first Indian and the fastest player ever to reach the milestone, breaking Chris Gayle's record. He also crossed 400 runs this IPL season. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
11: Thank you, Saira. Newspapers have widely noticed the hike in import duty of gold and silver after PM's appeal, as also US President Donald Trump's visit to China. Import duty on gold, silver hiked to 15%, writes Financial Express, while in the Sun Times headlines, in first step after PM's appeal, gold silver duty raised to 15%. The Asian Age writes, BRICS foreign minister set to begin talk in Delhi today. In the Neat paper leak case, the Tribune writes, Neat probe traces guest paper to Kerala, CBI nabs 5 suspects. The Statesman headlines, Vijay government wins confidence vote, gets backing of rebel AIADMK MLAs. The same newspaper also informs decision on Kerala CM will be announced today. Indian ships given priority pass in Strait of Hormuz, says Iran Deputy Foreign Minister, writes the Pioneer. U.S. President Donald Trump given a red carpet welcome in China. The Asian Age carries his picture during the welcome ceremony. The paper headlines, Trump in China on three-day visit to hold Xi talk on Iran war and trade. The Times of India writes, deal maker and dragon, Trump seeks to do business with Beijing. The Hindu in its editorial title, testing troubles, writes that leaks and breaches have destroyed the National Testing Agency's credibility. The K. Radhakrishnan Committee, which was constituted to recommend reforms in the examination process, recommended restructuring of the NTA and creating strong institutional linkages with state and district authorities in order to produce a secure test administration apparatus. And finally, the Times of India writes, in a rare and emotional moment during proceedings linked to passive euthanasia, the Supreme Court praised the family of Harish Rana for donating his corneas and heart valve after permission was granted to withdraw life support, observing that his life continues in others through the noble act. And with that, it's back to you, Saira.
3: Thanks, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grain and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1 year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and NewsOneAIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
12: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कोयला राज्य मंत्री ने राज्य के सहयोग को अवस्थापन समाधान के लिए बताया जरूरी। झरिया पुनर्वास योजना के तहत प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। निजी अस्पतालों की मनमानी और इलाज में लापरवाही पर राज्य सरकार सख्त। चतरा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सदर अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की होगी तैनाती। रांची की बेटी भव्या रंजन बनी सीबीएसई 12वीं आर्ट्स की नेशनल टॉपर। 500 में से 499 अंक पाकर देश में लहराया परचम। राज्यपाल ने सफल विद्यार्थियों को दी बधाई। राज्य में आंधी बारिश का सिलसिला जारी। 20 मई तक पूरे राज्य में मौसम खराब रहने की चेतावनी। 15 और 16 मई को कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और झारखंड टी20 लीग की आधिकारिक ट्रॉफी का रांची में आज होगा अनावरण। समारोह में भारतीय स्टार क्रिकेटर ईशान किशन विशेष रूप से होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बेलगढ़िया में कहा कि झारखंड सरकार के सहयोग के बिना वस्थापन और भूधसान समस्या का समाधान असंभव है। उन्होंने प्रभावित लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की अपील करते हुए बताया कि झरिया मास्टर प्लान 2.0 के तहत पुनर्वासित परिवारों को सुविधाएं, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
13: झारखंड सरकार सहयोग नहीं करेगा तब तक विस्थापन की समस्या दूर नहीं होने वाला है। जहां विस्थापन का विषय है नहीं, वहां गैस का रिसाव हो रहा है, भूदशान हो रहा है। भारत सरकार के द्वारा झरिया मास्टर प्लान के तहत घर और व्यवसाय का रास्ता, जैसे स्किल से जोड़ देना और छोटे छोटे कुटीर उद्योग से जोड़ देना, बच्चे लोगों की पढ़ाई के लिए यहाँ ई रिक्शा ई बस की व्यवस्था करना।
12: वैश्विक संकट पर बोलते हुए उन्होंने पेट्रोल डीजल बचाने की प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन किया और सनातन विरोधी बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी।
13: डीजल पेट्रोल का कुआं नहीं है, यहाँ नेचुरल गैस की उपलब्धता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि उनकी स्वीकृति में मात्र 2 ई रिक्शा ई मोटर बाइक लगाया गया है। अब सब लोगों से अपील किया है कि घर से बैठ के काम करिए, ई बस चल रहा है उससे जाइए।
12: चतरा पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने निजी अस्पताल का उद्घाटन करते हुए कहा कि बेहतर चिकित्सा के लिए सरकार निजी अस्पतालों को सहयोग करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि मरीजों से अधिक पैसे लेने या इलाज में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री ने चतरा सदर अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर और एम्बुलेंस बढ़ाने की घोषणा की।
14: मेरी मंशा यही है, हर व्यक्ति तक हम स्वास्थ्य की रक्षा करें। इसी कड़ी में हमने कहा है कि इस राज्य में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं उनको जो भी सहायता चाहिए मैं दूंगा। सरकारी तो हम खोल ही रहे हैं, प्राइवेट को भी अच्छा करना चाहते। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है केवल नाम का नहीं होगा।
12: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राज्य अभियान निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने सरायकेला में निजी अस्पतालों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी निजी अस्पतालों, क्लिनिकों और दवा दुकानों का हेल्थ प्रोफेशनल और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री से जुड़ना अनिवार्य है। निर्देशों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस डिजिटल मिशन से मरीजों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहेगा और इलाज में पारदर्शिता आएगी। राज्य में बिना नक्शा पास बने अवैध भवनों को वैध करने के लिए आज बड़ी राहत मिलने जा रही है। झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली 2026 के तहत आज सुबह 11 बजे प्रोजेक्ट भवन में ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। भाजपा ने राज्य सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि सरकार 3,200 रुपए एमएसपी लागू करने और ओलावृष्टि प्रभावितों को मुआवजा देने में विफल रही है। इसके विरोध में भाजपा 15 से 20 मई तक सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना देगी।
15: पूरे राज्य में आने वाले सभी प्रखंड मुख्यालयों में 15 से 20 मई तक धरना देकर के सरकार को जगाने का काम करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार पदाधिकारियों को भेज करके किसान के एक खेत टाण का सर्वे कराए और जो फसल की बर्बादी हुई है उसका मुआवजा सही आकलन करके सही राशि समय पर देने का काम करे।
12: रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने प्री एसआईआर कार्यों की समीक्षा बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले बीएलओ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में घर घर सत्यापन और स्टिकर लगाने के कार्य में तेजी लाने को कहा। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और मृत व स्थानांतरित मतदाताओं के नाम नियमानुसार हटाए जाएं। पारदर्शिता के लिए पंचायत भवनों में वर्ष 2003 की मतदाता सूची भी प्रकाशित की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची की बेटी भव्या रंजन ने सीबीएसई 12वीं आर्ट्स में देशभर में पहला स्थान प्राप्त कर राज्य का मान बढ़ाया है। भव्या ने 500 में से 499 अंक हासिल कर नेशनल टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। अपनी सफलता पर खुशी जताते हुए उन्होंने बताया कि उनका एकमात्र अंक अंग्रेजी विषय में कटा है।
16: इकोनॉमिक्स में एक मार्क्स कटा, ध्यान तो सब में इक्वली था। उम्मीद थी कि सिटी रैंक या स्टेट रैंक आ जाए, लेकिन नेशनल का नहीं सोचे थे। 11 मई से लेकर अभी तक वेट चल रहा था हम लोग का कि कब आएगा रिजल्ट। जब आया तो काफी खुश हुए।
12: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में सफल सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह शानदार सफलता विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। राज्यपाल ने सभी सफल छात्र छात्राओं के उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य की कामना की है। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अमन कुमार के निर्देश पर बीती रात अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी छापेमारी अभियान चलाया गया। जिले में गठित 43 टीमों ने ड्रग्स के कारोबार और सेवन से लिप्त लोगों के 100 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। इस कार्रवाई के दौरान 77 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया, जबकि 2 आरोपियों को 32 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल दोपहर और रात को तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई, जिससे रांची में कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। मौसम विभाग ने संताल परगना प्रमंडल में कल से 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी वज्रपात बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 16 मई को रांची समेत 15 जिलों के लिए ऐसा ही ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 20 मई तक पूरे राज्य में मौसम का मिजाज बदला रहेगा और इस दौरान तेज हवाओं के साथ वज्रपात और बारिश की प्रबल संभावना है। रांची में आज झारखंड राज्य क्रिकेट संघ द्वारा झारखंड टी20 लीग 2026 की आधिकारिक ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा। इस विशेष समारोह में राज्य में विश्वस्तरीय क्रिकेट मंच विकसित करने की रूपरेखा पेश होगी। कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने CBSE 12वीं के नतीजे घोषित होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रांची की भव्या आर्ट्स में नेशनल टॉपर। प्रभात खबर ने लिखा है, अदिति पांचवें दिन भी लापता, नाले में मिले अवशेषों की होगी DNA जांच। हिंदुस्तान के शब्द हैं, मैया और सर्वजन पेंशन को 10,000 करोड़ जारी। दैनिक जागरण लिखता है, नीट पेपर लीक मामले में 5 गिरफ्तार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोयला राज्य मंत्री ने राज्य के सहयोग को विस्थापन समाधान के लिए बताया जरूरी। झरिया पुनर्वास योजना के तहत प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। निजी अस्पतालों की मनमानी और इलाज में लापरवाही पर राज्य सरकार सख्त। चतरा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सदर अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की होगी तैनाती। रांची की बेटी भव्या रंजन बनी CBSE 12वीं आर्ट्स की नेशनल टॉपर। 500 में से 499 अंक पाकर देश में लहराया परचम। राज्यपाल ने सफल विद्यार्थियों को दी बधाई। राज्य में आंधी बारिश का सिलसिला जारी। 20 मई तक पूरे राज्य में मौसम खराब रहने की चेतावनी। 15 और 16 मई को कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और झारखंड टी20 लीग की आधिकारिक ट्रॉफी का रांची में आज होगा अनावरण। समारोह में भारतीय स्टार क्रिकेटर ईशान किशन विशेष रूप से होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और साथ ही एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है और प्रातःकालीन प्रसारण के साथ मैं हूं आभा।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 हुए हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में यह गीत। फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, बस थोड़ी ही देर में।

ब्रेक के बाद आपको सुनवा रहे हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर और राम लक्ष्मण की आवाजें हैं, देव कोहली के बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।

निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या का आज जन्म दिवस है। जन्म दिवस पर उन्हें विनम्र नमन। उनके बैनर तले बनी फिल्मों में मैंने प्यार किया, प्रेम रतन धन पायो, हम आपके हैं कौन, विवाह जैसे सुंदर सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों ने परिवारों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। आज का आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या पर। प्रेम रतन धन पायो फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुछाल की।

इरशाद कामिल के बोल आपने सुने, हिमेश रेशमिया का संगीत था। ये गीत आप सुन रहे थे प्रेम रतन धन पायो फिल्म से।

तरन्नुम मलिक मोहित चौहान की आवाजों में एक था टाइगर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब फिर वक्त है कि एक बहुत छोटा सा ब्रेक लिया जाए।

ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत और आपको अब सुनवा रहे हैं बॉर्डर टू फिल्म का ये गाना। विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की ये आवाज़ें।

विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाजों में बॉर्डर टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था और विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि सुबह 6:45 पर और शाम 6:45 पर आप सुनते हैं संगीत सरिता कार्यक्रम। आज सुनिएगा श्रृंखला शाम 6:45 पर, श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी आज। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए कार्यक्रम आज सुनेंगे। इसके अंतर्गत गिटार वादक अनिकेत गुंदेवार से जयंत पात्रीकर की बातचीत सुनेगा भाग दूसरा होगा आज। प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले। अब चित्रलोक कार्यक्रम में ये गाना, ये वनवास फिल्म का गाना है। नाना पाटेकर शान और मोंटी शर्मा की ये आवाज़ है।

0: वनवास फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नाना पाटेकर, शान और मोंटी शर्मा की आवाजें थी। सुनील शिव का ये गीत लिखा हुआ था और मोंटी शर्मा का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये संदेश।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

बार बार देखो फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अमर आरसी और साथियों की आवाजों में जैस्लीन रॉयल का ये संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कुचामन सिटी राजस्थान के जिला मुख्यालय में 14 मई 1943 को प्रसिद्ध निर्माता ताराचंद बड़जात्या के यहाँ जन्मे राजकुमार बड़जात्या। खनन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 1962 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन पिता के अनुरोध पर राजश्री प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए इन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी।

राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी फिल्में शामिल रही हैं। राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्में मनोरंजन की मांग को हमेशा ही पूरी करती रही हैं। फिल्मों के वितरण और प्रोडक्शंस के कार्यों को पूरा पूरा सफलतापूर्वक अंजाम देना राजकुमार बड़जात्या ने आरंभ कर दिया था। एक निर्माता के रूप में 1994 से लेकर 2019 तक ये सक्रिय रहे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में पिया के घर से लेकर मैंने प्यार किया तक का सफर इन्होंने पूरा किया। सह निर्माता के रूप में 1979 की फिल्म नैया से ये जुड़े।

राजकुमार बड़जात्या एक फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बड़जात्या परिवार का एक ऐसा सदस्य जिन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण के अपने पारिवारिक व्यवसाय को बड़ी ही शिद्दत से निभाया। फिल्म निर्माण की अपनी विरासत में इन्होंने कई पारिवारिक मूल्यों के साथ ली हुई लोकप्रिय संगीतमय कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। एक फिल्मकार की संपत्ति और समाज में मान मर्यादा उनकी फिल्मों से ही पहचानी जाती है। राजकुमार बड़जात्या हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन कथाओं, अभिनय, गीत संगीत के माध्यम से आम और खास दर्शकों को उनके पसंदीदा विषयों की सार्थक फिल्में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार बड़जात्या सबसे पहले 1972 की फिल्म पिया का घर से जुड़े। बासु चटर्जी की लिखी और निर्देशित इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ताराचंद बड़जात्या ने।

राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म सौदागर, जिसके निर्देशक थे सुधेंदु रॉय, नूतन, अमिताभ बच्चन, पद्मा खन्ना अभिनीत। इस फिल्म के राजकुमार बड़जात्या सहयोगी निर्माता थे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने तपस्या फिल्म में काम किया, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन अनिल गांगुली ने किया और निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या। ये फिल्म अनुभवी बांग्ला उपन्यासकार आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी। फिल्म में राखी, परीक्षित साहनी, ललिता पवार ने मुख्य भूमिकाएं अदा की थी। संगीत रविंद्र जैन का था। इस फिल्म ने 1976 वर्ष की संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही राखी। सन 1980 में इसी फिल्म को तेलुगु भाषा में भी बनाया गया। सन 1976 की चितचोर, 1980 की एक बार कहूं, 1984 की सारांश और 1989 की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में भी राजकुमार बड़जात्या एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में रहे।

0: 1994 में आई हम आपके हैं कौन, HAH के यानी हम आपके हैं कौन, राजकुमार बड़जात्या की एक निर्माता के रूप में आई संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसे इनके पुत्र सूरज बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया और राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के बैनर तले इसका निर्माण किया गया। माधुरी दीक्षित और सलमान खान अभिनीत 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई यह फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने फिल्म वितरण के नए तरीकों को अख्तियार कर साफ सुथरी कहानी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को हिंसक कहानी ली हुई फिल्मों के बीच बदलाव का एक सुकून भरा एहसास दिया। साथ ही साथ निर्माण और वितरण का तरीका भी बदला इस फिल्म ने। राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य अवार्ड्स में इस फिल्म की धूम रही।
1: पहला

एच ए एच के बाद 1999 में आई निर्माता राजकुमार बड़जात्या की हम साथ साथ हैं। अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का था। ये फिल्म भी उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा। ये फिल्म टोरंटो में 6 स्क्रीन्स पर कनाडा के सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित तिथि से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शंस, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर 1999 को स्क्रीन्स पर ये फिल्म आई और

2002 में फिल्म आई हम प्यार तुमसे कर बैठे। जुगल हंसराज और टीना राणा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। 2003 की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं, जो चितचोर पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन। राशि प्रोडक्शंस की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था यशराज फिल्म्स ने।

एक विवाह ऐसा भी, इस नाम की फिल्म लेकर आए राजकुमार बड़जात्या साल 2008 में। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ईशा कोप्पिकर, सोनू सूद और आलोक नाथ ने। ये फिल्म आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित।

हम राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने फिल्म बनाई इस लाइफ में, 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। ये फिल्में राजकुमार बड़जात्या की अन्य फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई।

इसी क्रम में 2011 में सचिन पिलगांवकर के निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म्स की प्रसिद्ध फिल्म अखियों के झरोखों से की सीक्वल आई जाना पहचाना, जिसमें सचिन और रंजीता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म। ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म थी प्रेम रतन धन।

सलमान खान, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश अभिनीत ये फिल्म दर्शकों के मापदंड पर खरी उतरी। 2019 में एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए हम चार। अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित इस फिल्म में चार नए चेहरों को पेश किया गया था। ये राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की 58वीं फिल्म थी।

0: राजकुमार बरजात्या का 21 फरवरी 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। एक निर्माता के रूप में राजकुमार बरजात्या ने पारिवारिक फिल्मों की अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय दर्शकों के लिए अपनी जमीन से जुड़ी हुई कहानियों को, भावनाओं को, रिश्तों को बड़े ही जतन और प्यार से सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित किया। इनकी फिल्में भारतीय सिनेमा इतिहास में बेहतरीन कथानकों और प्रस्तुतिकरण के लिए हमेशा ही चिन्ही जाएंगी। और जब भी दर्शक इन फिल्मों को देखेंगे, राजकुमार जी की कथा शैली और निर्माण कला के मुरीद हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निर्माता राजकुमार बरजात्या पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज
1: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

0: प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, साथ ही अंजलि का नमस्कार जोहार। दोस्तों, मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। मौन से जहां कई मुसीबतों को पास भटकने से रोका जा सकता है, तो मुस्कान से कई मसलों का हल निकाला जा सकता है। इसीलिए हमेशा दोनों का इस्तेमाल करें और खुश रहें।

दोस्तों, आज 14 मई है तो जानते हैं सबसे पहले आज का मौसम के बारे में। तो मौसम का अनुमान लगाया जा रहा है कि मौसम साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, लेकिन बाद में बारिश होने की संभावना है। और तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और कल 15 मई का अनुमान लगाया जा रहा है कि कल अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और आज सूर्यास्त का समय है 6:24 और कल सूर्योदय का समय है 5:18 पर। और आर्द्रता की बात करें तो अधिकतम 65% और न्यूनतम 35% है।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। दोस्तों, वैसे तो सभी मौसम में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन जब मौसम बदल रहा हो या एक ही दिन में हर तरह के मौसम का अनुभव हम करते हैं, कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी बरसात, तो ऐसे में विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो अपने घर की सफाई के साथ साथ आसपास की सफाई का भी ध्यान बहुत जरूरी है और अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान रखें। और घर से बाहर निकले तो अपना घर का ही पानी लेकर जाएं, ताकि कहीं भी जरूरत पड़े तो हम अपने घर का साफ पानी पी सके, क्योंकि गंदा पानी से भी कई तरह की बीमारी होने की उम्मीद रहती है, संभावना रहती है। इसीलिए पानी का उपयोग हमेशा साफ करें और साथ ही साथ अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान दें। बाहर में खुली चीजें जो सड़क किनारे मिलती है उसे तो बिल्कुल ना खाएं, घर का ही बना ताजा खाना का उपयोग करें। और नियमित रूप से व्यायाम भी जरूरी है, सुबह टहलना भी जरूरी है। तो अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और साफ सफाई का भी ध्यान रखें।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। आज 14 मई है, तो जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। तो आज ही के दिन 1607 में उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजों ने अपना पहला अस्थाई ठिकाना जेम्स टाउन स्थापित किया था। 1796 में आज ही के दिन एडवर्ड जेनर ने दुनिया का पहला स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का टीका लगाया। 1948 में आज ही के दिन इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और उसी दिन डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की थी। 1954 में आज ही के दिन लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने घोषणा की हाउस ऑफ द पीपल, जो अब लोकसभा कहा जाएगा।

दोस्तों, आज 14 मई को अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस हर साल 24 मई को मनाया जाता है। डायलन थॉमस वेल्स कवि थे जो अपनी भावपूर्ण कविताओं और उथल पुथल भरी निजी जिंदगी के लिए जाने जाते थे। उनकी रचना टू नॉट गो जेंटल इन टू डेट गुड नाइट और अंडर मिल्कवुड इनकी दो सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इन्हीं के लिए अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस मनाया जाता है।

0: वाली उम्र है,
1: छोड़ो बहाना
0: ना।
2: दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब जानते हैं कि आज के दिन किनका जन्म हुआ था। तो आज ही के दिन 1657 में छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ था, जो मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति और शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे। जॉर्ज लुकास का जन्म आज ही के दिन हुआ था 1944 में, जो प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्देशक और निर्माता थे, जो स्टार वार्स और इंडियाना जोन्स जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। मृणाल सेन, इनका जन्म 1923 में हुआ था, भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। आज ही के दिन 1883 में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का जन्म हुआ था, जो भारत के एक प्रमुख वकील और संविधान सभा के सदस्य थे। और आज ही के दिन वहीदा रहमान

दोस्तों, ऐसे तो आप सभी यातायात के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि घर से निकलते समय सीट बेल्ट और हेलमेट का हमेशा उपयोग करें और अपने निर्धारित लेन में ही वाहन को चलाएं, और जहां तक हो सके बहुत जल्दी का भी काम हो, जल्दी पहुंचना हो, फिर भी गति पर हमेशा नियंत्रण रखें। ओवरटेक से हमेशा दूरी बनाकर रखें। और दोस्तों, जहां नो एंट्री हो वहां कभी न जाएं, और बहुत जरूरी पड़े तभी हॉर्न बजाएं और ट्रैफिक सिग्नल का हमेशा पालन करें।

0: दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है।
1: अच्छा, तो हम चलते हैं।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से अंजलि को दीजिए अनुमति. नमस्कार.
1: 10 9 8 7

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, बस थोड़ी ही देर में।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
2: रंग तरंग
1: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में। मैं हूं विधि प्रवीण जैन, नमस्कार।

हम सुन रहे थे मनमस्त कबीरा एल्बम से बैजू मंगेशकर की आवाज में और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए, कबीर के द्वारा लिखे गए इन प्यारे से बोलों को। आइए चलते हैं, सुनते हैं अगला नगमा आज के कार्यक्रम रंग तरंग में। ये सुंदर सा नगमा लिया है हमने कागा एल्बम

मिर्जिया, डेयर टू लव इस एल्बम का नाम है। कौशिकी चक्रवर्ती ने इसे गाया है, गुलजार ने इसे लिखा है और शंकर एहसान लॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

द खजाना कॉन्सर्ट अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के द्वारा संगीतबद्ध किए गए और गाए गए इस प्यारे से नगमे को हम सुन रहे थे। आइए सुनते हैं अगला नगमा कार्यक्रम रंग तरंग में, बड़ा खूबसूरत सा है, जिसे लिया गया है यूनिक जगजीत सिंह एल्बम से, जिसे जगजीत सिंह ने गाया है और उन्होंने ही संगीतबद्ध किया है, सहरी भोपाली ने इसे लिखा है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं एहसास एल्बम से तलत अजीज के द्वारा संगीतबद्ध किए गए और गाए गए सईद राही के द्वारा लिखे गए इस प्यारे से नज्म को, और सुनते हैं ये प्यारी सी नज्म।

यार का दीदार चाहिए एल्बम से राम शंकर की आवाज में असीर बुरहानपुरी ने इसे लिखा और दीपक पंडित ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, अनफॉरगेटेबल ट्रीट, आशा भोसले एल्बम से। आशा भोसले की आवाज में फानी बदायूनी ने इसे लिखा और जयदेव ने इसे संगीतबद्ध किया।

हम सुन रहे थे एल्बम प्यार का पहला खत से ये नगमा जगजीत सिंह की आवाज में, जगजीत सिंह के ही संगीत के साथ। इसे लिखा है हस्ती ने।

0: हम सुन रहे थे गुलदस्ता अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज में उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए अमीर हनीफ के बोलों को। यहीं पर समाप्त होता है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री तथा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केन्द्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर डॉ जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
3: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चल रहे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक परिदृश्य को बदल रही हैं और ऐसी उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स इसमें सार्थक तथा स्थिरता लाने वाली भूमिका निभाएगा। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने व्यापक रणनीतिक भारत इंडोनेशिया साझेदारी की प्रगति और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के साथ सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ ऊर्जा से लेकर विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी भागीदारी के बाद अब भारत अफ्रीका सहयोग का अगला चरण उच्च मूल्य उत्पादों और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्मित होगा। कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका कारोबारी संवाद और प्रदर्शनी तथा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
4: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सबके लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
2: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न कृषि चुनौतियों से उन्हें अवगत कराया तथा मूल्यवर्धित फसल खेती पर जोर दिया। श्री चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कपास, दलहन, तिलहन और बागवानी अभियान के लिए केंद्र और पंजाब सरकार मिलकर काम करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए याद करते हैं राजकुमार बड़जात्या, जो कि निर्माता निर्देशक रहे, उन्हीं की फिल्मों में से चुनिंदा कुछ गीतों को सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल में।

इसी लाइफ में इस फिल्म से हम सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में मनोज मुंतशिर के बोल और मीत रोजन जान के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में, जो कि है हम साथ साथ हैं फिल्म से। हरिहरन, घनश्याम वासवानी, प्रीतम राव, संतोष तिवारी की आवाज में, जिसे रविंद्र वाल ने लिखा है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज यादों की महफिल में हम याद कर रहे हैं निर्माता निर्देशक राजकुमार भरजात्या को। तो आइए सुनते हैं उनके ही द्वारा रची गई फिल्मों में से फिल्मों के गीत। अगला गीत होगा चितचोर फिल्म से, यशुदास की आवाज में रविन्द्र जैन के बोल और रविन्द्र जैन के ही संगीत के साथ।

0: सौदागर फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के ही संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आइए सुनते हैं बहुत सुंदर सा नगमा अगली गी फिल्म के साथ में, जिसे निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या जी के द्वारा बनाया गया है। ये है प्रेम रतन धन पायो फिल्म से। अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर, शबाब सबरी और साथियों की आवाज़ में, इरशाद कामिल के बोल हैं और हिमेश रेशमिया का संगीत है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत हम आपके हैं कौन फिल्म से। लता मंगेशकर, बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाज में रविंद्र अग्रवाल के बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। बड़ी खूबसूरती से हमने सजाया इसे सुंदर गीतों के साथ में। राजकुमार बड़जात्या के द्वारा बनाई गई फिल्मों के गीतों को हम सुन रहे हैं। अगला गीत हम सुनेंगे पिया का घर फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

विवाह फिल्म का यह गीत उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाज में रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन के संगीत के साथ हम सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल में। और इसी कार्यक्रम में हम सुनने वाले हैं एक और

0: कार्यक्रम यादों की महफिल में बस इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस शुरू होगा थोड़ी ही देर के बाद।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि जैन और आज की इबारत मैं आप सबके साथ पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ श्रोताओं ने इस इबारत को ना पढ़ा हो क्योंकि वो फेसबुक पर ना हो। तो चलिए चलते हैं उस इबारत की ओर कि हमने जो इबारत आपको भेजी है वो ऐसी है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कहा कि डॉन पकड़ में नहीं आता। तभी उसी ने मुस्कुराकर कहा, आपके पैर बहुत हसीन हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत में तारीफ भी एक कला होती है, लेकिन मोहब्बत की दुनिया इतनी सीधी कहाँ है। कभी तो ये चाकू सी है, हाथ कट जाता है, कभी दिल को भी चोट लगती है। कई बार लोग पूछते हैं कि कितने अपने मिले और कितने पराए, या कहूं कि जिंदगी की भीड़ में जब लोग पूछते हैं कितने आदमी थे, तब अपने हौसले गिनकर बता देती हूं। और कभी जीवन में लोग नहीं मिलते हैं और देते हैं तारीख पे तारीख, पर हम तो हर हाल में खुश हैं। मुस्कुराकर कहते हैं कि हम जहां खड़े हो जाते हैं भीड़ लग जाती है, जीतते जाते हैं पर डर लगता है मृत्यु से। तो मन कहता है, बाबू मुशाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी तो रस्सी भी है। अपनों की याद में आंसू बहने नहीं, मैं लिखा है कि आज की इबारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल हैं। अब ऐसे दृश्यों में जो कलाकार दिख रहे हैं उन पर गीत, पर हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज कुछ नए तरीके से आपने विचार व्यक्त किए हैं, फिल्म के साथ नजरिया है। यह याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इंसान को अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए, क्योंकि जीवन किसा वक्त शोले दामनी खाली अमर प्रेम आनंद मेरे महबूब हो सकता है। और भी कुछ फिल्मों के डायलॉग सादगी से कहा, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। उस पल समझ में आया मोहब्बत में तकरार भी। इतना अच्छा लिखा है तो हम चलते हैं हमारे उसी इबारत की तरफ। और हमने सबसे मैं मेरी पसंद से आपको एक गीत सुनवा दूंगी और हो सकता है यही मांग आपकी भी हो, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो फिल्मों के डायलॉग्स होते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसे बहुतायत में आप प्रयोग किया करते हैं। जल्दी से मुझे संदेश भेजिएगा, ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसका उपयोग आप बहुत बार करते हैं और लोग उस बात पर उस आपके उस अंदाज पर खुश भी हो जाते हैं। तो जल्दी से ये बात हमें बताएं। और हमारे श्रोताओं ने इस बारे में लिखा है, एक एक अलग अलग बातें लिखी हुई हैं डायलॉग्स के बारे में लिखा है। तो चलिए हम ये गीत बढ़िया सा सुनते हैं, और अगर आपकी पसंद का है तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आपकी और हमारी पसंद मिलती है।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है।
2: बताए दे।
1: निकले थे हम हलवा खाने, मुँह ही जल गया है।

0: कभी हुआ गए कभी यहाँ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे कभी इधर भागे।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने मुंह ही जल गया है।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए।

0: सुबाला खुल जाए बंद अकल का ताला।
1: आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, दोपहर के 1:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कोयला राज्य मंत्री ने की झरिया मास्टर प्लान और पुनर्वास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा। निर्माण कार्यों की निगरानी करेंगे आईआईटी और आईआईएम। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य संशोधित रिजल्ट मामले में जेएसएससी को प्रार्थियों की सीटें सुरक्षित रखने का दिया निर्देश। अगली सुनवाई 7 जुलाई को। राज्य में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक बनाने की तैयारी। सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में लगेंगी ऑटोमेटिक पैथोलॉजी मशीनें। कोयला मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम ने रांची में की सीसीएल की समीक्षा। सोशल मीडिया और तकनीकी कार्यों में हिंदी के उपयोग को सराहा। और रांची में वैज्ञानिक पद्धति आधारित लाह खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बांटे टूल किट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कोयला भवन में संशोधित झरिया मास्टर प्लान और जेआरडीए के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जिला प्रशासन विस्थापित परिवारों को उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और पेंशन जैसी सरकारी योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि बेलगढ़िया टाउनशिप और अन्य पुनर्वास क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों का सहयोग लिया जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य के संशोधित रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जेएसएससी को प्रार्थियों के लिए सीट सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए आगामी 7 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने काफिले से गाड़ियां कम करने की पहल का भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने स्वागत किया है। आदित्य साहू ने प्रधानमंत्री के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं को भी प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेनी चाहिए।
1: पेट्रोल डीजल को लेकर के वैश्विक कठिनाई उत्पन्न हुई है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों की वेदना को समझते हैं और उनकी कठिनाइयों को हर संभव 24 घंटा दूर करने में लगे रहते हैं। अब पेट्रोल डीजल की कमी आयात होने के चलते देशवासियों से अपील किया है कि कम से कम डीजल पेट्रोल उपयोग करने का काम करें, जो आवश्यक आवश्यकता है उसी में इसका उपयोग करने का काम। उनके काफिला थे उसमें भारी कमी की गई है। जो गाड़ियां उनके काफिले में है वो भी बैटरी सिस्टम से चलने वाली गाड़ियां हैं।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री बचत की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता जमीन पर काम करने के बजाय केवल फोटो खिंचाने और इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त हैं।
2: भारतीय जनता पार्टी का जवाब समय आने पर दिया जाएगा। चुनाव रहता है तब तो आप बड़ी बड़ी बात कर देते हैं, और चुनाव खत्म हो गया आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। उसके पहले अर्थव्यवस्था की बात आपके द्वारा कहाँ कहा जा रहा था। देश चलाने में ये असफल रहे और जनता भी समझ रही है कि आप जनता के साथ क्या कर रहे हैं।
0: राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में पूर्णतः ऑटोमेटिक पैथोलॉजी मशीनें लगाने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि पहले चरण के बाद इस योजना का विस्तार सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक किया जाएगा। रांची में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यातायात पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अधिकारियों को ब्लैक फिल्म, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इसके अलावा ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य करने तथा स्कूलों के समय यातायात दुरुस्त रखने को कहा गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने दो दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि देश में कहीं भी कोई आपदा आए या आने के संकेत मिले तब NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
3: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है।
4: ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: कोयला मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय टीम ने रांची स्थित सीसीएल मुख्यालय में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। डॉक्टर माणिक चंद्र पंडित के नेतृत्व में आई इस टीम ने प्रशासनिक, तकनीकी कार्यों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर हिंदी के उपयोग का जायजा लिया। समीक्षा के दौरान सीसीएल प्रबंधन ने बताया कि राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025-26 में कुल 19 कार्यशालाएं आयोजित की गई। रांची के लापुंग प्रखंड के सिद्कोफेड द्वारा वैज्ञानिक पद्धति आधारित लाह खेती प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहातर की बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान 3 पंचायतों के 377 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही आगामी जून जुलाई माह में प्रत्येक किसान को 5-5 किलो कुसुमी एवं रंगीनी लाह बिहन शत प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। रांची के सिविल सर्जन ने राजधानी के सभी निजी अस्पताल संचालकों के साथ आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि योजना के तहत आने वाले पात्र मरीजों को बिना किसी परेशानी के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए।
5: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आगे बढ़ाना और एबीडीएम में झारखंड और रांची सदर अस्पताल भी काफी आगे बढ़े हैं। राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम हुआ, इसकी चर्चा हुई कि यहाँ काफी अच्छा काम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हो रहा है।
0: स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के तहत केंद्रीय जांच टीम ने मानगो नगर निगम क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। सुबह NH-33 और बालीगुमा से शुरू हुए इस निरीक्षण में टीम ने कचरा संग्रहण प्रणाली का जायजा लिया और घरों में जाकर लोगों से सीधा फीडबैक लिया। इस दौरान मोबाइल ऐप के जरिए केंद्रीय सर्वर पर ग्राउंड रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज की गई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 595 अंक बढ़कर 75,204 पर और निफ्टी 208 अंक की वृद्धि के साथ 23,620 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,50,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 3,05,000 रुपये प्रति किलो है। पलामू जिले में कल देर शाम आई तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में पेड़ गिरने से एक अधेड़ समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज मेदनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने संताल परगना प्रमंडल समेत कई जिलों में कल 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, वज्रपात और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 16 मई को रांची समेत 15 जिलों के लिए ऐसा ही ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोयला राज्य मंत्री ने की झरिया मास्टर प्लान और पुनर्वास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा। निर्माण कार्यों की निगरानी करेंगे आईआईटी और आईआईएम। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य संशोधित रिजल्ट मामले में जेएसएससी को प्रार्थियों की सीटें सुरक्षित रखने का दिया निर्देश। अगली सुनवाई 7 जुलाई को। राज्य में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक बनाने की तैयारी। सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में लगेंगी ऑटोमेटिक पैथोलॉजी मशीनें। कोयला मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम ने रांची में की सीसीएल की समीक्षा। सोशल मीडिया और तकनीकी कार्यों में हिंदी के उपयोग को सराहा। और रांची में वैज्ञानिक पद्धति आधारित लाह खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बांटे टूल किट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: जाने वाला तारीफ करता है तो हम उसकी नजर से देखने लग जाते हैं, जिससे स्वयं आत्ममूल्य बढ़ता है और रिश्ते में सुकून आ जाता है। अगर तारीफ झूठी हो तो प्रेम नहीं बल्कि सौदाबाजी बन जाती है। सच्ची तारीफ भरोसा और अपनेपन भरोसा और अपनेपन को गहरा करती है। अक्सर प्रेम में पुरुष स्त्री की आंखों की और स्त्री पुरुष के मन की तारीफ करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन वही पुरुष स्त्री की आंखों को और स्त्री पुरुष के मन को पढ़ने की कोशिश करे, ये पढ़ ले, तो मोहब्बत किसी बाहरी सुंदरता की तारीफ की मोहताज नहीं रह सकती, बल्कि मोहब्बत की ही तारीफ हो जाती है। और एक बहुत खूबसूरत सा डायलॉग है जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, राजकुमार का बेहतरीन संवाद है कि आपके पैर बहुत हसीन हैं। ये राजकुमार जी का जरा बताइएगा, आपके पैर बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत रखिए मैले हो जाएंगे। ये डायलॉग पाकीज़ा फिल्म का है और उसका ही ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हो सकता है ये आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों का मिलान हो रहा हो, बताइएगा। अगर आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों की पसंद मिल गई है तो ज़रूर हमें सूचना दीजिएगा, और इतना सब बस बता दीजिएगा कि इस गीत के गीतकार कौन है, और साथ में ये बताइएगा जो प्रश्न में चल रहा है उसको तो चलने ही दीजिए कि आपका पसंदीदा डायलॉग कौन सा है, और उसके साथ ये बताइएगा कि कभी कोई डायलॉग किसी मित्र ने, किसी शिक्षक ने, कभी माँ ने आपको ऐसे ही अनजाने में सुना दिया हो और आप हंस हंस के लोटपोट हो गए हो जहां पर आपकी पिटाई हो रही थी या डांट पड़ रही थी, जरूर बताइएगा। सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा, बताइएगा इसके गीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे पाकीज़ा फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलाम मोहम्मद के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन है, तो हमारे श्रोताओं से कहाँ क्या छुपा है, बहुत अच्छे से उन्होंने उत्तर दिया कि कैफ़ी आज़मी ने इस गीत को बोल दिए हैं। और गुलाम मोहम्मद ने कितना खूबसूरत संगीत दिया है ना। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रेलगाड़ी की सीटी आकर्षण का केंद्र है, गाने के अंत में सुनाई देती है। हाँ, हमने भी सुनी इन्हीं हेडफोन्स के जरिए विविध भारती के स्टूडियो से, आपने भी सुनी होगी अपने अपने रेडियो हैंडसेट पर। और हमारे श्रोताओं को बड़ा पसंद आ रहा है ये गीत, तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, गीत रूह को छू लेने वाला एक एहसास है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो जब हमारे पसंद के गीत हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं, शबे आखिरी शबे इंतज़ार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलती जलती। क्या बढ़िया शेर उठाया है आपने गीत से। हमारे श्रोता लिखती हैं, हमने पूछा था आपसे कि आपको कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपके घर वाले आपको देते हैं तो आप मार खाते खाते या डांट खाते खाते हंसने लगते हैं। तो हमारी श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी हमेशा मुझे डांटती है, कभी कभी जब मारने लगती है तो मैं कह देती हूँ डॉन को ना, कभी दर्द नहीं होता। तो मम्मी हंसती है, फिर क्या ना एक और डायलॉग बोल देती हूँ, हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिर हम और वो और उनकी माँ दोनों बहुत हंसते हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपकी माँ आपके साथ आपको बहुत पिटाई करती हैं और बहुत सारा प्यार भी करती हैं, इन दोनों को संभाल कर रखिएगा। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे लिखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के इस सुरीले सफर में डायलॉग की बात हो रही है, तो उन्हें जो डायलॉग पसंद है उन्होंने लिखे हैं, चल तनु बसंती आज, चल धनो, यहाँ तनु नहीं या धनो होना चाहिए, चल धनो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। तुम्हारा क्या नाम है बसंती, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, आओ महारथी आओ। ये सारे डायलॉग ये बहुत प्यार से बोलते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बोला कि आज का मेरा खुद का डायलॉग है कि अपुन सफर के साथ सफर यानी डबल सफर करता है, हम विविध भारती मुंबई के सुरीला सफर के साथ साथ ट्रेन के सफर का भी आनंद ले रहे हैं, आपकी यात्रा शुभ हो, हम ये बात आपसे कहते हैं। और हमारे श्रोता लिखती हैं कि हमारी आदत है शांति तुम नहीं जानती ये बोलने की। हाँ, ये बड़े प्यारे से डायलॉग थे ना, मीठे मीठे सुरीले सुरीले। और हमारे श्रोताओं ने जब बहुत सारे डायलॉग्स के बारे में लिखा, तो हमारे एक श्रोता ने तो ढेर सारे डायलॉग्स ही पहचान करके लिख दिए, और उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन सारे डायलॉग अभी हम नहीं बोल सकते। हमारे श्रोता लिखते हैं, जंजीर फिल्म का एक संवाद है, जब तक बोला ना जाए चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और हमारे श्रोता कहते हैं, अक्सर मेरे मित्र पूछते हैं कि आपके स्वस्थ और खुश रहने का राज क्या है, उनसे मेरा यही कहना है, मैं विविध भारती सुनता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, सुनते रहिए, ये डायलॉग बड़े काम का है। हमारे श्रोता ने लिखा, हमने कल रात को ही प्रोमो देखा फिल्मों के डायलॉग के गीत पर, सभी को नमस्कार, लेकिन आज उन्हें गोधड़ी सिल के भेजनी है तो गाने सुनेंगी, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में जब हम घर पर बच्चे शैतानी करते थे, माँ हम सब की शिकायत पापा से करती थी, तो हमारे पिताजी पूछते थे कितने आदमी थे, और अब तो हंसी आती है यह सोचकर। हाँ, लेकिन उस समय तो हम सब की हालत पिटाई और डांट के डर से देखने वाली होती थी। ऐसे ही खुश रहिए, क्योंकि ये डायलॉग जो है ना बड़े प्यारे प्यारे हैं। और हमारे अगला जो डायलॉग है वो बहुत खूबसूरत सी हीरोइन का डायलॉग है, तो ये गाना आप सुनिए और उस डायलॉग का जिक्र कीजिए, और उसके साथ ही एक जिक्र और कर दीजिएगा कि वो अभिनेत्री कौन है, उनका वो डायलॉग कौन सा है, और ये फिल्म कौन सी है। ये तीन प्रश्न मैं आपके पास रख रही हूँ, अभिनेत्री, वो डायलॉग और साथ में फिल्म का नाम। सुनिए।

हम सुन रहे थे ये गीत अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और बता दीजिएगा जल्दी से, और यह भी बता दीजिए कि इसके साथ में डायलॉग कौन सा है। तो हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया है कि जानी ये चाकू है, लग जाता है तो खून निकल आता है, श्रीदेवी, और फिल्म का नाम भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, चालबाज। हमारे श्रोता लिखते हैं, चुलबुली अभिनेत्री श्रीदेवी का स्माइक असामयिक निधन हुआ, वो अफसोस की बात है, हम सभी उन्हें सच में याद करते हैं। और बड़ा खूबसूरत सा ये जो डायलॉग का सफ़र चल रहा है, हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब भी स्कूल के दिन अपने दोस्तों के साथ छुट्टी लेते थे या घर जाते थे तो लिखते थे कि अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी, जब तुम कहोगी, ये डायलॉग इनके बीच में चलता था। और हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने कई सारे डायलॉग्स के बारे में बड़े प्यार से बताया है, और श्रोता अपनी बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां भी लिख देते हैं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि घर बच्चे छोटे थे, जब भी घर पर मैगी बनाते थे तो बच्चे कहते थे माम हो गए, वो खुश हुआ, और इस बात से हमारे श्रोता भी खुश हो जाते थे ये डायलॉग सुनकर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शाहरुख काजोल का वो डायलॉग है पलट पलट, वो भी उन्हें बहुत पसंद है। बिल्कुल सही बात है, ये कई लोग ट्राई करते हैं इस डायलॉग को। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमें ये डायलॉग अच्छा लगता है, आपकी इबारत में भी है कि बाबू मशाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और सही भी है। और शोले फिल्म का डायलॉग, बसंती का डायलॉग, हाँ बाबू जी कहाँ जाओगे, बेलापुर, फतेहपुर, ये डायलॉग भी उन्हें बहुत पसंद है। पर ये डायलॉग पूरा याद करना बड़ा मुश्किल है, कैसे हैं उस अभिनेत्री हेमा मालिनी ने उसे याद किया होगा। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, तो एक फिल्म धमाल का एक डायलॉग है, प्रेम चोपड़ा साहब डब्ल्यू वाली बात पर बताते हैं तो जावेद जाफरी कहते हैं कि हम कोई उसके बाप के नौकर हैं जो उसका काम कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें मुगले आजम का डायलॉग बड़ा पसंद है, मेरा दिल आपका हिंदुस्तान नहीं है जिस पर आप राज कर सकें। क्या बढ़िया बात है, ब्लैक एंड वाइट मूवी का ये डायलॉग। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और अब हम आपको अगला जो प्यारा सा गीत है वो सुनवा रहे हैं। और इस फिल्म के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग आप लिखकर भेज सकते हैं, ज़रूर भेजिएगा, और बस इतना ही बता दीजिएगा, वैसे आपको गाना सुनते ही पसंद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा इसके गायक कलाकार कौन है और फिल्म कौन सी है और किस सन में आई थी, ये बताएंगे।

हम सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार मन्ना डे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, शोले 1975 की फिल्म है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उस समय वह 8वीं कक्षा में थे, यानी आपने अपनी 8वीं कक्षा में ही शोले देख ली थी, कितने सौभाग्यशाली हैं। चलिए हम हमारे श्रोताओं से हमने कुछ प्रश्न पूछे थे, उन सबके उत्तर हमारे पास आ रहे हैं। आज का सुरीला सफर में जुड़कर मुगैम्बो खुश हुआ क्यों मिस्टर इंडिया, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। और हमने पूछा था आपसे कि इस फिल्म के कई सारे डायलॉग शायद आपको पसंद होंगे, तो जरूर भेजिएगा। मौसी जी, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि असरानी का डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं क्या? आप सही बात है, शंभू का दिमाग दोधारी तलवार है। प्रेम चोपड़ा का ये डायलॉग उन्हें बड़ा पसंद है, एक हाथ का पंजा कटा हुआ है तो उसके ऊपर धातु का ग्लव यानी कवच पहना हुआ है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, यूं तो हमें बोलने की आदत तो है नहीं, चल बसंती आज धनों की इज्जत का सवाल है।

हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं ही, और हमारे श्रोता ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। ठाकुर ये हाथ हमको दे दे, नहीं ये डायलॉग थोड़ा अलग है, ठाकुर हमका ये हाथ दे दे, क्या था सही डायलॉग आप जरा भेजिएगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मरते दम तक साथ चलना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये गीत के साथ बोला आपने लिखा है। पार्टनर अब बोल दिया है तो देख लेंगे, ये मेरा फेवरेट है, कितना बढ़िया डायलॉग है ना। तुम क्या लाए हो धोलिया, ये मुट्ठी भर ज्वार, बाकी क्या अपनी लड़की के बरातियों के लिए रख छोड़ा है। हर श्रोता लिखते हैं कि उन्हें पुष्पा एट ईयर्स मुगे में खुश हुआ बड़ा पसंद है। हमारे एक और श्रोता ने बड़ा अच्छा डायलॉग दिया, मेरा नाम सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है। अरे वो सांभा कितने आदमी थे, हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हमारी इतनी बदलियों के बाद जब हम नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे। ठाकुर साहब गब्बर सिंह क्या कोई बकरी का बच्चा है जो दौड़ा और पकड़ लिया। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है, और आपने लिखा है कैसे हो सुरमा भोपाली। ये डायलॉग भी बड़ा अच्छा है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये सही डायलॉग है, और ये डायलॉग हम कई बार याद भी करते हैं। हमारे एक श्रोता ने बसंतीन के सामने नहीं नाचना ये भी लिखा है, इतनी खामोशी क्यों है भाई, ये डायलॉग भी यहाँ पर आया है। और इसके साथ ही बहुत सारे डायलॉग्स के साथ में हमारे श्रोता ने लिखा है, कितना इनाम रखे हैं सरकार ने, ये बात भी कितने आदमी थे, ये सारे डायलॉग आपके रिपीट हो रहे हैं, कई सारे लोगों ने भेजे हैं, और इसके साथ बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग हमारे बीच में आ रहे हैं। और इसमें हमारे श्रोता ने लिखा है, जानते हो संसार का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। ये बड़ा बड़ा खूबसूरत सा है, और बड़ा दिल को कुछ कलेजे में कुछ करने वाला ये डायलॉग है। शोले फिल्म पुराने जमाने के जेलर मूवी जितनी बार देखी उन्हें अच्छी लगी, हेमा मालिनी का सीन बहुत अच्छा है, जब कहते हैं प्रभु आप बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं क्या कन्या यूके यूके, वो सारी बात जो चलती है उनमें बड़ा मज़ा आता है। तो कालिया कहता है कि दो हैं कहाँ रे फौजी नंबर दो, ये कई सारे डायलॉग जो हैं लोगों को पसंद आते हैं। तो चलिए ऐसे ही सुंदर गीत आप सुनते रहिए, और अगला जो गीत है वो हम आपको सौंप रहे हैं, बस यही करना है कि उस गीत के गायक को पहचान लेना है, और जरा सा पहचानिए कि ये डायलॉग कौन सा हो सकता है, डायलॉग के साथ में आप पहचान लीजिए जल्दी से वो डायलॉग कौन सा होगा और ये फिल्म कौन सी होगी।

इस गीत का एक ही अंतर हम आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि हमें सुनवाने हैं बाकी डायलॉग के गीत भी। और इसके साथ में हमने आपसे पूछा था कि ये गीत जो है वो किस फिल्म से है और बता दीजिए जल्दी से, तो आपने हमें बता दिया कि दामिनी फिल्म से है और बहुत अच्छे से बताया कि ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है, और उसके साथ तारीख पे तारीख शायद इसी फिल्म का डायलॉग है। बिल्कुल सही। चलिए, ये सारे डायलॉग तो आपने बताया, आपने लिखा कि तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला। माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। बिल्कुल सही। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं और खाली आ कितने आदमी थे ये डायलॉग भी हमारे श्रोता

आंखों में अदाएं भी हैं और एक और बात आ जाती है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये डायलॉग भी इस फिल्म का है जो कि है फिल्म कालिया। तो सुनते हैं ये थोड़ा सा नगमा।

और अब हम चल रहे हैं आज के कार्यक्रम की अंतिम डायलॉग के साथ में, और वो डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा है। अगर आप बताएंगे कि वो डायलॉग कौन सा बचा है तो जरूर बता दीजिएगा। बाकी हम तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि बाबू शाह जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये फिल्म कितनी खूबसूरत थी ना, किस किस ने देखी, कब कब देखी जरूर बताइएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले ही इस फिल्म को देखा है, हर रोज मैं इस फिल्म को देख सकती हूँ, जीने की एक ताकत देती है। सुनते हैं यह खूबसूरत सा नगमा, और आपको जो थोड़े थोड़े गीत सुनवाए हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कभी और किसी और रोज वो जो गीत रह गए हैं उन्हें पूरा सुनाऊंगी।

0: नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

नमस्कार मित्रों, आज की त्रिवेणी आधारित है रंग पर। साथियों, इस संसार में जो कुछ भी भौतिक रूप से उपस्थित है वो स्वाभाविक रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है। हम जिस भी चीज को देख रहे हैं वो उसका अपना रंग नहीं है, हम बस परावर्तित प्रकाश के रंग को देख रहे हैं। हम कहते हैं कि घास हरी है, लेकिन घास हरी नहीं है, ये हरे रंग के प्रकाश को लौटा रही है, परावर्तित कर रही है, इसलिए हमें हरी घास नजर आती है। आकाश नीला है? नहीं, आकाश नीला नहीं है। हमें ये पता है कि अंतरिक्ष तो नीला अंधेरा है, वहाँ नीला जैसा कुछ भी नहीं है। आकाश अगर नीला नजर आता है तो उसकी वजह बिल्कुल अलग है। नीले रंग का अपवर्तन गुण बाकी रंगों से बिल्कुल अलग है, इसी वजह से आकाश नीला है।

संसार में किसी भी चीज में रंग नहीं है। पानी, हवा, अंतरिक्ष, पूरा संसार रंगहीन है। यहाँ तक कि जिन चीजों को भी हम देखते हैं वो सभी रंगहीन है। रंग तो केवल प्रकाश में होता है, रोशनी में होता है। रंग वो नहीं है जो वो दिखता है, बल्कि वो है जो वो त्यागता है। जो भी रंग बिखेरते हैं वही हमारा रंग हो जाता है। हम जो अपने पास रख लेंगे वो हमारा रंग नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जीवन में जो कुछ भी हम देते हैं वही हमारा गुण हो जाता है, हमारा व्यक्तित्व हो जाता है।

जो रंगों से परे है वो रंगहीन नहीं है, वो पारदर्शी है, वैराग्य है, जिसका मतलब है कि हम ना तो कुछ रखते हैं और ना ही कुछ परावर्तित करते हैं, यानी हम पारदर्शी हो गए हैं। अगर हम पारदर्शी हो गए हैं तो हमारे पीछे की कोई चीज अगर लाल है तो हम भी लाल हो जाते हैं, अगर हमारे पीछे मौजूद कोई चीज नीली है तो हम भी नीले हो जाते हैं। हम जहां भी होते हैं उसी का हिस्सा हो जाते हैं, लेकिन किसी भी चीज में फंसते बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम पारदर्शी हैं और वो रंग एक पल के लिए भी हमसे चिपकता नहीं है। हम शांत, संतुष्ट, उत्साही और जिज्ञासु रहते हैं।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने सहायता कर सकता है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
3: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबुधाबी में UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
5: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
4: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात 37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
6: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
1: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जाँच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल XH या AR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत 12 o'clock फिल्म से मोहम्मद रफ़ी गीता दत्त की आवाज़ों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ. आइए सुनते हैं ये संदेश.
1: मिलती हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत.
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा.
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून.
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है.
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना. विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ.
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा.
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी.
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया.
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर. आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी.
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां.
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत.
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी.
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास. भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 सिर्फ विविध भारती पर.
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन. आइए सुनते हैं अगला गीत डिटेक्टिव फिल्म से गीता दत्त हेमंत कुमार की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और मुकुल रॉय के संगीत के साथ.

हम सुन रहे थे ये गीत आखिरी दाव फिल्म से आशा भोसले की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा, जो कि है फिल्म अनाड़ी से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: ये कौन
1: नमस्कार प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने दो दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि देश में कहीं भी कोई आपदा आए या आने के संकेत मिले तब एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
2: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा साहस शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें शीघ्र और समन्वित कार्रवाई के साथ स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वास्तविक सुरक्षा सैन्य बलों की तकनीकी उत्कृष्टता और आत्मनिर्भरता से हासिल होती है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के तहत केंद्रीय जांच टीम ने पूर्वी सिंहभूम के मानगो नगर निगम क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। सुबह NH-33 और बालीगुमा से शुरू हुए इस निरीक्षण में टीम ने कचरा संग्रहण प्रणाली का जायजा लिया और घरों में जाकर लोगों से सीधा फीडबैक लिया। इस दौरान मोबाइल ऐप के जरिए केंद्रीय सर्वर पर ग्राउंड रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज की गई। सरायकेला जिले के कांडरा थाना क्षेत्र स्थित अमलगम कंपनी के मुख्य गेट पर आज विस्थापित कालिंदी परिवारों ने जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और कर्मचारियों का प्रवेश निकास पूरी तरह बाधित कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्ष 2003 में कंपनी स्थापना के लिए उनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी। उस समय प्रभावित परिवारों को स्थायी रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था लेकिन 23 वर्ष बीत जाने के बाद भी सभी कालिंदी परिवारों को नौकरी नहीं मिल सकी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल डीजल की खपत कम करने संबंधी देशवासियों के आह्वान का असर हजारीबाग में भी दिखने लगा है। हजारीबाग नगर निगम के महापौर अरविंद कुमार राणा अब मोटरसाइकिल से कार्यालय आ रहे हैं। मोटरसाइकिल के पीछे अपने बॉडीगार्ड को बिठाकर वे शहर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं।

0: माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि जहां तक हो सके हम लोगों को बचत करनी चाहिए, विशेषकर वैसे संस्थानों पर जो हम आयात करते हैं। मैंने तय किया है कि जहां कहीं संभव हो अपने वहां से चलूं। राष्ट्र रहेगा, हमारा समाज रहेगा, राष्ट्र के लिए हम सबों को राष्ट्र प्रथम मानकर काम करना चाहिए। अगर चीजें इस तरह ही रहे, जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होगा।
1: झारखंड में अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू किए जाने के लिए आज रांची में ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में किया गया। इस मौके पर राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार, विभागीय सचिव, अधिकारी और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। राज्य के अलग अलग हिस्सों में कल देर शाम आई तेज आंधी और बारिश ने काफी नुकसान किया है। इस प्राकृतिक आपदा में पेड़ गिरने से पलामू में एक बुजुर्ग समेत दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल का इलाज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। राजधानी रांची में भी कई जगह पेड़ और बिजली के पोल गिर जाने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने संताल परगना प्रमंडल समेत कई जिलों में कल 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, वज्रपात और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 16 मई को भी रांची समेत 15 जिलों के लिए ऐसी ही चेतावनी जारी रहेगी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को, सभी सखियों को, प्यारे प्यारे जितने साथी बैठे हैं सभी को नमस्कार। और आज मेरे साथ इस मंच पर हैं दीपा, आपको भी दीपा प्यार भरा नमस्कार।
2: चंचल आपको और साथ में हमारी सारी सखियों, सहेलियों और हमारे श्रोता भाइयों को हमारा हेल्दी नमस्कार।
1: तो आपने पिछली बार भी हेल्दी नमस्कार किया, उसकी वजह बताई थी, और आज भी हेल्दी नमस्कार है, ये तो आज भी वजह बताइए
2: भाई। एक बार जब भी आते हैं ना तो अपने श्रोताओं को याद दिला दो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो ना।
1: हाँ,
2: सेहत का ख्याल है या नहीं।
1: इसीलिए भाई दीपा जी जब भी आएंगी ना वो स्वास्थ्य से भरा नमस्कार करेंगी,
2: और आपको ये बताना है कि आपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा है या नहीं।
1: हाँ, तो भाई हमारे कौन से साथी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, हमारी सहेलियां अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही
2: हैं। जी बिल्कुल,
1: वो हमसे साझा कर सकती हैं, लेकिन विषय जिन पर हम बात करेंगे वो हम साझा कर लेते हैं।
2: स्वास्थ्य का ख्याल रखना देखो ना इसलिए भी बहुत जरूरी है, इन दिनों बहुत गर्मी हो रही है, तो ये एक जायज सी बात है कि पसीना आता है, लेकिन कई लोगों के पसीने से दुर्गंध आती है।
1: हाँ,
2: है ना।
1: कुछ लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब हम किसी के पास बैठे हों तो दूर से भी उसे नाक भौं सिकोड़ने की जरूरत ना पड़े, या उसे भी अच्छा महसूस हो, तो अपने आप को साफ सुथरा और स्वच्छ हाइजीन के पर ध्यान रखते हुए वो जो रखते हैं, तो इस बात का सभी ख्याल रखें। और इसमें क्या उपयोगी टिप्स हो सकते हैं, थोड़ी हम मदद करेंगे, थोड़ी हमारे जो सुनने वाले हैं वो उपयोगी टिप्स लगकर बताएंगे।
2: जी बिल्कुल। और फिर मुझे तो देखो आज उसके बाद ना खरीदारी करने भी जाना है प्रोग्राम के बाद।
1: तो क्या खरीदने वाली हो और कैसे खरीदना है तुम्हें ये बताओ।
2: देखो मैं सोच रही हूँ एक बहुत अच्छा सा ना फोन आया, स्मार्टफोन, और किश्तों पर भी मिल रहा है, तो सोचा कि चलो आज जाकर के देखते हैं कितना किश्त है, क्या है, हम भर सकते हैं या नहीं। तो बड़ा मन है कि फोन खरीद लें।
1: देखो
2: फोन वो स्मार्ट वॉच वाला, साधारण नहीं।
1: क्या होता है ना आसानी से वो चीज हमारे हाथ में आ जाती है जब हम किश्तों पर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाई जो चीज 15,000, 20,000, 50,000 तक की भी हो सकती है उसे हम कुछ 2,000, 4,000, 5,000, 8,000 देकर भी उसे अपने हाथ में ले सकते हैं, यानी कि बहुत कम रकम में आसानी से वो चीज आ सकती है। लेकिन हर चीज के कुछ अगर फायदे हैं तो नुकसान भी।
2: बिल्कुल। तो हमारी सखियां कहीं इस तरह से ये फोन लेना या स्मार्ट वॉच लेना या कोई और चीज के लिए किश्तों के उस जो सुंदर से दुनिया है उसमें कितना जा चुकी है, या उनको लगता है कि हाँ कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए,
1: और क्या इसके साथ जुड़े उनके अनुभव भी होंगे कि उन्होंने जब किश्तों पर कोई चीज ली तो उनके साथ में अच्छा क्या हुआ या उसका खामियाजा क्या उन्हें भुगतना पड़ा, तो अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभव वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
2: बिल्कुल। और अनुभव तो बहुत सारे तरीके के होते हैं ना। देखो दोस्ती में भी कितने अनुभव मिलते हैं, कहीं अच्छे दोस्त मिलते हैं, कहीं ऐसी दोस्ती होती है जो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, कहीं बहुत लंबी दोस्ती होती है, और जो बचपन की दोस्ती भी रहती है जहां पर हम KG1 KG2 के जब पढ़ते थे बिल्कुल छोटे, और आज तक दोस्ती, तो क्या ऐसी वाली दोस्ती भी आपके साथ है, या कहीं कुछ ऐसा आपका अनुभव रहा है कि कोई बहुत प्यारा दोस्त है और अभी उससे कहीं दूरी बन गई है, तो कुछ अगर आप बता सके तो कारण बताइएगा, तो कहीं हम शायद आपकी मदद कर सके दिल को हल्का करने में या अपने उस दोस्त के पास जाने में।
1: एक और दोस्त, यानी कि रेडियो को भी कई लोग अपना दोस्त बना लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं, तो वो लोग दोस्त बनाते हैं, कोई मोबाइल को अपना दोस्त बना लेता है, कोई किताबों को अपना दोस्त बना लेता है, कोई रेडियो को अपना दोस्त बना लेता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चित्रकारी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, बस अपने शौक में वो इस तरह डूब जाते हैं। मान लीजिए आपको अगर रंगों से प्यार है, चित्रों से प्यार है, तो चित्रकारी जैसे अगर और भी कला आपके भीतर है, चाहे वो गायन की हो, किसी वादन की हो, तो रंगों की जब मैंने बात की तो मुझे याद है कि आज जिस पद्मश्री महिला की हम बात कर रहे हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं, वो रंगों की दुनिया से ही तो जुड़ी हैं।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने। और उनका सफर अगर हम उनके बारे में जानेंगे ना, जानना है या हमें क्या करना है, बहुत कुछ जानकारी तो है।
1: जानकारी बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई दोस्त जब हम रेडियो को बनाते हैं, गीत संगीत को बनाते हैं, तो पहले गाना सुनवाना बनता है।
2: अरे ये तो नियम भूल ही गई थी।

0: बहुत सुंदर गीत था, और जिस तरह से इस गीत में खनक थी ना, वैसी ही कुछ खनक रंगों में होती है, और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं जो चित्रकार हैं, जो अपने रंगों का जादू ना जब वो चलाती है ना, रंगों की अपनी कलम, तो वो नजर आता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और भूरी बाई, ये उनका सफर हमें यही बताता है चंचल, कि कला छुपाए नहीं छुपती है, वो दुनिया तक एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हमारी सखी खास तौर पर, वो क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कला अगर आपके अंदर है तो उसे कहीं भी रोकिएगा नहीं, कभी दबाइएगा नहीं।
0: और ये जो अवसर है जब स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टियां होती हैं, यही मौका उन्हें मिलता है कि उनके अंदर कोई कला है तो उसे आप उभारें, और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस में एक्टिविटी के लिए भी आप भेज सकती हैं, ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा इन चीजों से।
1: और बच्चों के साथ खुद भी क्यों नहीं, अगर आपको अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा वक्त है, और अगर आपको मान लीजिए कि 40 पार या 45 की उम्र के पार आपको लगता है कि मैं कोई डांस क्लासिक हूँ, लेकिन मन में एक पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहाँ, तो ये ख्याल आने भी मत दीजिएगा। जरूर अपने पास की किसी कोई क्लास कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा हो तो जाकर एक बार देखिएगा जरूर कि आप कर पा रहे हो या नहीं।
0: और 40-50 के पार तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा समय होता है, उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारियों से काफी हद तक मुक्त हो चुके होते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर अपने नौकरी के लिए या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं, या कहीं और किसी अन्य शहर में चले गए हैं, या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी ब्याह करके या नौकरी करके सेटल हो चुके होते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: तो आपको जब अपने लिए समय निकालने का अब वक्त आया है तो बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने उस शौक को पूरी तरह से जी लीजिए।
1: बिल्कुल।
0: तो आज हम बात कर रहे हैं चित्रकार भूरी बाई के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटा सा गाँव है पिटौल, वहां पर इनका जन्म हुआ 1968 में। और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते थे और मेहनत मजदूरी का काम वो किया करते थे, पढ़ाई लिखाई भी उनकी हो नहीं पाई ज्यादा, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो उनकी रही वो इस तरह की थी कि उन्हें पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब छोटी सी थी वो तो चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें, और मिट्टी और गेरू, जो आमतौर पर हम देखते हैं कि घरों में गेरू से कुछ रंगोलियां अल्पना बनाई जाती है, तो उन्हीं से बस उन्हें भी खेलने का शौक लगा। और खेलते खेलते रंगों से कभी हाथी कभी घोड़ा और कभी पेड़ों के जंगलों से जो चीजें मिल जाती थी उन्हें लाकर वो चित्रकारी का अपना शौक है उसे पूरा किया करती थी।
1: जी, अब क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी तो पड़ोस के ही गाँव में उनका ब्याह हो गया। पति पत्नी दोनों आस पास के गाँव शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन चला ही रहे थे बस इसी तरीके से। और भूरी बाई भील आदिवासी समुदाय की भित्ति चित्र परंपरा में बहुत प्रसिद्ध।

0: चित भी थी और घर की कच्ची दीवारों पर गेरू से या कभी कोई दूसरे प्राकृतिक रंग से चित्रकारी वो करती थी। और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा रहा कि राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982-83 की बात थी, भोपाल में भारत भवन का निर्माण चल रहा था चंचल, तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहाँ के निर्माण में मदद लिया जा रहा था उस वक्त। तो भूरीबाई के पति को भारत भवन में बगीचे की देखभाल का काम मिल गया तो उनके साथ वो भी भोपाल चली आई।
1: और बिल्कुल, क्योंकि उस कच्ची मिट्टी से गेरू से खेलने का शौक तो उनको था ही, इन प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था, तो बस जब उनके पिता आए तो वो भी चली आई। और उनके पिता जो कि बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे
0: जी, उनके पति चले आए, हाँ, पति के साथ,
1: पति के साथ वो चली आई और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना वहां शुरू किया। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन, उनसे हो गई। और उनकी जो संस्कृति थी, वहां के जो देवी देवता थे, उनको समझने के लिए भूरीबाई और उनके पति से उन्होंने बात की। इसी दौरान उन्हें यह भी पता लगा कि देवी देवताओं के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरीबाई से देवी देवताओं के चित्र कागज पर बनाने को कहा, यानी कि दीवारों पर तो बनते ही थे लेकिन ये चित्र उन्होंने कागज पर किस तरह उकेरे जाएंगे ये उनको कहा।
0: ये उनको कहा, तो वे तो उंगलियों से बनाती थी, अब उन्हें कैनवास पर बनाने के लिए जब कहा तो बड़ी समस्या उनके सामने आन पड़ी कि जीवन में कभी कलम को तो हाथ ही नहीं लगाया। घर पर उन्होंने लेकिन क्या था, थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर पहुंची अपने कला गुरु के जे स्वामीनाथन के पास। भूरीबाई ने 5 दिनों में यह काम करके दिखाया जिसके लिए उन्हें उस वक्त 50 रुपए मिले। यहां जी
1: भाई, उस समय की जब आप बात कर रही हैं तो 50 रुपए मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी। और यहीं से जो उनकी कला की यात्रा है ये भी शुरू हो गई और ये ऐसी शुरू हुई कि फिर आगे चलकर विश्व स्तर तक पहुंची है। और भूरीबाई भी अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें चित्रों में जो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है, जंगल है, पशु पक्षी है और त्योहार, ये उनके मुख्य विषय थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती थी। और इन चित्रों को छोटे आयताकार वो बनाया करती थी जिनमें उंगलियों से बिंदी बिंदी लगाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बना दिया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का जो एक अंदाज होता है तो वो उनका अंदाज था।
0: भूरीबाई कहती है कि उनको कला का पहला सम्मान 1986 में मिला और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर के एग्जीबिशन लगाइए।
1: बिल्कुल, हम अगर देखें कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह के परिवार से वो आती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने को स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास में, लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के जरिए, तो अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें तो वो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिलवा सकता है।
0: बिल्कुल, वे कहती हैं कि अपने समुदाय में वो पहली महिला है जिन्होंने कागज और कैनवास का इस्तेमाल किया है और पेंटिंग करने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है। एक मजदूर से लेकर विश्व स्तर तक अपने समुदाय के पेंटिंग को पहचान दिलाने वाली वे पहली महिला बनी जिसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
1: और भूरीबाई का ये मानना है कि आप चाहे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी भी महिला को अपने क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए। और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं अपनी सभी सखियों को और अपने सभी साथियों को कि आप उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र को किसी भी चीज में आड़े मत आने दीजिए, आप आगे बढ़िए, अपने शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। और अभी गाना सुन लें।
0: चलिए।

0: पानी पता कैसा होता है कि जिस रंग में मिल जाए वैसा ही बन जाता है.
1: बिल्कुल.
0: और दोस्ती भी ऐसी थी, अगर आपको दोस्त कोई बहुत अच्छा मिल जाए ना, आपके रंग में वो रंग जाए, तो बस ऐसा अगर दोस्त एक भी आपके पास है ना, तो वो 100,000 दोस्त के बराबर है.
1: बिल्कुल सही कहा. और

0: रखिए। यही एक संदेश हमारी एक सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांतरण हुआ होगा। हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं, सोचो अगर सखी सहेली न होती तो हमारी दोपहर कितनी सुनी होती। भाई सखी सहेली के रहते आपकी दोपहर कभी सुनी नहीं होगी।
1: और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए होते हैं, जिनमें से अधिकतर या तो हम कहें सभी रिश्ते जन्म से संबंधित होते हैं। और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, इन्हें बदल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो होता है दोस्ती का। और ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद चुनते हैं और खुद इस रिश्ते से जुड़ते हैं।
0: बिल्कुल सही।
1: और जीवन के हर कदम पर अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, कुछ से अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं। और मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है, वही सच्चा दोस्त होता है।
0: लेकिन चंचल, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोस्ती नाम का कोई रिश्ता नहीं होता। सोशल नेटवर्किंग के जमाने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है। तो क्या हो ऐसा है कि उन लोगों को दोस्ती करने का सही तरीका मालूम नहीं है?
1: ऐसा तो नहीं हो सकता।
0: समय के साथ साथ दोस्ती के मायने भी बदल रहे हैं। आज जहां ज्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वहीं पुराने समय में दोस्ती का संबंध सिर्फ पहले कैसा होता था, बिल्कुल दिल से दोस्ती हुआ करती थी,
1: दिल से जुड़ जाते थे।
0: अब जो थोड़ा सा एक मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की चकाचौंध कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए।
1: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना सा लगता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न और गम को हल्का बनाते हैं। वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं। एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है। दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं। खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना जिंदगी बेरंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करे और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ, अहम, इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं होती।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक हमारे सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण, सुदामा और कर्ण दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्त एक दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं। और दोस्ती यही मांगती भी है, अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा, लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो, हिचकते नहीं है, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे, जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं।
1: तो चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं। अच्छा सा
0: चलिए,
2: बाकी रह गए दोस्ती यारी रद्द हो गई, प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है, छीछी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान जब दोस्ती होती है तो।

उंगली से उंगली का जब तक जोड़ सलामत, साथ सलामत, छोटी और बड़ी है तो क्या, पांचों है तो हाथ सलामत, एक एक के है पांच मुकद्दर, तकलीफों से घबराना मत, साझे जोड़ जवानी बचपन पांच से पांच।

बिल्कुल सही बात है कि दोस्ती में सिर्फ दोस्ती ही होती है, कोई एहसान नहीं होता। लेकिन इस वक्त समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे
1: दोस्ती की।
0: देखो दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ना
1: और हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं
0: जी।
1: तभी तो ये लिख रही हैं कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं। हर रोज एक घंटा हमें मिलता है, सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब। सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है, जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहाँ बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयां जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो जहां इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहां कोई बंधन नहीं होते।
1: सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया हमारे ये तो श्रोता भाई हैं, ये कहते हैं जैसे मेरी जिंदगी में विविध भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सूना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपनी हमें हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, मुस्कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं सच कहूं तो जैसे दोस्ती बिना जग सूना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
0: और भी बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है, तो आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो अगला संदेश पढ़ते हैं। इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में डारस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरा सूनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथी रहा है। एक समय था एक बार के लिए खाना भूल जाते थे पर सखी सहेली सुनना नहीं भूल पाते थे, पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं। तो भाई हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखियों और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब हैं। आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
0: बिल्कुल। अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
1: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सूना है।
0: हाँ। तो भाई चलिए सूनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहाँ हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते हैं।
1: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
0: तो अब दोस्ती की बातें बहुत हुई, क्यों ना एक दोस्ती से भरा गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: हम भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सृजन भारती के इस अगले अंक में आप जरूर हिस्सा बनिए इसका। और अब हम बात करते हैं हमारे अगले विषय पर, जिस पर हमने बताया था कि भाई किश्तों में अगर आपको कोई सामान लेना है तो वो कितना सही है या कितना गलत है, क्योंकि किश्तों पर खरीदारी करना इनकी कितना आसान ईएमआईज पर किसी चीज को ले लेना जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये दो धारी तलवार की तरह होता है ना दीपा?
2: बिल्कुल सही कहा। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया गया तो ठीक, ना किया जाए तो ये कर्ज के जाल में भी आपको फंसा सकता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा कि ये दो धारी तलवार है, अगर आसान है तो आपके लिए मुश्किल का सबब भी बन सकता है। और इस पर इतनी सारी बातें संदेश के रूप में हमें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। तो इनका कहना है कि किश्तों पर खरीदारी कितनी सही है। भाई आजकल ईएमआई और यूपीआई का जमाना है और समूची दुनिया ही नहीं ये बल्कि हर कोई इसी तरह से खरीदारी करने में चाहता है, लेकिन कहीं से कोई भी एक भी गलत क्लिक हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाया करते हैं। इसीलिए इसके उपयोग के पक्ष में हम इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि इससे पहले ऋण लेकर घी पीने की आदत बन जाती है और हम लोग उसके अधीन होकर अपने चैन सुकून को खोते रहते हैं और तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, फलस्वरूप तनाव अलग से झेलते हैं। तो ये बात सही है, जब महीने का वो समय आता है किश्त चुकाने का तो वो एक तलवार की तरह आपके सर पर वो लटका रहता है कि किश्त देनी है, किश्त देनी है, और उस चक्कर में कई बार आपका सुख चैन नींद खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। इसीलिए कोई बहुत बड़ी चीज इसके लिए आपको बड़ी किश्त चुकानी पड़ रही है और आपको लगता है कि आपकी आमदनी से बाहर वो चीजें फिर जा रही हैं।
2: लेकिन चंचल ये बताओ, देखो महंगी वस्तुएं हैं जैसे कि घर हो गया, कार है या महंगे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, अगर उनको लेना हो तो एक साथ थोड़ी ले सकते हैं, कितना आसान हो जाता है किश्तों में चीजों को लेना।
1: लेकिन आपको अपनी आमदनी को देखते हुए अपनी किश्त बनानी होगी ना। आपने कहा घर लेना है तो घर इतनी बड़ी कहते हैं कि रकम वाली चीज होती है जिसे एक मुश्त लेना बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं है। तो आप ये देखिए कि आप जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ा बंगला बहुत बड़ा घर लेना है, अपनी जरूरत के मुताबिक आप कितने सदस्य हैं घर में या आपकी आमदनी कितनी है इसको देखते समझते हुए आप अपने बजट में घर लीजिए और फिर जो किश्त बनानी है वो भी इतनी ही बनाइए। मान लीजिए अगर आप अभी आप एक किराए के घर में रहते हैं तो जितना किराया अभी आप दे रहे हैं उतना देने की क्योंकि आपको बरसों से आदत है तो उतनी किश्त आप आसानी से निकाल कर दे पाएंगे, लेकिन उससे दुगना रकम अगर आपके पास में आ गया देने के लिए तो कहीं ना कहीं वो मुश्किल का सबब बन जाएगा।
2: ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर कोई जरूरी चीज है जैसे आजकल लैपटॉप है या ये कहें कि फ्रिज, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, तो इनको लेना कितना आसान हो जाता है। हम एक साथ नगद नहीं भी हो हमारे पास, अगर जैसे इन दिनों बहुत गर्मी चल रही है अब हमें लगता है कि नहीं भाई फ्रिज हो जाए एक छोटा ही ले लें, नगद नहीं है तो किश्त में तो हम ले ही पाते हैं ना।
1: मैंने फिर वही कहूंगी कि किश्त अगर आपको

0: लेनी है तो बहुत सारी किश्तें जब आपके समय समय पर जाती है ना, तो आप या तो उन्हें कहीं लिख कर रखें, अगर आप भूल जाते हैं उन किश्तों के बारे में लिखना. अब मान लीजिए हर हफ्ते आपकी कोई ना कोई किश्त भरने का समय है, आपने कार भी ले रखी है, आपने बड़ा टीवी भी लिया, लैपटॉप भी लिया और मोबाइल भी ले लिया कोई अच्छा महंगा वाला, तो किश्त अगर आप भूल गए तो जो वसूली के लिए जब उनका जो रवैया होता है वसूली करने वाली कंपनियों का, वो आपके साथ बहुत सख्त हो सकता है और फिर आपको ही बुरा लगेगा कि अरे ये चीज़ हमारी वापस से मांगी जा रही है, या इसके पीछे जो हमें जो भुगतान करना पड़ता है, जुर्माना भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है. उन चीजों से अगर बचना है तो या तो समय पर किश्त देनी है, उतनी आमदनी आपको रखनी, या तो फिर किश्तों से ही बचना है.
1: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, लगता क्या है, अरे सिर्फ 2000 या 3000 की किश्त है, तो वो हम वो जो सिर्फ जो 2000 या 3000 दिख रहा है ना महीने का, सिर्फ उतना ही दिखता है. इसके पीछे जुड़ने वाला ब्याज या कहीं कोई ऐसी छिपे हुए कोई शुल्क हो जाते हैं ना, जैसे 0% के नाम पर अब कई बार हो जाते हैं कि फाइल चार्ज हो जाता है, प्रोसेसिंग फीस बाद में लग जाती है, या इंश्योरेंस के नाम पर भी कई बार वो कुछ एक अमाउंट, कुछ अतिरिक्त पैसा उसमें और जोड़ दिया जाता है. बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं भाई, ये 2 या 3 हजार के नहीं, ये तो जुड़ जुड़ के 4 या 5 हजार तक पे चली
0: और वो जो 20 हजार की चीज आपको खरीदनी थी, वो आपको 20 की जगह हो सकता है कि 30 हजार या 35 हजार तक की वो पड़ जाए.
1: बिल्कुल.
0: तो इसीलिए आप किश्तों में खरीदने का जो एक कहते ना कि वो लुभावना, जो एक प्रलोभन होता है, उससे बचने का प्रयास कीजिए. और इसके बारे में हमारे साथी लिखते हैं कि किश्तों में खरीदारी अच्छी है, चूंकि आपने आपके पास ज्यादा रकम चुकाने की स्थिति नहीं है, तो अक्सर लोग अब किश्तों में खरीदने को अच्छा महसूस करते हैं. हालांकि ये नकद खरीदने से महंगा पड़ता है, लेकिन इस चलन के लिए सबके पास फ्लैट, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं. मासिक भुगतान का ये आइडिया ज्यादा लोगों को पसंद आता है. हाँ, आप हर महीने ईएमआई दे सकते हैं तो वही चीजें आप खरीदें, क्योंकि 2 या 3 किश्तों की लेट लतीफी फिर ब्याज बढ़ने की महंगी पड़ जाती है और लोग अन्य कामों में उलझ जाते हैं. किश्त बाकी होने पर कंपनी वाले आते हैं और गाड़ी उठाकर ले जाते हैं और पैसा भी डूब जाता है.
1: बिल्कुल, ये सही कहा. देखिए, इन्होंने तो हमें बताया कि किश्तों के फायदे क्या है, नुकसान भी क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी वो कहते हैं भाई किश्तों से खरीदारी के कई नुकसान है. जैसे वो कहते हैं कि फिजूल खर्च को बढ़ावा मिल जाएगा, छिपे हुए शुल्क जैसे अभी हमने बात करी वो भी हो सकती है, जीएसटी कहां लग सकता है हमें पता ही नहीं चलता, फिर भविष्य की जो एक आय है उस पर भी बोझ आता है, यानी कि हर महीने की कमाई का एक हिस्सा पहले से ही आप ब्लॉक कर देते क्योंकि हमें पता है ना कि ये इतनी किश्त तो हमें जानी ही है. फिर कर्ज का जो एक जाल है, एक साथ कई सारे ईएमआई चालू हो जाएंगे, फिर देखिए आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, डिफॉल्ट का भी खतरा हो जाता है कई बार कि किश्त बाउंस होने पर भारी पेनल्टी लगती है चंचल, और फिर क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है.
0: इसी तरह से हमारे एक साथी ने लिखा है कि किश्तों पर खरीदारी करना सही है जब आपको बहुत ज्यादा वैसा लगता है कि सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी आदतें बिगड़ जाएंगी और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खर्च कर रहे हैं. इसलिए किश्तों पर खरीदारी तभी करें जब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करनी हो, या कभी कभार ही आप ऐसा करें तो इससे आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी. और मेरे हिसाब से तो ये खरीदारी ना ही करें तो अच्छा है, ऐसा हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संदेश लिखा है उनका कहना है.
1: अच्छा, एक हमारे साथी ने कहा है कि 10% का नियम आपको, अगर आप ईएमआई के पक्ष में है तो 10% का नियम अपनाना चाहिए. वो क्या है कि आप सभी ईएमआई का कुल योग आपकी मासिक इनकम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए. मतलब जितना आपका है इनकम आपकी, उसका 10% ही सिर्फ ईएमआई में जाना चाहिए. सामान सस्ता लगने के कारण कई बार क्या होता है कि हम गैर जरूरी चीजें भी खरीद लेते हैं, तो इस नियम को अगर आप पालन करते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो शायद हम बेफिजूल की चीजों से खरीदने से बच सकते हैं.
0: बहुत सही बात कही, लेकिन हम गाना सुनने से बिल्कुल नहीं बचेंगे. सुनवा दें?
1: बिल्कुल सुनवाइए.

0: देखो भाई, ये जो गाने हैं ना, ये कई बार मन को बड़ी शीतलता देते हैं, लेकिन वातावरण में जब हम बाहर निकलते हैं देखते हैं गर्मी बहुत है.
1: सही
0: और
1: बात है,
0: ऐसी गर्मी जो है ना, इसमें पसीने छूट जाते हैं.
1: बात तो बिल्कुल सही कही कि अब कभी कभी ऐसा होता है हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है भाई कब अपने स्टॉप पर आएंगे और वहां उतरेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा दुर्गंध आने लगती है कि सामने वाला भी शर्मिंदा तो हो रहा होता है लेकिन
0: जी
1: बाकी सब लोगों के लिए उतनी देर बैठना एक दुभर और कठिन काम हो जाता है.
0: बिल्कुल दीपा. और शरीर से निकलने वाली जो तीखी गंध है, ये शरीर की गंध है. आम भाषा में लोग पसीने की बदबू के रूप में इसे जानते हैं. और बहुत से लोग शरीर की दुर्गंध की समस्या से प्रभावित भी होते हैं. और लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि शरीर से बदबू या दुर्गंध पसीना उत्पन्न होने के कारण होती है. हालांकि इस बात में आधी सच्चाई तो है. और हमारे शरीर से बदबू आने का जो कारण है, शरीर की गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया है ना, उनकी मौजूदगी होती है.
1: बिल्कुल, और हमारे शरीर की त्वचा में रहने वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो पसीने में जो प्रोटीन और फैट होता है ना उसे खाते हैं. शरीर के बाल वाले और नम हिस्से में लाखों जीव और बैक्टीरिया होते हैं जो पसीने के यौगिकों के बदबूदार को योगी उनको यौगिकों को बदबूदार गंध में बदल देते हैं.
0: जी
1: शरीर से दुर्गंध कई कारणों से भी आ सकती है, जैसे खराब खान पान, बढ़ती उम्र, अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं और खराब साफ सफाई, ये भी सब शामिल है. और शरीर की दुर्गंध के आसान उपाय और आसान घरेलू नुस्खों से हम इसे दूर भी कर सकते हैं.
0: तो उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि जो सल्फर युक्त भोजन होता है वो आप थोड़ा सा कम करिए, क्योंकि उससे भी पसीने में दुर्गंध आती है. जैसे प्याज लहसुन ज्यादा सेवन अगर आप करते हैं, या मांसाहार का सेवन अगर ज्यादा करते हैं, तो उससे भी पसीने में दुर्गंध उत्पन्न होती है. इसके अलावा आप ये हो सकता है कि शरीर को हमेशा स्वच्छ रखिए. गर्मियों में नियमित रूप से 2 बार स्नान करिए. त्वचा पर पसीने को ज्यादा जमा ना होने दीजिए. और सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पहने. शरीर के जो

0: ठंडा रहता है।
1: इसके अलावा अगर हम आसान घरेलू उपायों की बात करें तो सफेद सिरका है, या टमाटर को मैश करके उसका रस निकाल लें। सफेद जिस सिरके के रस को आपको अपने जहां जो प्रभावी हिस्सा है, जहां दुर्गंध ज्यादा आती है पसीने में, वहां रगड़कर धो लेना है, टमाटर है। इसी तरह से फिटकरी का जो पानी है वो भी पसीने की दुर्गंध को दूर करता है। नीम के पत्ते हैं, उनसे आप स्नान कर सकते हैं, नीम के पत्तों को उबालकर। नींबू का रस निचोड़कर इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर शलजम के जो टुकड़े हैं उनको कुचलकर उसके रस से भी दुर्गंध को दूर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि टी ट्री ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पानी में कुछ बूंदे डाल के नहाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है। साथ में उन्होंने कहा है नींबू का रस भी आप नहाने के पानी में थोड़ा सा रस मिला दीजिए, और नींबू को आप रगड़ भी सकते हैं शरीर पे, आप अंडर आर्म्स में, ताकि जो जितने भी एसिडिक बैक्टीरिया मौजूद हैं वो सब खत्म हो जाएंगे।
1: नींबू को इस्तेमाल करने के बाद उसका बचा हुआ छिलका है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और अब चलते चलते एक गाना सुन लें।
0: चलिए।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें शीघ्र और समन्वित कार्रवाई के साथ स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। सरायकेला जिले के कांडरा थाना क्षेत्र स्थित अमलगम कंपनी के मुख्य गेट पर आज विस्थापित परिवारों ने जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और कर्मचारियों का प्रवेश निकास पूरी तरह बाधित कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्ष 2003 में कंपनी स्थापना के लिए उनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अब तक प्रभावित परिवारों को स्थायी रोजगार नहीं दिया गया है। झारखंड में अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू किए जाने के लिए आज रांची में ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में किया गया। इस मौके पर राज्य के नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार, विभागीय सचिव अधिकारी और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। भारत सरकार के जनगणना 2027 को सफल बनाने को लेकर आज जामताड़ा जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पहल पर पटोदिया धर्मशाला में पोर्टल के माध्यम से स्वगणना शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने स्वगणना कार्य सहज ढंग से संपन्न किया। चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की हो रही परेशानी को देखते हुए चैंबर के सदस्यों ने स्वगणना कार्य में लोगों का सहयोग किया। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने आज रांची के हरमो स्थित नव निर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। सामुदायिक भवन का निर्माण सांसद निधि से कराया गया है। उद्घाटन के बाद सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि यह भवन खास तौर पर आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मैं मूल रूप से कविता का विद्यार्थी हूँ।
2: अच्छा, कैसी कविताएं लिखते हैं आप?
1: छंद में तो मैंने बहुत कम लिखा, लेकिन हम मुक्त छंद की कविताएं लिखते हैं। हम मानवतावादी कविताएं हैं जो मुक्त छंद की हैं, हम मुक्त लिखते हैं।
2: अच्छा, तो 4 लाइनें आप क्या हमारे श्रोताओं के लिए यहाँ पर सुना सकते हैं?
1: जी जी, जरूर सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है 2 मिनट का मौन। आओ मित्र 2 मिनट का मौन रखें। आओ मित्र 2 मिनट का मौन रखें। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला। वो देखो कुएं के ठीक बगल से रखा गमला, प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा। प्यास से दम तोड़ चुका है कल उसका नौजवान पौधा। आओ मित्र 2 मिनट का मौन रखें।
2: क्या बात है, क्या बात है भाई आपकी, तो इस कविता ने निशब्द कर दिया। तारीफ में क्या बोलूं मैं। और बहुत खूब, आपकी कलम यूं ही चलती रहे और दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करें। प्रेम जी, तो बताएं आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत आपकी पसंद का सुनवा दिया जाए?
1: एक बहुत फिलोसफी का गीत है, तीसरी कसम का, और बहुत भोले भाले राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश ने गाया, शैलेन ने लिखा। सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, आप इजाजत दे तो मैं गुनगुनाऊं।
2: चलिए गुनगुना दीजिए जरा।
1: सजन से झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है

0: हेलो फरमाइश
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, अपना नाम तो बताएं।
1: जी मैं तकिया मड़िया हूँ, जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मैम मैं जमील अहमद शाह बोल रहा हूँ।
0: जमील भाई नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार मैम, नमस्कार। और मैम क्या हाल चाल है?
0: बस सब मेहरबानी है ऊपर वाले की, और आप सभी की शुभकामनाएं हैं, वो विविध भारती परिवार के साथ तो हमेशा है ही, तो हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं।
1: बहुत आज खुशकिस्मती है मेरी कि आज मुझसे शिफाली कपूर जी से मेरी बात हो रही है।
0: जमील भाई खुशकिस्मती तो हमारी है जो आप सभी श्रोताओं से बात करने का मौका मिला हमें। जी
1: 2019 में मेरा कॉल लगा था, अब जाके मेरा कॉल लगा है मैम।
0: अरे वाह, बड़ा लंबा अरसा हो गया। अच्छा ये बताएं जमील भाई कि इतना लंबा अरसा 2019 से आज है 2026, तो इतना जो दरमियान जो वक्त रहा, तो उसमें आपने ट्राई किया होगा फोन बीच में, अभी जब शुरू हुआ है ये हेलो फरमाइश, तो निराश तो नहीं हुए ना?
1: निराशा हुआ है मैम, बहुत अच्छा। दिल से मैं ट्राई कर रहा था, आज जाके कामयाबी मिली है तो बहुत खुशी मिल रही है मैम।
0: आपकी खुशी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद को आपकी जगह रखकर महसूस कर सकती हूँ भाई कि कितनी खुशी होती है। तो बताएं जरा जौनपुर के हालचाल बताएं, अपने हालचाल बताएं।
1: जी जौनपुर का हाल तो मैम बहुत गर्मी पड़ने लगी है मैम, और लगभग इस वक्त

0: 35 डिग्री हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर है मैम।
1: मुंबई भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर भी।
0: जी जी, और गाने पे आ जाते हैं मैम।
1: आ जाइए गाने पे, बिल्कुल अपनी पसंद बताएं।
0: फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी और आवाज मोहम्मद रफी साहब की, और इसको मैम थोड़ा सा गुनगुना देना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल गुनगुनाइए।
0: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ओ ये जो चिलमन है दुश्मन।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, नमस्ते। विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश में किसने फोन किया, कहाँ से फोन किया?
1: जी नमस्कार मैम, मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से फोन किया है। मैं विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: विश्वजीत जी, अपने बारे में तो कुछ बताइए।
1: मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए रेडियो कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है विश्वजीत जी?
1: हेलो फरमाइश, छाया गीत और बहुत ही प्रोग्राम आपका है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप ये बताइए कि आप मोबाइल ऐप पे सुनते हैं या ट्रांजिस्टर रखा हुआ है आपने?
1: नहीं नहीं, ट्रांजिस्टर रखा हुआ है तो ट्रांजिस्टर में बहुत अच्छा से सुन लेता हूँ, आवाज का बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा।

0: ये बताएं कि आप करते क्या हैं?
1: मैं ब्लाइंड आदमी हूँ, खेती बाड़ी में काम करता हूँ। मेरा घर के आसपास से थोड़ा सा खेती बाड़ी में काम कर लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: मेरा माँ है, पापा है, तो उसके साथ जाता हूँ खेत में, तो थोड़ा सा देखभाल करती है, तो इसीलिए थोड़ा सा खेती बाड़ी में कुछ कुछ काम मैंने कर लेता हूँ।
0: और गीत संगीत से लगाव है आपका?
1: हाँ, तो गीत तो जब भी कार्यक्रम सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हमारा इधर मौसम बहुत बारिश हो रही है, ज्यादा तो गर्मी थी तो इसीलिए बारिश हुआ है, तो बहुत अच्छा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो हमारा इधर एक मंदिर है, विख्यात तो मंदिर है, माँ त्रिपुरेश्वरी मंदिर।
0: अच्छा।
1: तो ये से बहुत ही लोग आती है वो घूमने के लिए, बाहर से डिगी है और डिगी का आसपास बहुत ही सुनसान है, बहुत अच्छा लगती है वो डिगी के बारे में।
0: तो वहाँ पर आने का कोई खास मौसम होता है या किसी खास महीने में आया जाता है घूमने के लिए, या बारह महीने में किसी भी समय आ सकते हैं?
1: किसी भी समय में आदमियों को दिक्कत नहीं है, तो हमारा इधर तो हर मौसम में बहुत अच्छा है।
0: अच्छा, ये बताएं कि आज आपने हैरो फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया है, तो कोई गाना भी तो चुना होगा अपनी पसंद का?
1: जी जी, मेरे को गाना सुना दीजिए, साजन चले ससुराल मूवी से, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके वादा निभाना चाहती है। हमारे इधर बांग्ला चलते है, बंगाली भाषा
0: जी,
1: तो बंगाली रहती है, तो कार्यक्रम हिंदी में होती है तो बहुत अच्छा, लोग जानती है, हिंदी भाषा सीख जाती है
0: जी,
1: तो बहुत अच्छा लगती है आपका कार्यक्रम।
0: और विश्वजीत जी, आपने जितने मेहनत से हिंदी बोली है बहुत अच्छा लगा। और आपने जो ये बात कही कि आप विविध भारती सुनते हैं, हिंदी में कार्यक्रम आते हैं, उसके माध्यम से आप हिंदी सीख लेते हैं, तो ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। और पूरी करते हैं आपकी पसंद, सुनिए ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: जी बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, आप बताएं कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं
1: जी? मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूं। बहन जी
0: बताएं जरा अपने बारे में।
1: एकदम अच्छे हैं और हम खेती करते हैं और साथ में फूलों वाला काम डेकोरेशन का।
0: अच्छा, और वैसे खेत में आजकल क्या लगा हुआ है?
1: इस समय खेत में कुछ नहीं है, खेत तो खाली है। इस समय बस जुताई हो चुकी है, अब बारिश हो जाए और उसके बाद फिर मूंगफली की बुवाई होगी।
0: अरे वाह, अभी तो चटक गर्मी होगी।
1: जी जी,
0: तो खेत वेत में जाते हैं अभी कि नहीं जाते हैं?
1: जी जाते हैं, अभी क्या है ना, कुछ कटहल के और आम के पेड़ लगे हुए हैं।
0: अच्छा,
1: तो जाते रहते हैं, उसमें फल भी लगे हुए हैं।
0: कौन से फल लगाए हैं?
1: अभी आम है और कटहल है।
0: आम कौन सा है, आम की कौन सी जाति?
1: दशहरी है, दशहरी।
0: क्या बात है भाई, अपने उत्तर प्रदेश की तरफ का जो दशहरी होता है उसका तो स्वाद ही अलग होता है।
1: बिल्कुल, सबसे नंबर एक का स्वाद होता है उसके।
0: और बताएं आपके जो शहर है वहाँ के क्या हालचाल है और क्या चीज प्रसिद्ध है? अगर हम आते हैं महोबा तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा?
1: हमारे यहाँ तो देखने के लिए जैसे काफी मंदिर भी है, जैसे झांसी हमारे पास में झांसी रानी लक्ष्मीबाई का किला है और महोबा भी किला बने हुए हैं राजाओं के, और हमारे बुंदेलखंड में जो चरखारी है वहाँ पे कई तालाब है और एक दूसरे से सभी तालाब ज्वाइंट है।
0: अच्छा,
1: वो भी बहुत जी देखने लायक है।
0: क्या बात है, तो यानी हमें एक बार महोबा आना ही पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल आना पड़ेगा आपको।
0: हाँ, लेकिन ऐसे सीजन में आना पड़ेगा जब हमें दशहरी आम मिले।
1: अभी 15-20 दिन बाद बस पकने ही वाले हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है, खूब आनंद लीजिए भाई, तो बहुत ही अच्छा फल है और इस दो आमों का राजा कहलाता है ये। बहरहाल चलिए, ये बता दीजिए कि आज आपका फोन लगा हेलो फरमाइश में, तो कौन सी पसंद है आपकी, गाना बताएं?
1: जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है संगीत और गीत के बोल है सुनो हसीना काजल वाली।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। अरे

0: हेलो फरमाइश
1: शेफाली कपूर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपसे मुखातिब हूँ मैम।
0: भाई बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
1: और मैं 2003 से रेडियो भी भारती का सुनने वाला हूँ। मैं घाट को ऊपर में रहता था तब से सुनता हूँ, लेकिन अभी आज मेरी बात हो रही, मैं बनारस से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: तो ये बताएं कि मुंबई के घाट को ऊपर से बनारस कैसे पहुँच गए?
1: जी मैं वहाँ 5 साल हेयर कटिंग किया हूँ मैम, उसके बाद मैं फिर बनारस शिफ्ट हो गया हूँ। बनारस में ही यहाँ एक दुर्गा कुंड एरिया है, अस्सी घाट के बगल में, वहीं मैं रहता हूँ मैम।
0: अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं?
1: यही अपना ही बिजनेस है, हेयर कटिंग का ही काम करता हूँ मैम।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, अपना सैलून है परवेज भाई का वाराणसी में?
1: जी जी 20 साल से ऊपर हो गया, मेरी फोन आज लगी है।
0: क्या बात है भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ये आप सभी का अपना कार्यक्रम है हेलो फरमाइश।
1: रेडियो सुन सुन के मैं जो कि बचपन से सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है आप लोग की आवाज।
0: जो इस समय आपकी आवाज है और आपके अंदाज है ना, वो बता रहे हैं कि आप खुशी से लबरेज हैं इस समय विविध भारती के साथ। ऐसे ही जुड़े रहें और जरा ये बताएं कि बनारस की गलियों में वो जो आलू की सब्जी और कचौड़ी मिलती है, उसका आनंद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं?
1: जी जी मैम, फेमस है उस गली का नाम है कचौड़ी गली मैम, बहुत फेमस है वो रहता है। उस गली की खूबसूरती है कि अगर आप गली के अंदर जाएंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है, हींग की खुशबू आती है, घी या देसी घी की खुशबू आती है कि एकदम खाने का मन तो हो ही जाता कोई भी है। यहाँ तक विदेशी पर्यटक भी वो स्वाद चखते हैं मैम। और एक नया घाट बना है हमारे यहाँ नमो घाट मैम, वो बहुत फेमस घाट हुआ है।
0: गंगा आरती तो बहुत ही बढ़िया होता है।
1: गंगा आरती मैम आप दशा समेव घाट पे देखिएगा, बहुत खूबसूरती होता है। और हमारे अस्सी घाट पे जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी अब गंगा आरती होने लगी है मैम, बहुत ही अच्छी होती है।
0: जी जी, और उसका जो अक्स गंगा जी में पड़ता है वो तो अद्भुत होता है। चलें परवेज भाई, आपकी इस खुशी को हम दुगना कर देते हैं। अब बताएं आप कि आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
1: जी मैम, फिल्म रहेगी लव इज शिमला मैम, गाने का बोल है अलिफ जवर आल अली जवर आल अली जवर ए अलिफ तो, ये मोहम्मद रफी जी की मीठी आवाज में है मैम गाना ये।
0: अच्छा, सुने अपनी पसंद का ये गाना।

से आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: पगवंदी धमदा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हरख राम पटेल, कुंती पटेल, भूमि और चंचल पटेल।
0: और मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना।
2: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल।
0: और मध्य प्रदेश से प्रहलाद जी।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
0: और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी जी का।
2: संदेश भेजने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत है आप सभी श्रोताओं का श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं गर्मी के प्रकोप से बचाव की।
0: जी श्रोताओ, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के सामान्य तरीकों और इस मौसम में खान पान की।
2: जी
0: तो विमलेश जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चर्चा किस विषय पर रहेगी। जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राथमिक उपचार। यानी आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब किसी को लू लग जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए।
0: जी विमलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रामीण विद्यार्थी श्रोता भी हैं, वैसे सभी उपचार की विधियों को थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं।
2: जी
0: लेकिन फिर भी हम चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि हमें अपने प्रिय श्रोताओं और उनके परिवारों की चिंता है।
2: जी बहुत सुंदर। जी हाँ श्रोताओं, जब उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जरूर हमें एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लू लगने के क्या लक्षण हैं।
0: इसके मुख्य लक्षण हैं चक्कर आना, अचानक बहुत तेज सर में दर्द होना, बहुत पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना,
2: घबराहट, जी मिचलाना, बहुत तेज बुखार और दिल की धड़कन का तेज होना, भ्रम और यहाँ तक के बेहोशी।
0: श्रोताओ, ये सामान्य लक्षण है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि यदि ऐसा किसी के साथ हो तो हम तत्काल क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा किसी के साथ और कहीं भी हो सकता है।
2: तो श्रोताओं, सबसे पहली बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति को तुरंत किसी ठंडे स्थान पर ले जाएं और जहां तक संभव हो उसे लिटा दें। उसे धूप से तुरंत बचाना बहुत जरूरी है।
0: और तुरंत किसी छायादार पेड़ या किसी दीवार की आड़ में या किसी खुले कमरे में ले जाएं, किसी ठंडी जगह पर लिटाएं और उसके शरीर को ठंडा करें।
2: ठंडा करने के लिए उसे कपड़ा भिगोकर या ठंडे पानी से पोंछें और माथे पर गीला कपड़ा रखें। इससे पीड़ित व्यक्ति को कुछ हद तक जरूर राहत मिलेगी। किसी मोटे कागज या कपड़े से पंखा झलते रहें।
0: और यदि संभव हो तो कूलर या पंखा चलाएं। उसके तंग कपड़े और बेल्ट को ढीला करें। इससे पीड़ित के रक्त संचार में सहूलियत होगी और वह सांस भी ठीक से ले पाएगा।
2: यदि पीड़ित होश में है तो पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ORS दें। लेकिन धीरे धीरे ध्यान रखें, बहुत ठंडा पानी अचानक न पिलाएं।
0: और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है जानना कि बेहोश व्यक्ति को मुंह में कुछ भी ना दें। उसकी सांस की नली अवरुद्ध या चोक हो सकती है और अतिशीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। श्रोताओ, अक्सर ये होता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें जल्दी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें,
2: और इतनी देर में बहुत देर हो जाती है। यदि हम इन छोटी छोटी प्राथमिक उपचार की विधियों से परिचित रहेंगे तो यथासंभव किसी का जीवन जरूर बचा लेंगे।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जो हमने जनहित में प्रसारित की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, तो प्रश्न है श्रोताओं कि पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो है हमारा IVRS नंबर। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं।

0: आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जब इतनी गर्मी है तो हम कुछ समय के बाद मानसून की उम्मीद कर सकते हैं
1: जी।
0: तो भाई मानसून आएगा, वर्षा होगी, तो मेंढकों के टर्राने की आवाज भी तो सुनाई देगी
1: जी।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम बरसात और मेंढक।
1: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर निर्मित इस कार्यक्रम में वर्षा ऋतु की सामान्य जानकारी देते हुए विशेष रूप से बताया गया है कि बरसात के मौसम में जब मेंढक निकलते हैं तो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं। कार्यक्रम में संदेश दिया गया कि बच्चे जीव जंतुओं से प्यार करें और उनका ख्याल रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
1: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
3: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
1: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
3: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
4: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
5: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
6: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
0: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।

0: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बरसात और मेंढक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, बाल कलाकार रिद्धि, वान्या, नव्या, सोहम और लवीश, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी हमने सुना कार्यक्रम बरसात और मेंढक, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
1: कार्यक्रम में सूबेदार बाना सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बर्फीली सियाचिन की ऊंची और बेहद खतरनाक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ आक्रमण करके दुश्मन की चौकी पर अधिकार कर लिया। इस वीरता के प्रदर्शन के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह।
2: सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपकपाने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक।
3: नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत।
4: अरे भाई कितनी ठंड है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है।
5: जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। पर ये अंडे, अंडे कम गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं।
4: आजा खेलते हैं।
5: अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ, जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो।
6: कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम दो चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती।
5: अच्छा वो क्या?
6: एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा
5: हाँ दूसरा क्या?
6: और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल।
4: क्या बात कही है।

ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कड्याल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे, शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते।

बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे।

0: जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई।
1: साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है।
2: हाँ साहब,
1: यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है।
2: जी साहब।
1: और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
1: और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है।
2: बहुत मुश्किल। बिल्कुल।
3: देखो चुन्नीलाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है।
1: हाँ।
3: ये देखो, पास आ जाओ। आ गया। ये देखो, यदि इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता।
1: हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते।
3: बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ।
0: मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी, हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी एक तिहाई राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था।
4: साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है?
3: बस थोड़ी दूर और। वो देखो, उस गड्ढे के पास।
4: जी।
1: अच्छा।
0: बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े।

0: कभी संगीन घोपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया।
1: जय हिंद कर्नल साहब।
2: जय हिंद बाना सिंह।
1: कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है, हमने एक एक को भगा देता है।
2: वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन।
1: थैंक यू सर जी, थैंक यू।
0: नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम, नाम सियाचिन यानी गुलाबों का संग्रह।

0: सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव, आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर आए। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर आए। मौके पर अपने काफिले के साथ श्री आलम रांची के धुरवा स्थित आवास पहुंचे। झारखंड में अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू किए जाने के लिए आज रांची में ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में किया गया। मौके पर राज्य के नगर विकास मंत्री सुदेव्य कुमार, विभागीय सचिव, अधिकारी और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। केंद्र सरकार की जनगणना 2027 को सफल बनाने को लेकर आज जामताड़ा जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पहल पर पटोदिया धर्मशाला में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वगणना शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने स्वगणना कार्य सहज ढंग से संपन्न किया। चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को चैंबर के सदस्यों ने स्वगणना कार्य में सहयोग किया। और रामगढ़ समाहरणालय परिसर में आज कांग्रेस कमेटी प्रदेश महासचिव शांतनु मिश्रा के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने प्रशासन के समक्ष घर उजाड़ने के पहले उन्हें बसाने की व्यवस्था करने की मांग की। मौके पर श्री मिश्रा ने बताया कि अपनी संवैधानिक मांगों को लेकर वे अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं और उनकी मांगों पर सरकार को पहल करनी होगी। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:02 हुए हैं। प्रस्तुत है किसानों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे हैं। सभी किसान भाई बहन के कार्यक्रम में स्वागत है, जोहार है, प्रणाम है। और आज हमारे साथ आवल हथिन उमेश भाई तोहरो, जोहार प्रणाम।
1: जोहार प्रणाम वीरेंद्र भाई। और आज के कार्यक्रम सुने वाले सभी किसान भाई बहन के एक बार फिर से उमेश के दने से भी जोहार प्रणाम हन। और देखा वीरेंद्र भाई, आज हम इन कार्यक्रम में बड़ी दिन बाद भेटे लगे।
0: देखा कि ये कार्यक्रम के जो प्रायोजक हथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: तो देखा भाई, ये कार्यक्रम के प्रायोजक हथिन भाई, तो हम जो है उनका कार्यक्रम में बताओ यन भी। और देखबा कि जो है हम इनके किसान भाई बहन जथिन से भाई बात करबे हम इन आरंभिक चर्चा कि भाई कृषि पर हम इनके प्लास्टिक प्रदूषण के का प्रभाव हो, खेती बारे में हम इनके किसान भाई बहन के का नुकसान हुआ है, एकर से हम इनका बचाव करिए, कैसे एकरा जो है से उपाय करिए, एकर बारे में बात करबे भाई।
0: बात तो करबे, लेकिन पहले सुनिए एक जरूरी संदेश।
1: बिल्कुल।
2: इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहा
2: है, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता चलती थी, भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सभी डाले
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच
2: है? बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल समेत नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आते जल्दी खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: तो देखा उमेश भाई, अभी हमें सुन लिए जरूरी संदेश।
1: हाँ,
0: है ना। और आज हमें जो चर्चा करवे कृषि पर प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव के बारे में, यानी कि हम इनके जो भी प्रभाव कैसे पड़ो है, एकर बारे में हम चर्चा करवे।
1: बिल्कुल
0: भाई। देखा, सबसे पहले किसान भाई बहन ने एक गलती हमेशा करवा, जैसे खेत में दवाई दारू छिटला, प्लास्टिक लाला ओकरा फेंक दला, है ना, या अपन तो ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से मल्चिंग जे कला ओकरा फेंक दला। उसे फेंकना ना हो, सबसे पहले एकरा करना का उमेश भाई कि एकरा सबसे पहले जमा करला। कुछ प्लास्टिक अगर बिक्री लायक हो तो अलग जमा करके रखा, है ना, ओकरा बेच दा। जहाँ देखा कि कहीं गढ़ा हो, आकाश में पहले से गड्ढा हो, वो गढ़ा में डाल के माटी देखे ढाब दा, दूसरा उपाय हो। तीसरा में हमें एकरा गा करना हो, प्लास्टिक के इतना महीन कर देना हो कूट काट के।
1: हाँ हा।
0: तो भी उकरा जे अगर खेत में अगर देते तो कहीं फंसते उसते ना उकर से बच सको। लेकिन सबसे बड़ा किसान गलती का करू थी ने, या आम आदमी देख ला, बाजार से सब्जी ले गल थून या कुछ कुछ ले गल थून, प्लास्टिक के फेंक दल थून, अब प्लास्टिक के नली में फेंको थून। कभी नली में फेंके चाहिए भाई। अभी जैसे बरसात है तो कहीं कहीं तो सुने थे सबके घर में पानी घुस गलो फलना गाँव में, एकर कारण का हो प्लास्टिक। प्लास्टिक जब हम फेंकला नली में डाल दला, पानी जोर से अलो, बस मुंह वहां जाम हो गलो कोई कारण से, पानी गाँव में ही रह गलो, है ने।
1: एक बात और देखवा वीरेंद्र भाई, जैसे हम इनके किसान भाई बहन जो खेती बाड़ी करो थे, तो तू जैसन के कहला कि दवा बीरो लेके जाती और खेत क्यारी में फेंक दोती। दूसर बात देखवा ने कि जो उनकर जानवर हो, गुरु डांगर है, वो हो जो है से खा जाती। और उनका देखवा ने कि पेट में पचो न जानवे करो है, तो वो भी जो है से उनका जान माल के खतरा हो जाए। दूसर बात देखवा ने कि बहुत किसान भाई बहन ऐसा हतो, चाहे देखवा के जैसन के तू कहला ने कि फेंक दो थी नाली में फेंक दो थी, चाहे जहां तहां फेंक दल तू, तो वो का करो थो कि भाई जमा करके आग लगा के जरा देती।
0: हाँ।
1: तो ये गलती भी ना करा।
0: हाँ।
1: तो एकर से भी जो है कि हम इनके प्रदूषण
0: के बड़ा कारण हो जाए,
1: बड़ा नुकसान हो जाए भाई, तो ये भी हम इनके काम ना करे के।
0: हाँ हाँ। ये बहुत बढ़िया तो बात बोल रहा है उमेश भाई।
1: हाँ।
0: कि मतलब प्रदूषण से अपन बचावे के चाहिए प्लास्टिक के, कि कैसे हम प्लास्टिक से बचिए। अब एक बात और उपाय बता दे, जैसे बहुत कुछ सब्जी ले जाए भाई, हमें कोशिश करें झोला लेके जाके चाहिए अपन सब्जी लेके आवे के चाहिए, या बाजार में अभी ऐसा कुछ प्लास्टिक आयल है।
1: हाँ।
0: मतलब कागज कोटेड टाइप के प्लास्टिक, मतलब तुम्हारा लाने तक समय तक वो ठीक रहता है, धीरे धीरे खराब हो, वैसे प्लास्टिक के यूज आदमी के करे के चाहिए। सब छोट छोट बात के अगर तू ध्यान देवा ना उमेश भाई, तो हम इनके बढ़िया रहते।
1: बिल्कुल। देखा कि हम इनके किसान भाई बहन के भी जो है छोट छोट बात के अगर ध्यान रखती।
0: हाँ।
1: तो देखवा ना कि भारी नुकसान हुए से बचा सको थे भाई। और एक चीज और देखवा कि हम इनके किसान भाई बहन जैसे भाई जे उनका जो सामान हुआ है जैसे कि साग सब्जी निकाले थे तो ओकरो में कहे कि भाई अब का हो गलो कि फल जो ओकर साग सब्जी तोड़ल थे पैकिंग करल थे
0: हाँ।
1: तो ओकर में कहे कि भाई बहुत प्लास्टिक जो है से वो जहां तहां फेंक दो थे वो जो है से जैसे सब्जी अपन पैकिंग करल थो वो गाड़ी में ला दल थो भेज दल।
0: देखा प्लास्टिक में पैकिंग ना करके कोशिश करा तू कार्टून में पैक करके भेजल करा कार्टून जैसे अगर तू 10 रुपए में लाना है अब कार्टून के काय बेनिफिट बता दे जहां तू बाजार में भेजला कार्टून आज की रेट में 10 रुपए 8 रुपए किलो भी बिक जाए थे भाई आम गाम गुडली दाम में ऐसा चीज यूज करे तू पैसा को वापस आवे वाला सोचा हमेशा है ना। तो फिर एक जरूरी संदेश है सुन लीजिए
1: बिल्कुल तब भाई आवाज सुनो ये कुछ जरूरी संदेश।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: तो देखा वीरेंद्र भाई, हम इन कार्यक्रम में किसान भाई बहन खातिर जरूरी संदेश सुनाओ ये।
7: हाँ हाँ।
6: ओकर बाद देखवा ने कि पौधा के उत्पादन में देखवा कि पॉली जे
7: टनल के
6: कनल जो है, तो वो तकनीक जो है ना, वो जो है बहुत महत्व है हम इनके किसान भाई बहन के खातिर का उपयोगिता है, एक बारे में भी जो है हम इनके किसान भाई बहन के जाने के बहुत जरूरी हो।
7: देखा पॉली टनल हम इनके 2-3 प्रकार के हुए, एक हाँ। घर में हम इन गाची करे प्लास्टिक ऐड के ओकरा भी पॉली टनल कहल जाए, और एक पॉली हाउस में भी गाची ओकरा भी पॉली टनल कहल जाए, और एक ट्रे के माध्यम से भी खेती अथी नर्सरी हुए ओकरा भी पॉली टनल कहल जाए। भाई पॉली टनल में सबसे बड़ा फायदेमंद है किसान के उमेश भाई कि अगर तू पॉली हाउस के अंदर गाछी करो या प्लास्टिक के नीचे गाछी करो तो 3 फायदा हो। जैसे सबसे पहला है कि हम ट्रे में गाछी कर लिए, जो बाहरी अतिक्रमण जेकरो इंसेक्ट कीड़ा है ना, जो रस चूसक कीड़ा, वो इंसेक्ट से बचो है। फिर वायरल डिजीट जेकरा का जो बैक्टीरिया है ना, जो टमाटर वमाटर मरे लगो बैगन हुआ, तो अगर तो प्रो ट्रे में तू गाछी करो तो वो बैक्टीरियल से बचे के संभावना रहो है। कैसे बचे की संभावना रहो, थोड़ा सा हम थोड़ा सा डिटेल में बात करो ये। सबसे पहले कि जब भी हम इन कोई भी गाछी करो ये, जैसे कोकोपीट का इस्तेमाल करे, तो ओकर में हम इन ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल जरूर करे चाहिए। जहां हम 20 किलो अगर कोकोपीट बर्मिंग कम्पोस्ट के जो इस्तेमाल करो ये, तो ओकरा में कम से कम 50 ग्राम से 100 ग्राम मतलब ट्राइकोडर्मा 150 ग्राम मिला के ओकरा अथी करिए, या तो अगर 3 से 4 दिन ओकरा छोड़ दिए कोकोपीट के, तो पूरा एकदम जाली जाली बन जातो, तो ओकर से करके करा तो ओकर से पौधा मरने के शिकायत कम मिलतो।
6: बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा कि पौधा उत्पादन में जो पॉली टनल हो, इस तकनीक से हम इनके किसान भाई बहन कहा है कि जे तू नर्सरी कर ले हा, जे गाछी कर ले हा, ओकर में जे है से बर्बादी कम हुआ है।
7: हाँ।
6: एक में जो है सुरक्षा भी हो जाए, जैसे कि दुश्मन किट हो गलो तो ओकर से भी बर्बादी से बचो है। और दूसरा बात है देखा वीरेंद्र भाई, हम इनके कार्यक्रम में देखवा कि जो है मसाला की खेती भी जो है हम इनके किसान भाई बहन करो।
7: हाँ हाँ।
6: और एक में कहा है कि भाई हम इनके जब कृषि वैज्ञानिक बताओ थी अपन वैज्ञानिक विधि से, तो वो जो है से किसान भाई बहन खातिर काफी फायदेमंद हो जाए।
7: देखा सबसे बड़ा बात क्या है ना कि कुछ हम इनके जानकारी के अभाव में खेती अच्छा ना कर पा रही है, तो वैज्ञानिक सलाह से अगर हम इन खेती करोगे तो करोगे अच्छा हम मुनाफा कमा सकोगे। अगर छोट छोट बात का ध्यान दिए तो हम बढ़िया मुनाफा कमा सकते। मसाला का खेती, मसाला की खेती में बहुत तरह खेती, वैसे धनिया गुलो, हल्दी हो गलो, अदरक हो गलो, लहसुन हो गलो, है ना, जीरा गोलकी, ओकर बाद बहुत तरह मसाला। तो आज हम मुख्य तौर से बात जो कर लिए ओकर में अदरक के खेती के मुख्य तौर से बात कर लिए, भी मसाला के रूप में आवो है।
6: बिल्कुल, तो देखा कि भाई ये अपन अनुभव के बतावे थतीन ये थीन कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्ण प्रकाश कुमार।
7: हाँ हाँ।
6: और इनकर से बातचीत कर लेते वीरेंद्र साहू,
7: तो इस जानकारी भरल बात के सुनो ये और समझो ये।
6: बिल्कुल,
8: बातें करेंगे मसाला की खेती एवं औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती, लेकिन मुख्य तौर पे आज जो हम लोग बातचीत करेंगे मसाले के ऊपर। तो किसान भाइयों, आज हम आपको लिए चलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, झारखंड, गौरिया कर्मा, हजारीबाग में स्थित है, और हमारे साथ वरीय वैज्ञानिक आज जो बातचीत करेंगे, इनका नाम हुआ डॉक्टर कृष्ण प्रकाश। तो आपको स्वागत है, जोहार है सर।
9: सभी किसान भाइयों को हमारा जोहार।
8: तो सबसे पहले कि हमारे खासकर के जो झारखंड में उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रदेश है या पूरे झारखंड की हम चर्चा करें, अदरक का खेती लगभग इदायत हर जगह पे होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रांची एरिया में देखा गया है, नगरी क्षेत्र में, लेकिन अभी हर जगह थोड़ा थोड़ा होने लगा है अदरक का खेती। तो डॉक्टर साहब, हम उच्च गुणवत्ता अदरक की खेती के लिए सबसे पहले हम लोग बीज का जो चुनाव करेंगे उसको हम लोग कैसे चुनाव करेंगे, कौन कौन सी वैरायटी, इसके बारे में आप संक्षेप में जानकारी दें।
9: जी, सबसे पहले तो ये जानिए कि पूर्वी भारत में खासकर के झारखंड में अदरक की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त जलवायु यहाँ पे है। यहाँ पे किसान भाई जो अदरक की खेती के लिए जो मिट्टी है, जो वर्षा का कंडीशन होता है, वो भी यहाँ पे अच्छी है। खास करके आदिवासी क्षेत्रों में नॉर्मली अदरक की खेती होती आ रही है परंपरागत तरीके से, तो अदरक की खेती यहाँ पे कर सकते हैं। आज के समय में जो अच्छी किस्में हैं वो सुप्रिया, सुप्रभा, सुरुचि, ये सब नई किस्में हैं। और लोकल में जो प्रचलित किस्में हैं असम, जोरहट, मारन, इस तरह की किस्में हैं, जो नादिया किस्में, इस तरह की किस्में हैं जो अच्छी पैदावार अदरक की यहाँ पे देते हैं। और नहीं अगर लगाते हैं तो किसान भाई इसको लगा सकते।
10: तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि अदरक की खेती करने में सबसे पहले कैसे मिट्टी का चुनाव करेंगे ताकि वहाँ अदरक का खेती हमारा अच्छा हो।
9: जी, अदरक की खेती को बलुई दोमट जो मिट्टी होती है उसमें अच्छी होती है, तो यहाँ उसके लिए इस तरह की कोई मिट्टी हो जिसमें कि जल भराव समय ज्यादा समय के लिए ना हो, मतलब पानी की निकासी की व्यवस्था खेत से होनी चाहिए। तो ऐसी जगह का चुनाव करके और उसमें खेत को तैयारी करते समय हम उसको 3-4 बार इसको खेत को जोत के और उसको बिल्कुल मिट्टी को भुरभुरी कर लें। खेत जुताई के समय हम उसमें 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से हम उसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि मिट्टी ये हो अच्छी हो जाए अदरक के लिए और उसमें खरपतवार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसमें जो है जहाँ तक रासायनिक खाद की बात है तो 100 kg 60 kg तो खेत की तैयारी के लिए हम लोग 15 से 20 टन पर हेक्टेयर ये जो
10: गोबर का
9: इस्तेमाल करेंगे, गोबर खाद का इस्तेमाल करेंगे और साथ में जो रिकमेंडेड डोज है एनपीके फर्टिलाइजर का उसका भी आधा डोज नाइट्रोजन का और पूरा डोज फास्फोरस और पोटास का हम लोग खेत की तैयारी के समय इसमें खेत में डाल देंगे। तो इस तरह से मिट्टी को हम लोग खेत की तैयारी कर लेते हैं और रिज मेथड पे लगाना चाहिए। तो इसको यहाँ पे झारखंड में कंडीशन में तो रिज बना के हम लोग खेत की तैयारी,
10: जैसे रिज मेथड की जो बात कर रहे हैं जो हम लोग बेड बनाते हैं उसको आप रिज मेथड बोलते हैं ना। चलिए बहुत अच्छी बात बताए। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ खास करके अदरक लगाने का मुख्य समय कौन सा समय होता है।
9: झारखंड में अदरक लगाने का समय अप्रैल से जून तक होता है, मतलब इसको लगाने के समय में थोड़ा सा तापमान ज्यादा होना चाहिए, तो अप्रैल से मई महीने में इसका तापमान ज्यादा होता है और जो जर्मिनेशन के लिए जो उच्च तापमान की जरूरत होती है तो ये मिल जाती है और बारिश के मानसून आने तक हम लोग उसको शुरुआत के समय में तो मतलब जून तक हम लोग लगा सकते हैं। तो मई और जून मान के चलिए कि पर सबसे उचित समय है झारखंड में अदरक लगाने के लिए।
10: जो अभी महीना जा रहा है हमारा, यानी कि एक तरफ से मई भी जा रहा है और जेठ महीना भी शुरुआत है, है ना, तो ये हम लोग इसको लगा सकते हैं।
9: बिल्कुल हम इसको अच्छा लगा सकते हैं।
10: अभी जैसे आप किस्मों की बात किए, 5-6 किस्म बताए, तो मुख्य तौर से कौन सा किस्म यहाँ किसान लगाएगा जो कि अच्छा होगा।
9: जो लोकल किस्में अगर लगाते हैं उसको अगर बीज की अच्छी क्वालिटी मिल जाती है तो आपको तो जो नादिया किस्म है, असम की जोरहट किस्म है, तो इस तरह की किस्में आपको मिल जाएगी। अदरवाइज जो ICR का संस्थान है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, उसके द्वारा विकसित की गई सुप्रिया, सुरभि, सुरुचि, ये किस्में है, रियो डी जेनेरियो, ये सब किस्में हैं जिसमें कि अच्छी पैदावार मतलब 25 से 30 टन पर हेक्टेयर तो ये उसमें मिलती है। तो ये सब किस्में किसान भाई इसको लगा सकते हैं।
10: ये तो बहुत अच्छी बात बताया डॉक्टर साहब, लेकिन जो ये प्रभेद जो आप बताए ये क्या हमारे हजारीबाग की दुकानों में वो उपलब्ध है, बीज दुकानों में?
9: ये नहीं, बीज दुकानों में तो वो किस्में मतलब अगर किसान भाई लगा रहे होंगे तो उनको अगर आ चुका होगा मार्केट में यहाँ पे तो फिर वो बीज मिल जाएंगे। आप जानते हैं कि ये अदरक का जो लगाने का है वो राइजोम कंद जो होता है उसी से होती है, गांठ बोलते हैं, इसी से होती है। तो अगर ये बीज आ गई होगी तो यहाँ पे बाजार में मिलेगी।
10: या क्या आपके संस्थान से?
9: हमारे संस्थान में हम लोग किसान भाई अगर संगठित रूप से अगर एक बल्क में ऑर्डर देता है तो हम लोग वहां से कह के मंगवाया जा सकता है किसानों के लिए। हम लाइनअप करवा सकते हैं आप वहां से किसान भाई, क्योंकि ये बल्की मटेरियल है तो आपको एडवांस में वहां ऑर्डर देना पड़ेगा, और वहां से क्योंकि वहां पे जो जहां मेन सेंटर है वहां पे प्रोडक्शन होती है, तो वहां एडवांस में वहां बुकिंग
10: मिल जाएगा
9: है, तो बुकिंग
10: कर। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, एक हेक्टेयर यानी कि अढ़ाई एकड़ यानी कि 200 लगभग 250 डिसमिल में जो हम लगाएंगे अदरक की खेती जो करेंगे, तो उसमें कितना बीज लगेगा हमारा? तो
9: एक हेक्टेयर के लिए 15 से 20 क्विंटल गांठ होता है उसकी जरूरत पड़ती है, 15 से 20 क्विंटल जो राइजोम हुआ उसकी जरूरत पड़ेगी। और वो अगर आप लगाने से की दूरी होती है तो लाइन से लाइन और प्लांट से प्लांट, तो लाइन से लाइन टू लाइन 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी और प्लांट से प्लांट 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, तो ये स्टैंडर्ड दूरी रखते हैं, तो आपको 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर में बीज की जरूरत पड़ती है।
10: अच्छा अच्छा, ये लगाने के बाद उसको क्या सिंचाई कितने दिनों में करना चाहिए ताकि हमारा खरपतवार कम हो, इसके लिए क्या करना चाहिए किसान?
9: इसको लगाने पे तुरंत पानी नहीं देना होता है, आपको एक सप्ताह के बाद 15 दिन पे, और ये एक्चुअली ये जो डिपेंड करता है कि आपका वहां के मिट्टी और पानी की कंडीशन कैसे है। जो ऑलरेडी किसान रेनफेड कंडीशन में लगा रहे हैं तो वर्षा पे आधारित उनको रहना होता है, तो उसके लिए जो जरूरत है, अगर मिट्टी बहुत ही सूखी है तो आपको लाइफ सेविंग इरीगेशन देना होता है, अदरवाइज इसमें आप 7 से 10 दिन के अंतराल पे अगर पानी देते हैं शुरुआत में, तो फिर ये हो जाएगा। अंकुरण के बाद उसमें पानी, जब पौधे निकल आते हैं हरे हरे होते हैं, तो उसमें पानी की जरूरत आवश्यकता जरूर होती है, अगर उसमें वर्षा नहीं होती है तो आपको किसानों को पानी देना होता है।
10: जैसे खरपतवार के लिए बहुत जगह हम देखते हैं अदरक का जब किसान खेत में लगाता है, प्लास का जो पत्ता होता है उसको ढकता है, उसको क्यों ढकता है, उससे क्या क्या फायदा?
9: बिल्कुल, तो ये जो टेक्निक है इसको मल्चिंग टेक्निक कहते हैं। तो ये मल्चिंग टेक्निक्स या तो प्लास्टिक मल्च से लोग करते हैं, अदरवाइज जो पुराना सूखा खरपतवार है या पलाश के पत्ते हैं या कोई भी इस तरह का चीज से आप ग्रीन मल्च से इसमें मल्चिंग कर सकते हैं। उस मल्चिंग का मुख्य फायदा ये है कि आपको खरपतवार नहीं आते हैं, और दूसरा फायदा है कि उसमें नमी भी संरक्षित रहती है, तो ये मल्चिंग जरूर करना चाहिए। चाहे आप ड्रिप मेथड लगाएं तो भी, और ड्रिप मेथड नहीं भी करते हैं तो भी किसानों को सलाह दी जाती है कि आप लगाने के बाद उसमें मल्चिंग करें।
10: चलिए ये बहुत अच्छी बात बताया। अब डॉक्टर साहब ये जानते हैं लगाने के बाद उसका निकाई गुड़ाई कितने दिनों में अदरक को करना चाहिए?
9: हाँ, अगर जब लगा चुके हैं आप और उस खेत की तैयारी के समय अगर उसमें से जो जड़ के सहित अगर घास फूस जो नहीं लगे थे तो आपको काफी हद तक वो कंट्रोल होगा और कम जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए उतनी अच्छी से मिट्टी की जुताई नहीं हुई है और बाद में सीजनल घास जो आते हैं वो अगर निकलते हैं, तो उसको 15 से 20 दिन के अंतराल पे उसमें निकाई गुड़ाई की जरूरत पड़ती है, और उसके साथ साथ उसमें जब अंकुरत हो जाते हैं तो उसमें मिट्टी चढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। 15 से 20 दिन के अंतराल पे ये करना पड़ता है।
10: मतलब एक बार या दो बार?
9: दो बार, कम से कम दो बार तो चाहिए ही होता है।
10: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं किसान जिसमें लगाता है तो क्या मतलब कुछ जैसे कि बीज उपचार के लिए उसमें क्या कुछ?
9: हाँ, बीज उपचार के लिए मैंकोजेब से ट्रीटमेंट करना चाहिए बीज लगाने से पहले, जो गांठ लगाते हैं राइजोम उससे पहले मैंकोजेब, जो भी बीज जनित जो रोग है इसमें, जो इसमें मेनली राइजोम रॉट होता है जो सरा गला रोग कहते हैं, तो उसके लिए आपको मैंकोजेब से ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो ये ज्यादा अच्छा होता है।
10: ये तो चलिए हम लोग ट्रीटमेंट तो किए और पास भी दे दिए, मिट्टी चखा दिए है ना। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारा अदरक लगाने से कितने दिन बाद वो हमारा हार्वेस्ट के लिए तैयार होता है, और बीच में कौन कौन सी बीमारी आता है उसका संक्षेप जानकारी दें।
9: ये अदरक की खेती में जो मेन मुख्य बीमारी है वही राइजोम रॉट है, रॉटिंग की समस्या, सरागला रोग होता है, और एक बैक्टीरियल विल्टी भी होती है उसकी समस्या होती है। तो जो इसके लिए आप मैंकोजेब, जो सरागला रोग है उसके लिए मैंकोजेब का ट्रीटमेंट सही है, 0.3% मैंकोजेब का ट्रीटमेंट करना चाहिए, और जो बैक्टीरियल बीमारी है उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो पत्तों पे जो दागदार धब्बे होते हैं तो वो माइनर बीमारी ही है, तो जिसका कंट्रोल आपको ये मैंकोजेब से या फिर कार्बेंडाजिम से करने पे इसका कंट्रोल हो जाता है। इसकी खेती में आप ये डिपेंड करता है कि आपका मार्केट कैसा है, कितने दिन में हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो अगर से 3 महीने से किसान अगर लेना शुरू कर देते हैं, अगर हार्वेस्टिंग उसको कच्चे अदरक इसका जरूरत पड़ता है तो वो निकालना शुरू कर देते हैं, अदरवाइज 4 महीने से 5 महीने में आप उसको निकाल सकते हैं,
10: यानी कि लगाने से 4 से 5 महीने के बीच में आप उसको निकाल सकते हैं। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात बताया कि अदरक का एक भंडारण हम कैसे करेंगे, जब हमारे यहाँ उत्पादन बाजार रेट नहीं है, उसको भंडारण करके कैसे रखेंगे ताकि अच्छे रेटों में उसको हम बेच।
9: हाँ, अदरक के भंडारण के लिए अदरक की जो सबसे हार्वेस्टिंग तभी करते हैं जब वो कम्प्लीटली उसका जो लीफ पोर्शन है, ग्राउंड एवं ग्राउंड पोर्शन है, वो जब सूख जाता है, जब पत्तियां सूख जाती है तब उसको निकाला जाता है, और निकालने के बाद उसको प्रॉपर क्यूरिंग किया जाता है, मतलब कि उसको प्रॉपरली सुखाया जाना है। तो इस सुखाने के लिए भी साइंटिफिक मेथड्स भी अवेलेबल हैं जो हम लोग यहाँ ट्रेनिंग में बताते हैं, और उनके लिए आजकल प्रॉपर मशीनें भी आ चुकी हैं जो ड्रायर्स होते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके अगर करते हैं साइंटिफिक तरीके से, जो बड़े पैमाने पर अगर बड़े किसान लगाना चाहते हैं तो उसको करके कर सकते हैं। अदरवाइज जो देसी तरीका है, परंपरागत तरीका है, उसमें किसान भाई उसको लेके उसको क्लीन करके अच्छे से उसको ठंडे में सुखाते हैं, फिर उसको प्रॉपर ये करके या बोरे में सूखी जगह पे, उसको नमी जहां पर नहीं हो थोड़ा सा ऊपर जगह पे उसको भंडारण कर सकते हैं घरेलू स्तर पर।
10: चलिए ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब आपने बहुमूल्य समय देकर, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
9: जी धन्यवाद।
6: तो देखा वीरेंद्र भाई, अभी हम इनके जानकारी देवे थलथिन डॉक्टर कृष्ण प्रकाश कुमार, और इनकर से बातचीत कर लेते हैं वीरेंद्र साहू।
7: तो देखा बहुत ही अच्छा तरीका से बताते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम झारखंड में खासकर हजारीबाग क्षेत्र में जो भी है अदरक की खेती कर रही है, कुछ आज किस्म के बहुत ही अच्छा तरीका से मतलब वर्णन कर रहे थे किस्म के।
6: बिल्कुल।
7: एक अलावे देखा कि किस्म के साथ लगावे के समय के भी वर्णन कर रहे थे, और देखा कि एक बड़ बीमारी से बचाव के बारे में भी वर्णन कर रहे थे। ओकर बाद देखा कि मतलब अदरक के भंडारण के बारे में भी जानकारी देलथिन है।
6: बिल्कुल। और देखा कि भाई हम इनके जब कृषि वैज्ञानिक बताओ थे वैज्ञानिक विधि से खेती बाड़ी करे के चाहिए ताकि जे हम इनके पैदावार बेस तरीके से हो सको है।
7: हाँ, और अब देखा कि ये तो जानकारी के साथ में आज के बाजार भाव जो हमारे हजारीबाग में बिकलो है सब्जी के भाव, ओकर बारे में आज हमें जानबे। सबसे पहला है कि आलू, लाल आलू 15 से 16 रुपया प्रति किलो, सफेद आलू 12 से 14 रुपया प्रति किलो, प्याज 16 से 20 रुपया प्रति किलो, फूलगोभी 40 से 45 रुपया प्रति किलो, पत्ता गोभी 20 से 25 रुपया प्रति किलो।
6: और देखा मैं पटल के बाजार भाव की बात करिए तो 30 से 35 रुपया प्रति किलो रह ले हो, भिंडी हो 20 से 30 रुपया प्रति किलो, नेनुआ है 20 से 25 रुपया प्रति किलो, और कद्दू के बात करिए तो भाई 10 से 15 रुपया प्रति किलो है, हरियर मरचा हो 50 से 60 रुपया प्रति किलो।
7: और देखा कि शिमला मिर्च 40 से 50 रुपया प्रति किलो, गाजर 20 से 25 रुपया प्रति किलो, बीट 30 से 35 रुपया प्रति किलो।
6: देखा कि अगर सीमी की बात करिए तो 50 से 60 रुपये प्रति किलो हो, बीन हो 40 से 60 रुपये प्रति किलो, मुराय की बात करिए तो भाई 15 से 25 रुपये प्रति किलो हो, धनिया पत्ता है 40 से 50 रुपये प्रति किलो, और आदि हो 80 से 100 रुपये प्रति किलो, खीरा के बाजार भाव रहले हो 15 से 20 रुपये प्रति किलो।
7: और देखिए टमाटर जरा बिलौती को 25 से 30 रुपये प्रति किलो, लाल साग 20 से 25 रुपये प्रति किलो, पालक साग 15 से 20 रुपया प्रति किलो। अब आओ आज के मौसम के बारे में और कल के भी मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करवाइए। तो देखिए कि आज के अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस हो, न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो, अधिकतम नमी और आर्द्रता का लगभग 43%, अब मौसम कल साफ रहे के अनुभव हो। अब देखा कल के मौसम के बारे में।
6: बिल्कुल। देखा मैं कल के बात करिए तो 36 डिग्री सेल्सियस रहते अधिकतम तापमान और न्यूनतम है 24 डिग्री सेल्सियस।
7: तो ये रहलो आज के बाजार भाव और मौसम के जानकारी के बारे में। और अब चर्चा हम कर बे प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना, यानी कि जे किसान के हर साल में 3 किस्त 2000 रुपया करके जो मिलो है, एक बारे में आज हम जानकारी देवे। तो सबसे पहले है कि उमेश भाई, एक हम कैसे योजना के लाभ लेवे एक बारे में हम चर्चा करबे।
6: बिल्कुल।
7: तो सबसे पहले एक योजना के लाभ लिए खातिर किसान के जैसे कि एक निबंधन हुआ ऑनलाइन, तो आवेदन जो हो आवेदन जरूर किसान के करे के चाहिए। और देखा बीच बीच में अगर पोर्टल खुल दे रहे तो किसान के सबसे पहले अपन जमीन के रसीद है ना, जैसे कि अपन नाम से जो रसीद हो ओकरा चाहे बैंक पासबुक चाहे आधार कार्ड चाहे अब वोटर आईडी चाहे और मुखिया से सत्यापन होवे के चाहे, इतना चीज तू लेके जा जहां प्रज्ञा केंद्र हो जहां ऑनलाइन करो वहां से ऑनलाइन करा के तू छोड़ दे आवेदन के और बीच बीच में ओकरा चेक करते रह कि हमर पास भले कि ना, अगर ना पास भले फिर 6 महीना बाद ओकरा आवेदन करा तो उतरी पास होवे के संभावना रहतो। जब पास हो जतो हर दिन महीना में तोहरा जो हो मतलब 4 महीना में 2000 रुपया हर किस्त मिल जानी, साल में 6000 रुपया किस्त मिलते। ई किस्त इसलिए किसान के देवल जा हो कि सबसे पहले कि तोहरा आमदनी कैसे मतलब बढ़ावल जा खेती में, तो बिहन बरुआ लिए खाती ले तोहरा एक बारे में दियल जा है।
6: बिल्कुल सही बात कहला वीरेंद्र भाई। देखा एक पोर्टल है ऑनलाइन करे के आवेदन जो है pmkisan.gov.in पोर्टल पर जो है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से करल जा सको हो। और देखवा कि जैसन के तू बतेला कि किसान भाई बहन के का कागजात के जरूरी पड़ो है, और देखवा ना कि तोहरा जब सब फार्म वार्म भर लेबा ओकर बाद तोहरा मोबाइल में ओटीपी आए तो, और ओटीपी आधारित जो है से ई केवाईसी पूरा करे पड़तो तब जो है से तू ई योजना के पात्र हो सको है। और देखवा कि एकर में का है कि भाई हम इनके किसान भाई बहन जो थी से भाई आधिकारिक वेबसाइट है pmkisan.gov.in।
7: हाँ, तो देखा कि ये सब जानकारी के साथ अगर तू फार्म भरो हा तो पीएम किसान के तू लाभ ले सको हा।
6: बिल्कुल सही बात कहला भाई। देखा कि एकर में का है कि भाई जैसन के दस्तावेज के जरूरी पड़ो है, आधार कार्ड हो गलो, बैंक खाता के विवरण हो गलो, आधार कार्ड से लिंक होवे के चाहिए, जमीन के विवरण हो, खाता नंबर, खसरा नंबर और तोहर जो जमीन हो ओकर
7: जमीन के रसीद।
6: बिल्कुल। और देखो कि मोबाइल नंबर भी तोहरा बहुत जरूरी।
7: हाँ, और यही सब जानकारी के साथ कार्यक्रम किसान वाणी से जाय के बेरा हो गले तो हमारा वीरेंद्र के
6: और उमेश के अनुमति दा
7: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बारी।

0: कार्यक्रम खेतीबारी सुन रहे तमाम किसान भाइयों को, श्रोता भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार जोहार। और आज मेरे साथ हैं उमेश, आपको नमस्कार जोहार।
1: नमस्कार जोहार वीरेंद्र भाई, और कार्यक्रम सुन रहे ग्रामीण भाइयों को भी एक बार फिर से स्वागत करते हैं। साथ ही किसान भाइयों के लिए कई जानकारी गीत और उनके लिए जरूरी संदेश लेकर आते हैं। इसी संदर्भ में आज बात करेंगे अपने किसान भाइयों से कि खेतीबाड़ी का पैमाना बदलता जा रहा है।
0: हाँ।
1: दिनों दिन जो है वैज्ञानिक पद्धति से हमारे किसान भाई खेती करें ताकि जो है सो पैदावार अधिक से अधिक ले सकें।
0: तो सबसे पहले कि आज तो हम लोग जानकारी में तो बात करेंगे ही, लेकिन मनोरंजन के लिए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: श्रोताओं, आज के युवावाणी कार्यक्रम में

0: निकालो से आना। तो देखा कि हमें अभी बातचीत करवे ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से मतलब खेती बाड़ी के बारे में। सबसे पहले किसान भाई बहन एक दो चीज के हमेशा ध्यान रखे के चाहिए, ड्रिप इरिगेशन लगावे के तरीका, ओकर समय कब और कैसे लगावे के चाहिए, मल्चिंग कैसे करे चाहिए, ओकर बारे में हम डीप में आज चर्चा करवे। ड्रिप लगावे से सबसे पहले किसान की बात के ध्यान रखे चाहिए, जमीन के एकदम भुरभुरा करके तैयारी करे चाहिए खेत के पहला। दूसरा जब खेत तुहर तैयार हो जाओ एकदम सुखल में, तो उकर बाद जो है उकरा में बेड बनावे के टाइम में गोबर अगर एक एकड़ हो तो कम से कम 5-7 टन गोबर सड़ल गोबर दियल कराओ कर में। उकर बाद जो हो से तुहरा गोबर के अलावा बहुत कुछ ऐसा चीज है मिनरल खाद भी उकरा में मिला के दे के बेड बनावा। बेड बनावे के बाद उकरा पूरा एकदम गोल कर दा, गोल करे के बाद पाइप लेटल पाइप के बिछावा, उकर बाद प्लास्टिक ऊपर से ढके के चाहिए। प्लास्टिक जब ढका जाओ तुरंत ना लगे के चाहिए, 5-6 दिन उकरा ढकल रह के चाहिए। अच्छा 6ठा दिन से 7वां दिन 2 दिन पानी उकरा 5-6 घंटा चला के छोड़ ताकि मॉइस्चर पूरा उकर में बन जाए। तकर बाद उकर में पंच करके पौधा लगावे की शुरुआत करते हैं। और ड्रिप इरिगेशन में सबसे बड़ा चीज है कि खाद के हम प्रबंधन कैसे करवे, इकर एक रूटीन बना लिए के चाहिए। जैसे कि तू अगर बीमार हो जाए और तुम्हारा दवाई जब दियल जाओ तो डॉक्टर रूटीन के हिसाब से दे हो, कौन कैप्सूल कितना खाना है, कौन दवाई कितना खाना है, कौन टॉनिक कितना पीना है, कब पीना है, ओकर वही तरह सेम खेत में कब 19-19 देना है, कब 0-0-50 दिए है, कब 12-0-61 दिए है ना, कब NPK दिए है, सब अलग अलग तरीका से खाद एकर में पड़ो है। एक शेड्यूल जरूर बना लेके चाहिए क्योंकि कैल्शियम कब दिए है, कॉपर कब दिए है, जिंक कब दिए है, छोट छोट बात के अगर हम ध्यान दिए तो हम बढ़िया से कर सको ही है।
1: बिल्कुल सही बात कहला भाई। देखा इस तरीके से हम के किसान भाई बहन के जे सहूलियत होते भाई, और देखा कि हम इनके जो किसान भाई बहन खेती बाड़ी करो थी भाई, तो उकर में कहा है कि भाई इस सब बात के अगर ध्यान देते तो उनका जो माटी है उकर पैदावार भी बढ़ जाते। तो भाई देखा हम इन बातचीत करे इसलिए किसान भाई बहन के गीतनाथ भी सुने भाई। हाँ। सुनो ही गीतनाथ।

0: तो वीरेंद्र जी, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत कर रहे थे कि हमारे किसान भाई ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करके अगर पानी की बचत करें तो आज जो है खेती बाड़ी में जो है काफी सहूलियत हो जाएगा हमारे किसान भाइयों को। और आप देखेंगे कि ड्रिप इरिगेशन ही है और मल्चिंग का विधि जो है, इन दोनों को प्रयोग करके हमारे किसान भाई कम से कम पानी का जो है प्रयोग करते हैं और इससे पानी का बहुत अधिक बचत होता है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताया उमेश जी कि हम कैसे पानी की बचत करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो ड्रिप के माध्यम से तो बचत तो होता ही है, लेकिन जो हम लोग मल्चिंग करते हैं उससे और बचत होता है। जो पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है, नहीं वो प्लास्टिक में रहता, फिर वो जमीन में वापस आ जाता है। इस तरह से करने से वो अच्छा रहता है, पहला चीज। दूसरा में फायदा क्या है कि पानी जो हम सिंचाई करते हैं बूंद बूंद से, तो वो जमीन में मतलब धारणा, मतलब क्या कहा जाए कि उसको मतलब सोखने की क्षमता ज्यादा होता है। जिस जमीन में ज्यादा सोखने की क्षमता होता है तो वो भुरभुरा रहता है और अच्छा मतलब उत्पादन उसमें होता है। लेकिन एक आज जानकारी लेकर हम आए हुए हैं जिसमें कि महिला सखी का क्या अहम भूमिका है रोजगार में, तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला चीज है कि महिला समूह से कैसे करें स्वरोजगार, यानी कि महिला समूह से कैसे हम लाभ कमाएंगे, उसे कैसे रोजगार की जरिया बनाया जाएगा। और एक बहुत ही अच्छी महिला जो है युवा महिला है और ये अच्छी जानकारी भी दी है। तो सबसे पहला इनका नाम जो हुआ चंचला कुमारी, बहुत ही मतलब ढंग से ये बताया और हमारे तरफ से जो बात किए हैं वो उमेश रजक हैं। बहुत ही अच्छी तरह से जानकारियां इनसे ली भी है और शेयर भी किए हैं, तो इन्हीं जानकारियों को हम लोग सुनते हैं और समझते हैं।
0: बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। बलियंद गांव जो कटकम सांडी हजारीबाग जिला के अंतर्गत आता है और यहाँ एक महिला समूह चलाती है, महिला स्वयं सहायता समूह। तो हम इन्हीं से जानते हैं, ये महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षा हैं और हम इन्हीं से जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह आज महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कितना मददगार साबित हो रही है, और इन्हीं से जानते हैं इनके अनुभव और कैसे ये संचालन करती हैं, अध्यक्षा हैं और सारे कार्यभार इन्हीं के अंतर्गत में है। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम?
2: चंचला कुमारी नाम।
0: अच्छा, आप चंचला कुमारी जी, आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ?
2: इंटर तक हुआ।
0: अच्छा, इंटर करने के बाद आप आगे क्यों नहीं पढ़ पाए?
2: नहीं, मम्मी पापा नहीं पढ़ाना चाहे, बड़ा हो गया, शादी हो गया।
0: अच्छा, और उसके बाद शादी हो जाने के बाद आप अपने ससुराल आ गए और यहाँ फिर जो है आप अपना जो स्वरोजगार का कार्य है वो करना शुरू किए। तो आप बता रहे थे कि महिला समूह के बारे में, तो इसके बारे में शुरुआत में आपको क्या क्या परेशानी आता है बताएंगे?
2: शुरुआत में तो सदस्य लोग जुड़ना नहीं चाहती है, उसके बाद धीरे धीरे करके जुड़ती है। हम लोग 12 सदस्य है, 12 सदस्य में हम लोग सप्ताह में 20 रुपए जमा करते हैं, उसमें हम अध्यक्ष है, बुक कीपर भी है। 20 रुपए करते करते थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ाना चाहे, उसमें अच्छा। बैंक से लोन लिए, 1.5 लाख रुपया मिला।
0: अच्छा, तो हम एक चीज जानना चाहेंगे कि जो आप बता रहे हैं कि बुक कीपर है, तो क्या काम होता है बुक कीपर का?
2: रजिस्टर मेंटेनेंस करना।
0: अच्छा, तो कितना रजिस्टर होता है?
2: उसमें 7 रजिस्टर होता है।
0: अच्छा, 7 रजिस्टर को आप जो है सो मेंटेन करते हैं।
2: हाँ।
0: और ये जो 20 रुपए साप्ताहिक जमा करते हैं या मासिक?
2: साप्ताहिक जमा करते हैं।
0: अच्छा, साप्ताहिक जमा करते हैं। उसके बाद जो है, जो कुछ महिला है जो जमा नहीं कर पाती हैं, उनके लिए क्या नियम बनाए?
2: उसके लिए फाइन लगाते 10 रुपए, जो नहीं देगी उसका फाइन 20 के जगह फिर 10 रुपए और देना पड़ेगा।
0: तो क्या नाम है आपका महिला स्वयं सहायता समूह का?
2: ज्योति आजीविका सखी मंडल।
0: अच्छा, तो ये जो ज्योति आजीविका सखी मंडल जो आपका जो समूह चल रही है, तो क्या ये किसी संस्था से जुड़ा हुआ है?
2: JSLPS।
0: अच्छा, JSLPS से आपका जुड़ा हुआ है। तो समय समय पर आप लोगों को और भी जो है सो JSLPS के तहत से कुछ सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं, लाभ दिया जाता है, क्या क्या लाभ मिलता है?
2: हम लोग तो ग्रुप से भी ग्राम संगठन जुड़ा है, 600 ऊपर सदस्य समूह रहेगा।
0: अच्छा।
2: तो एक ग्राम संगठन बनता है, उसमें हम लोग बचत करते 50 रुपए ग्रुप से।
0: अच्छा।
2: उसमें से ऋण भी लेते हैं हम लोग।
0: तो ये ऋण कहाँ से मिलता है?
2: ये ब्लॉक से मिलता है।
0: अच्छा, ब्लॉक से आपको मिलता है। तो जैसे स्वरोजगार करने के लिए भी जो आप लोगों को ऋण दिया जाता है, तो क्या आपका जो है अभी तक ऋण मिला है?
2: हाँ मिला है।
0: अच्छा, कितना मिला था?
2: हम लोग जब जरूरत पड़ता है कोई चीज के, मतलब गाय खेती बाड़ी के लिए ले सकते हैं।
0: तो ये आपका समूह कितने साल से चल रहा है?
2: हो गया 7-8 साल।
0: अच्छा, 7-8 साल से आपका समूह चल रहा है और नियमित रूप से जो है बढ़िया से संचालन कर पा रही हैं आप लोग। तो अभी आप बता रहे थे कि 1.5 लाख रुपए ऋण लिए हैं, तो उस
2: बैंक से लिए हैं।
0: अच्छा, बैंक से लिए थे। तो उस राशि का क्या किया आप लोग, किस तरह से जो है रोजगार में लगाए?
2: सब अपना, मतलब 2-4 सदस्य मिल कर के लिए है। तो लोग अपना अपना किए है, कोई खेती किए, कोई बकरी पालन किए, कोई गाय पालन किए।
0: अच्छा,
2: इस तरह से हुआ।
0: हाँ, यानी कि जो है आपका वहाँ से ऋण लेने के बाद आप गाय पालन भी कर सकते हैं, बकरी पालन भी कर सकते हैं, और जो है खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, उसके लिए जो है मिलता है। तो समय समय पर जो है आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और कैसे विकास करें, अपना घर परिवार को सही तरह से जो है आगे बढ़ाएं, उसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है आप लोगों को?
2: हाँ, दिया जाता है। ग्राम संगठन में हम लोग को महीना में 2 बार बैठक होता है। तो एक बार जो बचत होता है, एक EC1 बैठक, EC2 बैठक होता है। तो EC1 में चर्चा होता है।
0: हाँ।
2: EC2 में बैठक होता है, मतलब बचत जमा होता है, कोई ऋण लेती है तो ऋण जमा होता है।
0: अच्छा, ये जो चर्चा होता है जो बता रहे हैं आप पहले बैठक में, तो किस विषय पर चर्चा करते हैं आप लोग, कौन कौन सा मुद्दा को आप लोग लेते हैं?
2: किसी को ऋण लेना रहता है तो उस दिन बैठक में बोल सकती है कि हमको ऋण चाहिए। और किसी किसी की समस्या, किसी घर का लड़ाई झगड़ा से कुछ भी समस्या वहाँ बता सकती है, उसके अच्छा। लिए भी आगे होता है कार्यवाही।
0: यानी कि जो है ग्रामीण समूह में किसी भी समस्या को समाधान के लिए जो है आप लोगों का बैठक होता है। और कोई समस्या आ जाए, किसी तरह का ऋण लेना हो, तो किन्हीं की बेटी की शादी है या कोई बीमार है, उसके लिए भी ऋण आप लोग देते हैं,
2: बढ़ाने के लिए देते,
0: मतलब रोजगार करने के लिए आप लोग देते हैं। एक बात और हम जानना चाहेंगे कि JSLPS के तहत जो है अगरबत्ती मिक्सचर वगैरह बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए कई तरह का ट्रेनिंग भी दिया जाता है, क्या आप लोगों को दिया जाता है?
2: हाँ, हम लोग भी ट्रेनिंग लिए है उसमें, सर्फ साबुन के लिए।
0: अच्छा।
2: हाँ, उसमें 10 दिन का प्रशिक्षण हुआ था सर्फ साबुन बनाने के, तो हम लोग लिए थे 10 दिन।
0: अच्छा, तो उसमें जो है प्रशिक्षण में आपको सारा चीज बताया जाता है?
2: हाँ, सारा चीज बताया जाता है।
0: अच्छा, तो आप जब ट्रेनिंग लिए, उसके बाद जो है क्या आप आगे अपना फिर जो है घर में बनाने के लिए शुरुआत की है?
2: हाँ, घर में बनाए अपना यूज के लिए।
0: अच्छा, यानी कि अपना जो घर में उपयोग के लिए बनाए, उसको बिक्री के लिए नहीं बनाए?
2: नहीं, नहीं बनाए।
0: अच्छा, क्या विचार कर रहे हैं आप लोग कि आप अपने महिला समूह में मिलजुल करके बना के और आगे बिक्री करेंगे?
2: और सदस्य है और ग्रुप है, उसमें भी चूड़ी उड़ी बनाई है, उन लोग भी बेच रही है।
0: यानी कि जो है चूड़ी वगैरह भी बना के जो है आप बिक्री कर सकते हैं। तो जो महिलाएं आपकी बात को सुन रही हैं, जो आपके समूह से जुड़ना चाहेंगे, वो भी जो है काफी कुछ महिलाएं हैं जो पीछे रह जाती हैं, उनको जानकारी का अभाव होता है, उनको आप कैसे जानकारी देंगे किस तरह की महिला समूह में जुड़े काफी फायदेमंद है?
2: उसके लिए हम लोग बैठक करेंगे। बैठक करके दीदी लोग को बताएंगे कि हाँ ऐसे बैठक कीजिए।
0: अच्छा।
2: आगे बढ़ने के लिए बचत करना चाहिए। अच्छा। बचत करके ही तो कुछ होगा।
0: जैसे आप इस महिला समूह में आप अध्यक्षा हैं, और जो है कितने लोग होते हैं पदाधिकारी? जैसे 12 सदस्य का आपका एक समूह होता है, उसमें आप अध्यक्ष भी हैं, सचिव भी होते हैं?
2: अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और एक बुककीपर।
0: अच्छा, बुककीपर, यानी 4 पदाधिकारी होते हैं। तो कैसे चुनाव करते हैं आप लोग महिला समूह में?
2: चुनाव करते हैं, जो जिसको इच्छा होता है वो बनती है।
0: अच्छा, तो आपस में चुनाव करने के बाद आप लोग जो है उसका ये करते हैं, बनाते हैं। तो जैसे अभी आप बता रहे हैं कि
2: पढ़ी लिखी जो रहती है उसी को चुनते हैं, जिसको जानकारी होता है।
0: अच्छा, जो हिसाब किताब बढ़िया से रख सके। कोषाध्यक्ष का क्या कार्य होता है?
2: उसको सिर्फ पैसा वैसा का हिसाब रखना है।
0: अच्छा, और सचिव का?
2: सचिव का देखभाल करना है।
0: अच्छा, देखभाल करना है। हाँ। और आप लोग जैसे साप्ताहिक बैठक रखते हैं बता रहे हैं, तो उनका संचालन कौन करते हैं?
2: बुककीपर करते हैं।
0: अच्छा, बुककीपर करते हैं।
2: कोषाध्यक्ष रखेगी।
0: अच्छा।
2: जो पैसा वगैरह बक्सा जो होता है।
0: हम्म,
2: वो कोषाध्यक्ष रखती है।
0: अच्छा, एक बात और सुनने को मिलता है कि जैसे चाबी बक्सा या जो भी हिसाब किताब होता है एक के पास रहता है तो हेर फेर भी करते हैं, इसीलिए क्या वो अदला बदली भी करते हैं?
2: सप्ताह सप्ताह में किसी को अगला सप्ताह दूसरा को दे देंगे, फिर बैठक होगा तो दूसरा को देंगे, इस तरह करके रखते हैं, हर सदस्य को मिलना चाहिए।
0: अच्छा, एक बात और होता है कि जैसे गांव का विकास करने के लिए सभी महिलाएं मिल के जो है गांव का विकास कैसे करें, इन बातों का भी आप लोग जो है सो चर्चा करती हैं?
2: हाँ, करते हैं, सब चीज का बात होता है, सब लिखाता भी है रजिस्टर में।
0: अच्छा,
2: किसी कह रहे पानी का कमी है या ये रोड उड का थी दिक्कत है, ये सब भी बात होता है।
0: यानी कि जो है महिला समूह के माध्यम से आप ग्राम विकास की बातें कर सकते हैं। हाँ। और आगे कैसे बढ़ें, कैसे रोजगार करें, कैसे जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, इन बातों पर आप लोग जो है चर्चा करते हैं। हाँ। तो जैसे आप प्रशिक्षण किए 10 दिन का, आपने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त किए, साबुन वगैरह बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किए, तो आप और महिलाओं को भी जो है भेजते हैं प्रशिक्षण में, उनको कैसे? हाँ। क्या खर्च वगैरह आता है?
2: कुछ नहीं, बस वहाँ रहना खाना फ्री है।
0: अच्छा,
2: आना जाना का भाड़ा मिलता है।
0: यानी कि जो है प्रशिक्षण का सारा खर्च निशुल्क होता है, आने जाने का भी भाड़ा दिया जाता है। तो अधिक से अधिक महिलाएं आपकी बात को सुनकर जुड़ेंगी और जो है अपना स्वरोजगार शुरू करेंगे और महिला समूह से काफी फायदा है।
2: सब चीज का ट्रेनिंग होता है, अभी भी ट्रेनिंग चल रही है खेती बाड़ी का, कैसे वहाँ पे बताता है।
0: अच्छा, तो अभी जैसे अब खेती बाड़ी का समय आ रहा है तो खेती बाड़ी के क्षेत्र में भी प्रशिक्षण दिया जाता है?
2: अभी अभी चालू है वहाँ ट्रेनिंग।
0: अच्छा, कहाँ पे ट्रेनिंग होता है?
2: RCT में होता है, हजारीबाग।
0: अच्छा, हजारीबाग RCT में, जैसे JLPS का ऑफिस है। हाँ। वहाँ पे प्रशिक्षण होता है।
2: हाँ।
0: अच्छा, तो जैसे कुछ महिलाएं जाना चाहती है, आपके समूह में नहीं जुड़ी हुई है,
2: बिना समूह को नहीं जा सकते?
0: अच्छा, बिना समूह में जुड़े नहीं जा सकते, तो फिर और जैसे नया महिला आपके समूह में जुड़ना चाहे तो उनको कैसे जोड़ेंगे?
2: तो उसको फिर ग्रुप बनाना पड़ेगा।
0: अच्छा,
2: 12 सदस्य फिर उसको एकजुट करके बनेगा।
0: अच्छा, यानी कि 12 महिलाओं को जोड़ करके एक और समूह बनाया जाएगा नया, उसके बाद आप प्रशिक्षण में भेजेंगे। तो जैसे जो महिलाएं सुन रही हैं आपकी बात को कि हम जो है महिला समूह में नहीं जुड़े हैं या उनका जानकारी का अभाव है, तो उनको आप कैसे प्रेरित करेंगे, कैसे समझाएंगे कि महिला समूह के माध्यम से सभी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है?
2: उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, लोग को बैठा करके बताएंगे।
0: अच्छा,
2: उन लोग को जानकारी।

0: बच्चा लोग को नहाना धोना, ये हर रोज का उन लोग को साफ सफाई देखभाल करेगी, स्कूल भेजेगी।
1: हम आशा करेंगे कि आपकी बात को सुनकर ग्रामीण महिलाएं लाभ उठाएंगे, और आज महिला स्वयं सहायता समूह का क्या जरूरत है इस पर जो है वो अमल करेंगे, और महिला समूह से जुड़कर अधिक से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे, रोजगार शुरू करेंगे। तो आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतना बढ़िया जानकारी दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो आपने सुना महिला समूह के से कैसे स्वरोजगार हम लोग करेंगे, और ये जानकारी भरी बातें जो कर रही थी महिला चंचला कुमारी और हमारे तरफ से जो बात किए थे उमेश रजक, इन्होंने एक एक बात पर ध्यान डाला। ध्यान क्या डाला कि हम प्रशिक्षण लेके कैसे साबुन बनाएंगे, कैसे हम निरमा बनाएंगे, ये सब चीज़ का अच्छा से इन्होंने प्रशिक्षण लिया और ये अभी कर रही है, और इनके गांव में भी लोग कर रहे हैं अभी देखा देखी। तो एक रोजगार का बढ़िया जरिया है महिला समूह के माध्यम से।
1: और वीरेंद्र जी कितना बढ़िया बताया कि जो है हमारे ग्रामीण महिलाएं या शहरी महिलाएं जो भी हैं जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, अपने स्वरोजगार को शुरू करने के लिए अपने हुनर के अनुसार वो जो है सरकार से ऋण लेकर के जो है आगे बढ़ सकती हैं। और इस तरह से हमारी महिलाएं जो है वो दिनों दिन आगे बढ़ेंगे और अपना रोजगार शुरू करेंगे।
2: तो देखिए कुछ तो एक चर्चा है, समसामयिक कृषि चर्चा भी, यानी कि अभी जो हम लोग खेत में काम कर रहे हैं, यानी कि अभी का जो समय है, जो बारिश हो रहा है, इसका फायदा लोग को उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: खेतों की अगर हम गहरी जुताई करते हैं, इससे क्या होता है कि कुछ ऐसे कीड़ा हैं जो कि मरते हैं, शत्रु कीड़ा, और इसमें मित्र कीड़ा का बढ़वार होता है। इसमें बढ़वार का कारण है कि मिट्टी जैसे जैसे सूखेगा तो उसी से शत्रु कीड़ा मरेगा, माथा घास जो होता है टोटी घास वो भी मरेगा। तो लोग को अभी जुताई खेत को करना बहुत जरूरी है।
1: और वीरेंद्र जी अपने खेतों में अभी जो है गोबर जो है डाले, तो गोबर डालने से भी जो है उनको उनके जमीन में जो है अभी से जो है ज्यादा फायदेमंद होगा। समय
2: गोबर
1: पर
2: डाल के उसका जुताई कर दे ताकि वो पानी में ना बहे।
1: तो कार्यक्रम खेती बारी से अब विदा लेने का भी समय हो चुका है वीरेंद्र जी, तो कार्यक्रम में आगे और भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपने दोस्त उमेश को दीजिए इजाजत
2: और वीरेंद्र को
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: शाम के 6 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। तीसरे चरण का अभियान झारखंड सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा। खूंटी में पुलिस लगातार अवैध अफीम

0: डा के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में खूंटी और मुरहू पुलिस ने 10 लाख रुपए मूल्य का लगभग 2 किलो अवैध अफीम, 231 किलोग्राम डोडा, एक कार और एक बाइक जब्त की है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि अफीम डोडा के कारोबार की मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत ने आज आमजनों की सुरक्षा को लेकर एक विशेष अभियान की शुरुआत की और थाना प्रभारियों के साथ पैदल मार्च किया। प्रहरी पहल नाम से शुरू इस अभियान के तहत जिले में अपराध नियंत्रण तथा उद्भेदन, छेड़खानी, सड़क पर अवैध रूप से पार्किंग रोकने और क्षेत्र में भौतिक रूप से पुलिस पदाधिकारी तथा कर्मियों की क्षमता बढ़ाने पर कार्य किया जाएगा। चतरा के उपायुक्त रवि आनंद आज औचक निरीक्षण करने गिद्धौर प्रखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रखंड तथा अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और कार्यालय में उपस्थित पंजी समेत कई फाइलों का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी जायजा लिया। रामगढ़ समाहरणालय परिसर में आज कांग्रेस कमेटी प्रदेश महासचिव शांतनु मिश्रा के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने प्रशासन के समक्ष घर उजाड़ने के पहले उन्हें बसाने की व्यवस्था करने की मांग की। मौके पर श्री मिश्रा ने बताया कि अपनी संवैधानिक मांगों को लेकर वे अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं और उनकी मांगों पर सरकार को पहल करनी होगी। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। युवाओं के लिए कार्यक्रम युवानी।

युवानी कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को ममता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? हमें विश्वास है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे अपने जीवन में। इधर देखिए, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है तो पार्टियों में आना जाना लगा रहता होगा। जहां की विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से सजे स्टॉल मन को लुभाते हैं और डीजे पर बजती प्यारे धुन लोगों को थिरकने पर मजबूर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सुनते हैं हम ये प्यारी सी गीत।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लीव भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: एस स्कीम के टेलीलॉन न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉन के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में जानकारी आप लेंगे लैब टेक्नीशियन के क्षेत्र में कैरियर से संबंधित। बता रहे हैं कुलदीप प्रसाद और इनसे बातचीत कर रहे हैं अशोक कुमार।
2: श्रोताओं, आज के युववाणी कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है केबी ओवेंस कॉलेज के बीएमएलटी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर कुलदीप प्रसाद जी को। तो सर, आपका आकाशवाणी के कार्यक्रम में पहली बार मुखातिब है, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ नमस्कार सर। ऐसा है कि आप बीएमएलटी लैब टेक्नीशियन के आप प्रोफेसर हैं, तो पहले यह बताया जाए कि ये बीएमएलटी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है?
3: बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी।
2: अच्छा जी, तो इसमें आप छात्रों को ट्रेन करते हैं। तो इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, आज के विषय पर हम आना चाहेंगे, तो श्रोताओं, आज की इस कार्यक्रम में हम सर से चर्चा करने वाले हैं कि लैब टेक्नीशियन कैसे बनने जाए, और लैब टेक्नीशियन जब आप बनते हैं तो इसमें छात्रों का करियर की क्या क्या संभावना है। बेसवर जाहिर सी बात है, लैब टेक्नीशियन में करियर की ढेर सारी संभावनाएं हैं। क्या कुछ संभावनाएं हैं, कौन लोग इस लैब टेक्नीशियन के कोर्स को कर सकते हैं, इसकी पात्रता क्या है, कितनी अवधि का ये कोर्स होता है, और फिर इसके सिलेबस क्या होते हैं, इन्हीं सब बातों से विस्तार पूर्वक हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए, पहला जो मेरा सवाल है ये कुलदीप सर, कि ये जो कोर्स है कौन लोग कर सकते हैं इसको, इसके बारे में बताएं।
3: इसमें साइंस स्ट्रीम के बच्चे करेंगे, जैसे इसमें पीसीएम या पीसीबी दोनों बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं।
2: हाँ।
3: फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये दोनों बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और हर एक इंस्टीट्यूशन अपने अपने कुछ क्राइटेरिया रखता है कि मिनिमम परसेंटेज क्या होनी चाहिए। जैसे मिनिमम अभी जैसे केवी ओवेंस कॉलेज में अगर बीएमएलटी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है तो मिनिमम 65% रखा गया है। जो बच्चे 65% जैसे जैक के अगर होते हैं तो उसका एडमिशन एक नियमता अनुसार उसका एडमिशन हो जाता है। और अगर हम
2: सीबीएसई बोर्ड
3: के, अगर सीबीएसई के भी है तो मिनिमम जैसे 65% ही रखा गया, बट अगर वो 65 से वो है तो उसके लिए बेटर है, मिनिमम 65% रखा गया है। और अगर हम सेमेस्टर वाइज की अगर हम बात करते हैं तो बीएमएलटी ये 3 ईयर डिग्री कोर्स है
2: जी।
3: टोटल इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं।
2: हाँ।
3: प्रत्येक सेमेस्टर 6 मंथ्स का है।
2: अच्छा।
3: जिसमें अलग अलग, जैसे अगर हम सिलेबस की बात करते हैं बीएमएलटी का, तो इसमें लेबोरेटरी के जैसे ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सेरोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, कई सारे इसमें सब्जेक्ट है जो बीएमएलटी में 3 ईयर डिग्री कोर्स में इंक्लूड किया गया है। और इसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होती है बिना, जैसे अभी अगर हम केवी विमेंस कॉलेज की बात करते हैं तो केवी विमेंस कॉलेज में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी बीएमएलटी का, उसका एग्जामिनेशन का सारा बिना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही होता है। और प्रत्येक सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन होता है इसका, और ये टोटल एग्जामिनेशन 6 बार होता है इसका।
2: हाँ।
3: और 6 बार होने के बाद ये सारा कोर्सेस आपका कंप्लीट हो जाता है।
2: अच्छा सर, आपने कहा कि ये 3 ईयर डिग्री कोर्स है, जबकि इस बार पता चला है कि अब 4 वर्षों का सारे कोर्स हो गया, तो इसमें क्या
3: वोकेशनल में? अभी वोकेशनल में अभी एक्चुअली में अभी 3 इयर्स का ही अभी किया गया है।
2: अच्छा।
3: अभी उसमें अभी उसका गाइडलाइन आएगा तो उसमें चेंज किया जाएगा। अभी जैसे जनरल कोर्सेस में अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अभी जो अभी जो चेंजेस जो भी हुआ है जनरल कोर्सेस में, और वोकेशनल में अभी हम लोग को उसके लिए अभी कुछ गाइडलाइन नहीं मिला है, लेकिन अगर उसमें भी गाइडलाइन अगर आ जाता है तो हम लोग को उसमें चेंजेस कुछ करना होगा। अभी फिलहाल अभी हम लोग को जो बैचलर की डिग्री के जो पढ़ाई होगी बैचलर डिग्री की,
2: वो
3: 3 ईयर डिग्री है।
2: मान के चलिए ये 3 इयर्स के लिए सेमेस्टर वाइज जो है सो इसमें बच्चों को नामांकन कराना पड़ता है, एडमिशन कराना पड़ता है, तो पर सेमेस्टर इसमें कुल कितना खर्चा पड़ता है, ये कम अनुमानित राशि बताएं हमारे।
3: पर सेमेस्टर ट्यूशन फी 15,000 है।
2: अच्छा।
3: और उसके एक्स्ट्रा, उसके अलावा जैसे हम बात कर सकते हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म का अलग चार्जेस लगता है
2: हाँ
3: और एडमिशन का अलग है ये सारे, लेकिन ट्यूशन फी 15,000 पर सेमेस्टर और एक अप्रोक्सीमेटली
4: एक 2,000 रुपये मार के चलिए
3: हाँ
4: और
3: तो

0: उस टोटल 6 सेमेस्टर में 90,000 कंप्लीट आपका ट्यूशन फी
1: आप लेके चल सकते हैं।
0: अगर हम एक एवरेज बात करते हैं तो लगभग वहां
1: और अच्छा हर 1 लाख में इतना अच्छा करियर मिलता है। अच्छा ये कहा जाए कि प्लेसमेंट की क्या सुविधा, जैसे 3 साल का है यहाँ पे प्लेसमेंट की भी सुविधा होती है, कैंपस सिलेक्शन वगैरह भी।
0: अगर हम कैरियर वाइज अगर हम बात करें तो ये जो बैचलर BMLT की पढ़ाई है ये सारा टेक्निकल पढ़ाई है
1: जी।
0: बच्चों को एक अच्छा ऑफर मिलता है कि हम अपने अंदर एक स्किल डेवलप करें, और आज के डेट में अगर हम स्किल अपने अंदर डेवलप करते हैं तो हम कहीं भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं
1: जी।
0: मेरे अंदर वो कैपेसिटी हो जाता है, हम बच्चों के अंदर वो कैपेसिटी हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि वो कहीं भी उस चीज को यूटिलाइज कर सके, और वो खुद का एक बोलते हैं ना कि हम लोग अपने हाथ का हुनर हो। अगर हम कैरियर वाइज अगर हम इस तरह से बात करें और अभी तो हम लोग सबसे पहले अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे वैकेंसी आते हैं। जैसे अभी अभी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का अभी सिविल सर्जन अभी सदर हॉस्पिटल का भी वैकेंसी निकला हुआ है, कई सारे डिपार्टमेंट का है अभी, जैसे उसमें से एक लैब टेक्नीशियन भी है, एक DRDO सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फॉर्म आया हुआ है उसका भी है। तो कई सारे वैकेंसीज जो है गवर्नमेंट सेक्टर में आते रहते हैं और इसमें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का वैकेंसी आता है। दूसरी चीज है कि अभी एक NRHM के थ्रू से भी डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन की कई सारे वैकेंसी आते रहते हैं, उसमें कई बच्चे अपना योगदान देते हैं। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जो इंडिया लाल लेबोरेटरी है, जैसे हम अगर हम लाल लैब की बात करते हैं, SRL, पैथ केयर, रन वैक्सी, थायरो केयर, तो डिफरेंट लेबोरेटरी है ऑल ओवर इंडिया में जो अपनी कई सारे टेस्ट डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के मामले में कई सारे सुविधा देते हैं, और उसमें बच्चों को एक अच्छा ऑफर मिलता है जॉब के लिए। क्योंकि जब बच्चे 3 साल का कोर्स करके निकलते हैं तो उसके अंदर एक तो बच्चे को बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाता है और 3 साल में उसको इतना ट्रेन कर दिया जाता है इंस्टीट्यूशन के थ्रू से कि वो कहीं भी जाकर के उस चीज को आराम से यूटिलाइज कर। हम प्राइवेट सेक्टर में भी इसका अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, और अगर हम इसका अगर हम खुद का अगर हम लैब ऑर्गेनाइज
1: जी तो खुद का अगर पैथोलॉजी सेंटर ये पढ़ाई पूरी करने के बाद 3 वर्ष के उपरांत खोलना चाहते हैं तो उसके क्या क्या प्रोसेस।
0: अगर बच्चे खुद का लैब अगर ऑर्गेनाइज करना चाहे तो सबसे पहले ये देखना रहता है कि बच्चे को कॉलेज से जो 3 साल की पढ़ाई करके निकलते हैं लेकिन उसके पास एक एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, और वो एक्सपीरियंस जनरली 3 साल के दरमियान में सेमेस्टर 4 में और सेमेस्टर 6 में जॉब ट्रेनिंग होता है जो हम लोग हॉस्पिटल या फिर कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में बच्चों को जॉब ट्रेनिंग कराया जाता है। तो एक जब प्रैक्टिकल कॉलेज में जो कॉलेज के लैब में जब कराया जाता है तो एक हम लोग जनरली वो एक नॉर्मल सैंपल को हम लोग यूज करते हैं, बट अगर हम जॉब ट्रेनिंग में हम लोग बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हम लोग कमर्शियल लैब में पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। हम लोग वहां पे मल्टीपल स्पेसिमेन को यूज करते हैं, मल्टीपल पेशेंट्स का हम लोग सैंपल को वहां पर टेस्टिंग करते हैं, तो एक हमको स्टूडेंट्स को एक नया एक्सपीरियंस मिलता है कि हमको कमर्शियल लैब में काम कैसे करना है, रिपोर्टिंग करना है कैसे करना है, पेशेंट के साथ डील कैसे करना है। अगर हम बैचलर डिग्री की पढ़ाई कर लेते हैं, स्टूडेंट्स कर लेते हैं बैचलर डिग्री पढ़ाई करने के बाद अगर वो 3 इयर्स का अगर एक्सपीरियंस किसी अच्छे लेबोरेटरी से वहां से अगर वो एक्सपीरियंस गेन कर लिया, उसके बाद अगर वो खुद का लैब अगर ऑर्गेनाइज करना चाहे तो एक पैथोलॉजिस्ट के साथ में वो मिल करके एक जैसे अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट में अगर हमको ऑर्गेनाइज करना है तो हमको लैब ऑर्गेनाइज करने से पहले हमको सिविल सर्जन से परमिशन लेना पड़ेगा, यानी कि परमिशन इन द सेंस कि हमको एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा।
1: अच्छा,
0: और दूसरी चीज है कि फिर एक हमको लेना रहता है NABL से। तो ये सारी चीजें अगर सुविधा हम अगर हम प्रोवाइड कर लेते हैं और
1: MBBS डॉक्टर्स की भी और
0: MBBS का मतलब ये हुआ कि जैसे MBBS इन द सेंस के जो पैथोलॉजिस्ट यानी कि मतलब पैथोलॉजिस्ट यानी कि DCP या MD पैथ होना चाहिए, डिप्लोमेट क्लिनिकल पैथोलॉजी, तो हम एक पैथोलॉजिस्ट के साथ में मिल करके जो 10 टेक्नीशियन है जो BSc MLT मिनिमम डिग्री BMLT होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तो मिलकर हम खुद का लैब ऑर्गेनाइज अपना
1: मतलब स्पष्ट हो चुका है कि ढेर सारी संभावनाएं हैं करियर के संभावनाएं हैं। इस कोर्स को करने के बाद इतना है कि छात्र बेरोजगार नहीं बैठेंगे, कुछ अगर नहीं होता है तो कहीं भी किसी अच्छे कंपनी में 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके वो खुद का जो है सो अपना पैथोलॉजी सेंटर खोल करके अच्छा पैसा और शोहरत कमा सकते। ये बात आप बताएंगे कि जैसे लैब टेक्नीशियन

0: का आपने कहा खास तौर से केमिकल का ज्ञान होना बहुत जरूरी।
1: देखिए, अगर हम उसमें केमिकल की अगर हम बात करते हैं तो आज के डेट में अगर हम लैबोरेटरी में केमिकल की अगर हम बात करते हैं,
0: कोई भी एक टेस्ट के बारे में, जैसे मान के चलिए ब्लड का कोई भी टेस्ट है, जैसे टोटल काउंट होता है या फिर सीबीसी मान के आप चल लीजिए, या फिर हीमोग्लोबिन टेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जैसे आप ब्लड का सैंपल आप लेते हैं उसमें हर टेस्ट में कोई ना कोई केमिकल आप उसमें मिलाते हैं तब उसका रिजल्ट आता है। सीबीसी कर रहे हैं उसमें आपको टोटल ब्लड काउंट सेल आपको काउंट करने हैं, WBC RBC, लेकिन ये कौन सा केमिकल यूज करते हैं और कितने दिनों के बाद वो काउंट कैसे पता करते हैं, इसके बारे में संक्षेप में बताएं श्रोताओं।
1: अगर हम सीबीसी की बात करते हैं, इनकम्प्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें से हम एक एग्जांपल आपको देना चाहेंगे टोटल लिकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल लिकोसाइट। तो टोटल लिकोसाइट काउंट के लिए हम लोग एक WBC डाइल्यूटिंग फ्लूड का यूज करते हैं, जिसका फ्लूड का भी नाम एक अलग है, जैसे ट्रक्स फ्लूड्स के नाम से एक आता है। अगर हम लैबोरेटरी में खुद से उसको प्रिपेयर करना चाहेंगे तो हम लोग उसमें जॉनसन वायलेट पाउडर, ग्लासियल एसिटिक एसिड एंड डिस्टिल वाटर में हम लोग उसको डिजॉल्व करते हैं।
0: इस केमिकल को खुद भी तैयार करते हैं,
1: खुद से
0: रेडीमेड भी तो आता है उसे।
1: हाँ, रेडीमेड भी आता है, कंपनी उसको प्रोवाइड करती है, रेडी टू यूज आता है, ट्रक्स फ्लूड के नाम से आता है। और एक अगर हम लोग लैबोरेटरी में, जैसे हम लोग अभी बच्चों को ट्रेन भी करते हैं कि अगर आपके पास रिएजेंट नहीं है तो आप कैसे उसको खुद से प्रिपेयर करो, आप कैसे करोगे आप, तो उसके लिए जॉनसन वायलेट पाउडर, ग्लासियल एसिटिक एसिड और डिस्टिल वाटर की जरूरत पड़ती है। हम लोग उसको प्रिजर्वेटिव के लिए फॉर्मलिन का भी यूज करते हैं, और एक इसका रेशियो होता है, उस रेशियो में वो डायलूट करते हैं। डायलूशन के बाद रिएजेंट हमारा प्रिपेयर होता है, और एक 1:20 के रेशियो में WBC डायलूटिंग फ्लूड और ब्लड, होल ब्लड, यानी कि हम लोग होल ब्लड भी उसमें यूज कर सकते हैं, और EDT एंटीकॉगुलेटेड ब्लड भी हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं। 1:20 के रेशियो में डायलूट करना रहता है। हम लोग उसमें एक, हम लोग दो मेथड से डायलूट करते हैं, एक हमारा WBC पिपेट से भी कर सकते हैं और दूसरा हमारा होता है बल्क डायलेशन मेथड भी हम लोग बोलते हैं। 380 माइक्रोलीटर प्लस 20 माइक्रोलीटर के रेशियो में हम लोग, यानी कि 1:20 के रेशियो में डायलूट करते हैं, और उसमें हमारा फंक्शन होता है जॉनसन वायलेट का फंक्शन है WBC को स्टेन करना एंड ग्लासियल एसिटिक एसिड का काम होता है RBC और प्लेटलेट को लाइसिस करना, ताकि WBC को हम इजी वे लिवर चैम्बर के थ्रू से, लिवर चैम्बर एंड माइक्रोस्कोप के थ्रू से हम इजी वे काउंट कर सके एंड देन काउंटिंग, फिर हम लोग
0: उसको सारा मशीन के थ्रू काउंटिंग होता
1: है। अगर हम लोग CBC अगर हम लोग करते तो हम लोग मैनुअल मेथड से भी कर सकते हैं और हम लोग फुली ऑटोमेटेड
0: हजारों में होते हैं, तो उसे
1: अगर डिपेंड करता है कि जैसे अगर हम लैबोरेटरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि बहुत सारे लैब में CBC एनालाइजर नहीं होता है।
0: अच्छा,
1: तो हम उस जगह पे हम अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम अभी मैनुअल मेथड की बात कर रहे थे, तो मैनुअल मेथड में हम लोग रिवर्स चैम्बर और माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं।
0: अच्छा।
1: और फुली ऑटोमेटेड एनालाइजर में हम लोग ब्लड सैंपल को सिपिंग कराने के बाद विद इन 1 मिनट हमारा रिजल्ट आउटपुट होता है, ये उसका क्राइटेरिया है। और ये हमारा TLC यानी टोटल लिकोसाइट काउंट की बात कर रहे थे। DLC में हम लोग, डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट में हम लोग की डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC के बारे में हम लोग को स्टडी करना रहता है। WBC का शेप, साइज, कलर के आधार पर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड कलर हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट एंड बेसोफिल। हमारा जनरली सर्कुलेशन ब्लड में नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसके लिए हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफाई के लिए हम लोग लिस्मन स्टेन या फिर हम लोग और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन, जैसे मे गुनवाल जिम्सा स्टेन, फील्ड स्टेन का हम लोग यूज करके हम लोग WBC का आइडेंटिफिकेशन। मैं कैरियर की वजह और थोड़ा बोलना
0: चाहूंगा,
1: जैसे अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा जैसे रेलवे हॉस्पिटल हो गया, BSF, आर्मी हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल, रिम्स, यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कई सारे वैकेंसीज हैं, कई सारे वैकेंसीज में। तो अगर कोई बच्चे अगर BMLT की पढ़ाई करते हैं, अगर रेगुलर में अगर पढ़ाई कर रहे हो, अगर वो अपने अंदर स्किल डेवलप किए हुए हैं, तो वो बच्चे कहीं भी हमेशा उनको एक अच्छा, एक उनके पास अपॉर्चुनिटी रहता है, कहीं भी जा सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट फील्ड में, प्राइवेट सेक्टर में भी, और खुद का लैब भी अगर ऑर्गेनाइज करना है तो वो भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि इसमें थियरी और प्रैक्टिकल को समझना, करना और उसको अच्छी तरह से नॉलेज गेन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ये सारा डिपेंड करता है, जो भी एक डॉक्टर अगर इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं तो सारा उसका ट्रीटमेंट एक लैबोरेटरी का रिजल्ट पे ही डिपेंड करता है। अगर लैबोरेटरी का रिजल्ट अगर गलत हो तो उसका ट्रीटमेंट गलत। इसलिए अगर हम परसेंट वाइज अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम यानी कि 70% जो डायग्नोसिस हमारा है वो लैबोरेटरी के रिजल्ट पे ही डिपेंड करता है, और 30% हम सिम्टम के आधार पर हम डायग्नोसिस करते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थे कुलदीप प्रसाद जी, जिनके माध्यम से हमने लैब टेक्नीशियन में छात्रों का करियर विषय पर अच्छी खासी जानकारी प्राप्त की है। और सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को उपलब्ध कराई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जानकारी लैब टेक्नीशियन के क्षेत्र में करियर। जानकारी दे रहे थे कुलदीप प्रसाद और उनसे बातचीत कर रहे थे अशोक कुमार। तो अब आइए सुनते हैं एक जरूरी संदेश।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: दोस्तों, जैसा कि हम कार्यक्रम के शुरू में बातें कर रहे थे कि आजकल शादी ब्याह का सीजन चल रहा है और पार्टियों में आने जाने लगा रहता है, जहां विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से सजा स्टॉल मन को लुभाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में बहुत से लोगों का बहुत सारे व्यंजनों की तरफ आकर्षण होता है और वो बहुत सारा खाना प्लेट में ले लेते हैं, और पेट है कि उसकी अपनी जगह होती है। तो दोस्तों, खाद्य पदार्थों की बर्बादी एक गंभीर समस्या है। बहुत से लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल पाता, जबकि दूसरी तरफ खाने की बर्बादी होती है। भोजन उगाने में पानी, मिट्टी, मेहनत, बिजली और पैसे लगते हैं। खाना फेंकने से ये सब भी व्यर्थ हो जाता है। सड़ा हुआ भोजन कचरे में जाकर गैस पैदा करता है, जिससे प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन बढ़ सकता है। परिवारों और किसानों दोनों का पैसा खराब होता है जब भोजन उपयोग में नहीं आता। इसलिए हमें जितना जरूरी हो उतना ही भोजन प्लेट में लेना चाहिए और खाने की बर्बादी को रोकनी चाहिए। दोस्तों, खाद्य पदार्थों की बर्बादी एक गंभीर नैतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक अपराध माना जाता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर मानवता और पृथ्वी के संसाधनों के खिलाफ है। दुनिया भर में उत्पादित भोजन का लगभग एक तिहाई हर साल बर्बाद हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आप सजग रहें और शादी एवं पार्टियों में खाने की बर्बादी को रोकने में सहायक बने। तो इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम युवाणी से अपनी दोस्त ममता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

दोस्तों, हवाई कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनाते हैं। लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है दो रास्ते।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म हीरो से ये गीत। अब आइए कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं बॉबी फिल्म से गीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम।
3: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
2: इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण का अभियान होगा शुरू। झारखंड

0: झारखंड सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश होंगे शामिल। झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस हिरासत, जेल में मौत और रेप की घटनाओं में न्यायिक जांच को किया अनिवार्य। झारखंड में अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू करने के लिए मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची में किया ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ। हजारीबाग कोयला खनन क्षेत्र में संचालित सामुदायिक विकास परियोजना के लिए सीसीएल को मिला ग्रीन टेक सीएसआर इंडिया प्लैटिनम अवार्ड। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से, शाम 7:30 बजे से मैच होगा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। तीसरे चरण का अभियान झारखंड सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा। इस घोषणा के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 23 मई 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसमें संबंधित बीएलओ के नाम और मोबाइल नंबर भी उपलब्ध रहेंगे। राज्य में प्रत्येक पात्र मतदाता का घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। इस संबंध में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह अपर सचिव सुबोध कुमार ने बताया कि झारखंड में वर्तमान में कुल 2,64,89,777 मतदाता हैं तथा एसआईआर कार्य में 29,571 बीएलओ और 21,644 बीएलए लगाए गए हैं।
1: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरी सहित झारखंड में थर्ड फेज के एसआईआर का अनाउंसमेंट कर दिया है। इसी क्रम में अगले 23 मई को सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी। आप सबसे अनुरोध है कि आप अनमैप्ड सूची का अवलोकन जरूर कर लें। 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाएंगी और जाकर सत्यापन का काम करेंगी।
0: रांची में उपायुक्त सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत पर्यवेक्षकों और प्रगणकों के बीच आधिकारिक किट का वितरण किया। उन्होंने बताया कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन और मकानों की सूचीकरण प्रक्रिया 16 मई से 14 जून 2026 तक चलेगी, जिसमें प्रत्येक मकान और परिवार का डिजिटल माध्यम से विवरण संकलित किया जाएगा। उधर जामताड़ा में भी जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पहल पर पटोदिया धर्मशाला में पोर्टल के माध्यम से स्वगणना शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि चैंबर के सदस्यों के सहयोग से शिविर में आकर लोगों ने सहज ढंग से स्वगणना कार्य संपन्न किया। झारखंड उच्च न्यायालय ने अपर पुलिस हिरासत, जेल में मौत और रेप की घटनाओं में न्यायिक जांच को अनिवार्य किया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अब ऐसे मामलों की जांच एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बजाय न्यायिक जांच के माध्यम से होगी। अदालत ने झालसा को एनएचआरसी की गाइडलाइन के अनुसार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने का निर्देश देते हुए वर्ष 2018 से 2025 के बीच हुई हिरासत में मौत के मामलों की रिपोर्ट भी तलब की है। कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में न्यायिक जांच नहीं हुई है उनमें संबंधित जिला जज कारण बताते हुए उच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपेंगे। झारखंड में अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू किए जाने के लिए आज रांची में ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और जनता के बीच एक समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से नियमितीकरण ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है।
2: हेमंत सोरेन की सरकार ने शहरी क्षेत्र के उन लोगों के बारे में भी गंभीरता से सोचा और उनको राहत देने का प्रयास किया। तो जनता से अपील करना चाहूंगा कि अनुमानित झारखंड के 7 लाख वैसे घर जो अनियमित हैं, वो इस योजना का लाभ लें। जो नागरिक शुल्क देकर अपने अनियमित भवनों का नियमितीकरण करना चाहते हैं, राज्य सरकार उनके मान सम्मान की रक्षा करेगी।
0: जमशेदपुर के सीएसआईआर राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सीएसआईआर एनएमएल के निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधरी ने संस्थान की उपलब्धियों और भविष्य निर्माण में अनुसंधान की भूमिका पर प्रकाश डाला. मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने समावेशी विकास के लिए उत्तरदायी नवाचार विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि तकनीक का विकास स्थानीय जरूरतों और मानव कल्याण को ध्यान में रखकर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि वास्तविक तकनीकी प्रगति वही है जो मानव जीवन को बेहतर बनाए और पर्यावरण संरक्षण में सहायक हो. आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं. ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है. आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं. प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं. केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं. नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों को देखते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति में कमी की कोई सूचना नहीं मिली है.
3: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं. हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है. हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है. सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं.
0: सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल को हजारीबाग कोयला खनन क्षेत्र में संचालित सामुदायिक विकास परियोजना के लिए ग्रीन टेक सीएसआर इंडिया प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है. नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सीसीएल की सीएसआर टीम ने यह पुरस्कार प्राप्त किया जो ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में कंपनी के योगदान के राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है. पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से बाहर आए. इस मौके पर उन्होंने जमानत मिलने पर न्यायालय का शुक्रिया अदा किया.
4: हमने कहा कि सबका जय होती है और सबका जय होकर जय रहेगा. आज हम बेल पर आए, न्यायालय का हम शुक्रिया अदा करते हैं. उन्होंने हमारा ये देखकर बेल उन्होंने दिया है और आगे की जो प्रक्रिया है मैं इस बात का ही कह सकते हैं जो आज के हम बताएं, लेकिन हमें जो विश्वास है वो सत्य का जीत होती है और होगी.
0: वहीं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने आलमगीर आलम को मिली अंतरिम जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे बाइज्जत बरी नहीं माना जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर कड़ी शर्तों के साथ राहत मिली है जबकि मामले की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है. झारखंड विधानसभा के पूर्व मंत्री और गोमिया के पूर्व विधायक स्वर्गीय माधव लाल सिंह का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. बोकारो जिले के गोमिया स्थित साड़म पश्चिमी बोकारो नदी में आयोजित इस अंतिम संस्कार कार्यक्रम में पुलिस बल ने अंतिम सलामी दी. मौके पर उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेन्द्र प्रसाद, उपायुक्त अजय नाथ झा समेत जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और कई राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थकों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी. क्रिकेट. आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा. हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. और अब अंत में मुख्य समाचार. निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तीसरे चरण का अभियान होगा शुरू. झारखंड सहित 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश होंगे शामिल. झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस हिरासत, जेल में मौत और रेप की घटनाओं में न्यायिक जांच को किया अनिवार्य. झारखंड में अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली के प्रावधानों को लागू करने के लिए मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची में किया ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ. हजारीबाग कोयला खनन क्षेत्र में संचालित सामुदायिक विकास परियोजना के लिए सीसीएल को मिला ग्रीन टेक सीएसआर इंडिया प्लैटिनम अवार्ड. और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से शाम 7:30 बजे से मैच होगा शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: प्रस्तुत है जिले में आज का

0: इस अंक में आप सुनेंगे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता।
1: लोहरदगा जिला में जनगणना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। जिले में जागरूकता रथ भी रवाना किया गया है, जिसे डीसी संदीप कुमार मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारशिला है और इसके माध्यम से सरकार को जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार और अन्य जरूरी आंकड़े प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर योजनाएं बनाई जाती है। डीसी संदीप कुमार मीणा ने कहा कि
2: जो भी देश के नागरिक है वो sc.census.gov.in पर जाकर के अपना सेल्फ एनुमरेशन का फॉर्म उसको फिल कर सकती है, और उसके बाद जो कि 16 मई से लेकर के 15 जून तक का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे जितने भी एनुमरेटर्स हैं वो घर घर जाकर के गणना करेंगे, हाउस लिस्टिंग करेंगे और हाउस की सेंसस करेंगे। इसमें हम लोगों का जो आज का हरी झंडी दिखाने का जो उद्देश्य है कि जो हम लोगों ने रथ को रवाना किया है ये ब्लॉक में जाएगा, गाँव गाँव जाएगा, लोगों को जागरूक करेगा कि जो भी प्रगणक आ रहे हैं उन लोगों का सहयोग करें।
1: लोहरदगा जिला में बिजली पानी की किल्लत को लेकर भाजपा द्वारा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और घड़ा फोड़कर अपना विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भीषण गर्मी में लोग बिजली पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और राज्य सरकार खामोश बैठी है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय पंकज ने कहा कि लोहरदगा में केंद्र सरकार की नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है और आज आम जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष अजय पंकज ने कहा कि
3: जितना भी आप क्षेत्र देखिए हर जगह में पानी का त्राहिमाम किए हुए जनता, पानी यहाँ डोभा का जो छोटा है वहाँ से लोग पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। बिजली की स्थिति इतनी बदतर है, आया मुंह दिखाया बस भगदोगनी की तरह से यहाँ दिया जलाता है, टिमटिमाता है फिर लाइट चला जाता है। लगातार विद्युत व्यवस्था बिल्कुल ही चरमराया हुआ है, बहुत जगह में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। आज बहुत सा ऐसा गाँव है जहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुँचा पाया है, जिनको जनसेवा से कोई लेना देना नहीं है, जनता त्रस्त है। अभी स्थिति यह है बीच में दबाव बना करके स्मार्ट मीटर लगाया गया है, स्मार्ट मीटर में लोगों को अनाप शनाप बिल आ रहा है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, जितना जल्दी हो सके जो भी स्मार्ट मीटर लगा है उनको आप हटाइए।
1: लोहरदगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा 90 दिवसीय सघन विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। सिविल कोर्ट परिसर में पीडीजे की अध्यक्षता में जागरूकता एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मनोरंजन कुमार ने बताया कि आम जनों को उनके अधिकारों और कर्तव्य को बताने के उद्देश्य से गहन कानूनी जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। मनोरंजन कुमार ने कहा कि
4: एलईडी वैन में सारा डिस्प्ले किया जाएगा, झालसा नौसा संबंधी स्कीम्स हर गांव-गांव में ये जाएगी और जो लीगल राइट्स है, ड्यूटीज है, हर व्यक्ति का जहाँ भी कोई समस्या आ रही है कैसे उसको समाधान करना, सारा चीज उसमें डिस्प्ले दिया हुआ है। एलईडी जो हमारी टीम है उसमें हमारे TLVs भी रहेंगे।
1: लोहरदगा जिला में बेमौसम बरसात और आंधी तूफान से भारी नुकसान हो रहा है। बेमौसम बरसात ने जहाँ किसानों के खेतों में लगी सब्जियों को बर्बाद किया है, वहीं तेज आंधी से कई पेड़ उखड़कर गिर गए और कई कच्चे मकानों को भी नुकसान हुआ है। बिजली के कई खंभे गिर गए हैं जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अंधेरा छाया हुआ है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा।
0: अभी आप सुन रहे थे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।

0: दोस्तों अभी आप मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे फिल्म जीवन मृत्यु से ये गीत। अब आइए हम आपको सुनाते हैं फिल्म बॉबी से एक गीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

आप सुन रहे थे कार्यक्रम झनकार, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश प्रोग्राम ऑल टाइम हिट्स।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म छुपा रिश्तम का ये गीत, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। अब आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है कर्ज।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश कार्यक्रम आपकी चाहत। आपकी चाहत कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को ममता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमने समय से आपकी फरमाइशों को पूरा करने के लिए आपके खतों के साथ हाजिर है। तो ये है हरली से उमेश चंद्र पांडे, शंभू चंद्र, अनिल चंद्र, साकेत, शुभम, नर्मदा, अक्षता, प्रियंका, शमी, अपराजिता, अपूर्व, टुकु एवं का समस्त परिवार। गोविंदपुर धनबाद से हैं सराफत हुसैन अंसारी, बेगम रेहाना, परवेज अशरफ और हसन इमाम। भुरकुंडा से हैं रानी, दिया, प्रकाश, शोभित, रूपा, संध्या, मृदुला और उनके ढेर सारे दोस्त। तो दोस्तों, आप सबकी पसंद पर ये कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनाते हैं। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। लता मंगेशकर की आवाज में आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में, जिसकी फरमाइश आई है सिसिल बरका काना से रविन्द्र वर्मा, अमन वर्मा, आरती वर्मा, उर्वशी वर्मा, रिया वर्मा, परी, कोकू, चारू और आर के वर्मा। बरही से है वासुदेव मालाकार, संगीता देवी, अनुपमा कुमारी, अंजलि मालाकार, गंगा मालाकार, ज्योति कुमारी एवं उनकी परिवार के प्रत्येक सदस्य। सौदागर मोहल्ला रामगढ़ से है महबूब आलम, शबनम नूरी, मकसूद आलम, शहनाज नूरी, पाकिजा बेगम।

दोस्तों आप हैं जामा मस्जिद रोड हजारीबाग से मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, यास्मीन फातिमा। खरसावां से है सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक गौरव और उनके परिवार के सभी सदस्यगण। मुनगा बगीचा से हैं अजीत, अंशु, रमेश, पिंटू और रामनगर से हैं नेहा, गोलू, छोटू, अनमोल और अनिल। तो दोस्तों आप सबकी पसंद पर आई हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म लम्हे से ये गीत।

दोस्तों इस गाने की फरमाइश की थी लाखे से है मोहम्मद गुलाम हसन मोहम्मद गुलाम सरवर, माली टोला से वीरेंद्र भगत मालती भगत विकास भगत जितेंद्र भगत रितेश भगत रोहित भगत अनिकेत भगत ऋषि और राहुल। अब आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में, इसकी फरमाइश भेजी है श्री बाबूलाल ठाकुर श्रीमती सबिया ठाकुर तिलेश्वरी श्री भरत ठाकुर मंजू संतोष ठाकुर विकास कुमार ठाकुर अनुराधा रुक्मणी प्रियंका मेन रोड बड़का गांव से है दिनेश मालाकार नीरज मालाकार आशीष मालाकार विकास मालाकार रंजना मालाकार गुड़िया रानी गोला बाबू भोला बाबू उनके मम्मी पापा और ढेर सारे मित्रगण। आइए सुनवाते हैं हम आपको आप सबकी पसंद पर फिल्म देवदास से ये गीत।

आप हैं हजारीबाग पतरातो से बेसिल खलखो मधु रितु रचना मितु श्वेता पल्लवी रोहित प्रवीण नदीम मनीषा सोरेन उनका समस्त परिवार ओल्ड लिसनर्स ग्रुप बरका काना से मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी शाहिन सुल्ताना एकता कॉलोनी से सीताराम कांगड़ा बबीता कांगड़ा और निखिल कांगड़ा। तो दोस्तों आप सब की पसंद पर आइए हम आपको सुनाते हैं फिल्म लज्जा से ये गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी चाहत। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब आप कुछ ही पलों में सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज़ 8 हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। होर्मूज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स

0: विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: भारत के यूएई को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूएई से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
3: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर से संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविण मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में

0: आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Revision Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting, which is underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS foreign ministers meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

कुचामन सिटी राजस्थान के जिला मुख्यालय में 14 मई 1943 को प्रसिद्ध निर्माता ताराचंद बड़जात्या के यहाँ जन्मे राजकुमार बड़जात्या। खनन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 1962 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन पिता के अनुरोध पर राजश्री प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए इन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी।

राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी फिल्में शामिल रही हैं। राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्में मनोरंजन की मांग को हमेशा ही पूरी करती रही हैं। फिल्मों के वितरण और प्रोडक्शंस के कार्यों को पूरा पूरा सफलतापूर्वक अंजाम देना राजकुमार बड़जात्या ने आरंभ कर दिया था। एक निर्माता के रूप में 1994 से लेकर 2019 तक ये सक्रिय रहे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में पिया के घर से लेकर मैंने प्यार किया तक का सफर इन्होंने पूरा किया। सह निर्माता के रूप में 1979 की फिल्म नैया से ये जुड़े।

राजकुमार बड़जात्या एक फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बड़जात्या परिवार का एक ऐसा सदस्य जिन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण के अपने पारिवारिक व्यवसाय को बड़ी ही शिद्दत से निभाया। फिल्म निर्माण की अपनी विरासत में इन्होंने कई पारिवारिक मूल्यों के साथ ली हुई लोकप्रिय संगीतमय कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। एक फिल्मकार की संपत्ति और समाज में मान मर्यादा उनकी फिल्मों से ही पहचानी जाती है। राजकुमार बड़जात्या हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन कथाओं, अभिनय, गीत संगीत के माध्यम से आम और खास दर्शकों को उनके पसंदीदा विषयों की सार्थक फिल्में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार बड़जात्या सबसे पहले 1972 की फिल्म पिया का घर से जुड़े। बासु चटर्जी की लिखी और निर्देशित इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ताराचंद बड़जात्या ने।

राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म सौदागर, जिसके निर्देशक थे सुधेंदु रॉय, नूतन, अमिताभ बच्चन, पद्मा खन्ना अभिनीत। इस फिल्म के राजकुमार बड़जात्या सहयोगी निर्माता थे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने तपस्या फिल्म में काम किया, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन अनिल गांगुली ने किया और निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या। ये फिल्म अनुभवी बांग्ला उपन्यासकार आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी। फिल्म में राखी, परीक्षित साहनी, ललिता पवार ने मुख्य भूमिकाएं अदा की थी। संगीत रविंद्र जैन का था। इस फिल्म ने 1976 वर्ष की संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही राखी। सन 1980 में इसी फिल्म को तेलुगु भाषा में भी बनाया गया। सन 1976 की चित्चोर, 1980 की एक बार कहूं, 1984 की सारांश और 1989 की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में भी राजकुमार बड़जात्या एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में रहे।

1994 में आई हम आपके हैं कौन, HAH के यानि हम आपके हैं कौन, राजकुमार बड़जात्या की एक निर्माता के रूप में आई संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसे इनके पुत्र सूरज बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया और राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के बैनर तले इसका निर्माण किया गया। माधुरी दीक्षित और सलमान खान अभिनीत 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई यह फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने फिल्म वितरण के नए तरीकों को अख्तियार कर साफ सुथरी कहानी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को हिंसक कहानी ली हुई फिल्मों के बीच बदलाव का एक सुकून भरा एहसास दिया। साथ ही साथ निर्माण और वितरण का तरीका भी बदला इस फिल्म ने। राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य अवार्ड्स में इस फिल्म की धूम रही। पहला

एच ए एच के बाद 1999 में आई निर्माता राजकुमार बड़जात्या की हम साथ साथ हैं। अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या, अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का था। यह फिल्म भी उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा। यह फिल्म टोरंटो में 6 स्क्रीन्स पर कनाडा के सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित तिथि से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर 1999 को स्क्रीन्स पर ये फिल्म आई और

2002 में फिल्म आई हम प्यार तुमसे कर बैठे। जुगल हंसराज और टीना राणा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। 2003 की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ जो चितचोर पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन। राशि प्रोडक्शंस की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था यशराज फिल्म्स ने।

राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित सन 2006 में फिल्म आई विवाह। मुख्य कलाकार थे शाहिद कपूर और अमृता राव। रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें सगाई से लेकर शादी तक के सफर की कहानी को बखूबी प्रदर्शित किया गया था।

एक विवाह ऐसा भी, इस नाम की फिल्म लेकर आए राजकुमार बड़जात्या साल 2008 में। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ईशा कोप्पिकर, सोनू सूद और आलोक नाथ ने। ये फिल्म आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित

हम राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने फिल्म बनाई इस लाइफ में, 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। ये फिल्में राजकुमार बड़जात्या की अन्य फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई।

इसी क्रम में 2011 में सचिन पिलगांवकर के निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म्स की प्रसिद्ध फिल्म अखियों के झरोखों से की सीक्वल आई जाना पहचाना, जिसमें सचिन और रंजीता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म। ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो।

सलमान खान, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश अभिनीत ये फिल्म दर्शकों के मापदंड पर खरी उतरी। 2019 में एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए हम चार। अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित इस फिल्म में चार नए चेहरों को पेश किया गया था। ये राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की 58वीं फिल्म थी।

0: निर्माण कला के मुरीद हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। पेश कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को ममता का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहला गीत आई हम आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म प्रेम कहानी से।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। पेश कार्यक्रम आज की फनकार। आज की फनकार हैं अक्षय कुमार। जी हाँ दोस्तों, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार बॉलीवुड के सुपरस्टार निर्माता हैं, जिन्हें खिलाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। 9 सितंबर सन 1967 को अमृतसर में जन्मे अक्षय ने बैंकॉक में क्षमा करेंगे शेफ के रूप में काम करने से लेकर बॉलीवुड के सबसे बेस्ट अभिनेताओं में से एक बनने तक का लंबा सफर तय किया है। तो आइए सुनते हैं इन पर फिल्माए कुछ गीत।

अभी आप सुन रहे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। आज के फनकार हैं अक्षय कुमार।

दोस्तों, अक्षय कुमार ने फिल्म सौगंध से बॉलीवुड में शुरुआत की थी। 1992 में फिल्म खिलाड़ी ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। एक्शन फिल्मों से शुरुआत करने के बाद उन्होंने कॉमेडी और गंभीर विषयों जैसी बहुमुखी भूमिकाएं भी निभाई। फिल्म रुस्तम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी।